0: तो इस प्रोग्राम बोजान सुबुगाही इशा आकाशवाणी श्रीनगर मीटिंग जो अठ आशर अठक मीटर तो एफ एम अक त्रे आशरिया पांच मेघाटसन पैट शब्द जित पंचवंजा मिनट दिन सब दिन यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टरसन इत्यमुना साकं संवाद

0: पदं विहितवान् श्रीमोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमन्त्री श्रीमोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तान्तर्गतम् उभौ नेतारौ भारत स्वीडन सम्बन्धानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम् अन्तरिक्ष रक्षा अनुसन्धानं समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय सम्बोधने श्रीमोदी आतंकवादम् आलोचयन् नैकेषु विषयेषु विस्तृतेण वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्रीमोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रन्थियुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटिमितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटिमितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत् पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की।

वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नई सुबह का नई रूप, नया रूप है, नई धूप है, नई आस है, जो गुजर गया सो गुजर गया, ये जो पल है कितना खास है, चलो मुस्कुरा के मिले सभी, कोई दिल में रहे ना गिला कभी, ये जो जिंदगी का सरापा है, ये खुदा का एक एहसास है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर कश्मीर, सुबह खैर जिंदगी, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ताजा दम होंगे और एक नई सुबह की नई उम्मीदों को गले लगाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। ये है आपका पसंदीदा स्टेशन आकाशवाणी श्रीनगर, प्रोग्राम लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह, और मैं हूं आपकी मेजबान तस्लीमा अख्तर। मेरे साथ है मेरे साथी मेजबान
1: रूफ अली।
0: रूफ, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल खैरियत से।
0: आपकी स्माइल से पता चलता है, प्यारी प्यारी स्माइल आपके चेहरे पे है, और ये स्माइल जब सुबह सुबह हमारे चेहरों पे रहती है तो दिन बन जाता है, हमारा भी और हमारे अपनों का भी।
1: जिंदगी भी एक खूबसूरत सफर है जहां हर सुबह हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है, और हम तस्लिमा ये भी बोलेंगे कि ये जो सुबह है, ये एक जिंदगी जो है, ये एक किताब है, शुदावान जिंदगी शाह किताब।
0: बिल्कुल,
1: तो प्रत का दोष यह अमुक अख सफा
0: अख सफ,
1: तो प्रत का सुबह अम सफुक आगाज निश खली आसन।
0: बिल्कुल, तो एक कोरे कागज की तरह है हमारी किताब, हर एक सफा हमें सुबह सुबह खाली मिलता है, सुबह सुबह चाय से आज पढ़ के इसकी पलटन लिखा हुआ सब
1: सब। बिल्कुल, तो इसे करो पन रूह मोतर तो बोझो ये नात्य कलाम सुबह सुबह।

0: आप सुन रहे हैं आज का लाइव मॉर्निंग शो पयाम सो। तो आपने जो ये गाना सुना, किसी ने क्या खूब कहा था कि किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उतार, जीना इसी का नाम है। बाकी जब आप मुस्कुराते हैं तो आप न सिर्फ खुद को पुरसकून महसूस करते हैं बल्कि तस्लिमा आप अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी मजबूत दवा नहीं बांटते हैं। मुस्कुराहट एक ऐसा सदका है जिस पर कोई खर्च नहीं आता, लेकिन ये सामने वाले का दिल जीत लेते हैं।
1: दिल भी जीत लेता है और किसी का दिन भी बनाता है, किसी की दुनिया भी बना देता है। क्या पता किसके अंदर कितने तूफान चल रहे होते हैं, और अगर हम अपना गरूर लेकर चलते रहें तो कभी रिश्ते बनेंगे नहीं। और अगर हम एक छोटी सी मुस्कुराहट बांटते रहेंगे, एक तो इबादत का सवाब भी, और दूसरा आप देखेंगे जब आपकी वजह से कोई हंसता है, मुस्कुराता है, खुश होता है, उसका दर्द कम होता है, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत हल्का फील करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ रूफ?
0: बिल्कुल जी। जब आप इसका जो हमारा जो मकसद भी है ना, इस प्रोग्राम
1: का मकसद भी है कि हम यहाँ आए,
0: ये हम जब यहाँ पे आते हैं आपसे बात करते हैं, तो हमारा ये मकसद है कि आपके चेहरे पर खुशी लाना है। जिंदगी में चाहे जितने भी परेशानियां हों तो एक छोटी सी मुस्कुराहट इनका रुख मोड़ सकती है।
1: डेफिनेटली तो उसे पता है इंसान परेशानी स्वच्छ ईमान वो आ जाती है, उसको टालने का कोई रास्ता नहीं है। अगर रास्ता है तो हंसकर उसका मुकाबला करके देख लो। ठीक है, जिले से वादुन स्टार्ट करान छ ना, सो परेशानी छ बे तम खत ज्यादा असनल गसन, तम खत ज्यादा एक्सपर्ट हैवी गसन, वो हटने वाली नहीं होती है। इसलिए अगर उसको हटाना चाहते हैं तो डट कर उसके सामने खड़े हो जाए, उसको बोले नहीं भाई, आप जहां से आए हो वहां से पतली गली से निकल जाओ, यहाँ आपका कोई भी आपके लिए वेलकम करने के लिए नहीं है। परेशानियों को वेलकम हमें कभी नहीं करना चाहिए। जिंदगी जो परेशानी युवान, मगर इसमें हमें एक छोटी सी वो गैप ढूंढनी है जहाँ पर हम खुश रह सके। तो ये गैप है, ये मॉर्निंग शो लाइव पयाम सुबह, जो लाइव मॉर्निंग शो आपके साथ हम इस वक्त बातें कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने थॉट्स, और हमें उम्मीद है कि हम आपको बोर नहीं कर रहे होंगे। आपको पता है रूफ, आज का दिन जो है बहुत अहम दिन है। आज के दिन की अहमियत के बारे में आप अभी मुझसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे।
0: जी बिल्कुल, हम आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। पहले एक नगमा क्यों करके रखा है, सब इनको पहले ये सुनाएंगे।

0: सबसे बड़ा जो मुश्तरक अजम जो है होना चाहिए रिगार्डिंग
1: बिल्कुल
0: दिस।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो हम भेदभाव अपने मरीजों के साथ कभी कभी बरतते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, उससे क्या होता है, उनका जो अंदर का हौसला जो है वो टूट जाता है। और जब एक मरीज का हौसला टूट जाता है ना, तो यकीन जानिए रूफ, उसका इलाज कोई भी
0: कोई
1: दुनिया
0: नहीं
1: की
0: कर सकता,
1: दवाई नहीं
0: नहीं
1: कर
0: कर
1: सकती
0: सकता।
1: है। दपान इंसान जो दवा तेली असर करना गिल तेमिस अंदर किन खुद एतमदी आस गिल तेमिस उन हौसला बुलंद आस
0: बिल्कुल
1: पॉजिटिव अप्रोच
0: पॉजिटिव
1: बे
0: अप्रोच
1: बे टू लाइफ इकुन पॉजिटिव अप्रोच। क्योंकि अगर हम कोई भी दवाई खाएंगे और अगर हमने अंदर से ये सोचा कि हम ठीक नहीं होंगे, तो महंगी से महंगी दवाई ठीक नहीं कर सकते। इसलिए एक पेशेंट के लिए जरूरी है कि उसके साथ खुश इखलाकी से हम पेश आए, और दूसरा ये कि वो अपने आप को बहुत ही कूल रखे, यकीन रखे, तवक्कल करे कि नहीं मैं ठीक हो
0: मैं ठीक
1: जाऊंगा।
0: हो जाऊंगा।
1: तो ऐसा मीन तारीख की खूबसूरती और सेहतमंद मुस्तकबिल के इसी हसीन इंतजाज के साथ बढ़ते हैं आगे पयाम है सुबह में। वक्त हो चला है एक और बेहतरीन और रूह परवर कलाम सुनने का, जो हमारी सुबह को मजीद यादगार बना सकती है। इवन इनफैक्ट बना सकती नहीं, यकीनन बना देगी। सुनते रहिए आकाशवाणी श्रीनगर।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सुबह के 7:55 हुए हैं। एक नजर आपके बाद हमारे यहाँ से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों पर।

शाम 10 बजे प्रोग्राम पेश होगा गीतों भरी कहानी। आज आप दीपक कंवल की कहानी सुनेंगे कैप्टन किशोर। प्रोग्राम पेश करेंगे रशीद निजामी।

आयुष का सुपानसर प्रोग्राम सत्य बदन ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। सुबह 9 बजे मकामी रोजनामों की सुर्खियां पेश होंगी। प्रोग्राम सोफी सदा पेश होता है सुबह 10 बजे। आज का मौजू है सोफियानुक सफर।

जी हाँ, सुनना ना भूलिएगा सूफी सदा प्रोग्राम, और मौजू है सूफिया तुक सफर। गुलाम अहमद काबा और साथी चक्रो पेश करेंगे दिन के 11:30 पर दोपहर 2:30 और फिर सपहर 4:30 पर। इनसे आप कलाम रामांडर और कलाम शम्स फकीर सुनेंगे।

खवातीन की महफिल बज़्मे निस्वार आस्ता होगी दोपहर 12:40 पर। दिन के 1:10 पर NCERT का तैयार करदा स्पॉन्सर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा उमंग। सुबह 3 बजे प्रोग्राम पेश होगा फौजी भाइयों के लिए।

पार्टी प्रोग्राम पेश होगा दोपहर 4 बजे, गोर्जी प्रोग्राम समाप्त करें शाम 5 बजे, देहाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे शाम 6:05 पर। हालात तो वाकत की जानकारी आपको मिलती है प्रोग्राम शेरबीन के जरिए शाम 7 बजे।

प्रोग्राम वादी की आवाज का वक्त नशरिया है रात 8 बजे और रात 8:30 पर खेलों से मुतल्लिक प्रोग्राम पेश होगा स्पोर्ट्स टाइम। सनीन यहीं आपके बाद हमारे यहां से नशर होने वाले प्रोग्राम।

0: मीडियम एफ 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में

0: स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।

0: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
3: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर है 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर।

0: है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। आप सुन रहे हैं आज का लाइव शो, मॉर्निंग लाइव शो पयामे सुबह। मैं हूं आपका मेजबान रूफ अली और मेरे साथ
3: तस्लीम। रूफ, आज का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का दिन आम नहीं गिना जा सकता। आज दुनिया भर में उन लाखों साइंसदानों, डॉक्टरों, तभी माहिरीन और सबसे बढ़कर उन बहादुर रजाकारों यानी वॉलंटियर्स को सलाम करने का दिन है जो एक तवील अरसे से इंसानियत को HIV के खतरे से मुस्तकिल निजात दिलाने के लिए दिन रात रिसर्च लेबोरेटरीज में जुटे हुए हैं।
2: बिल्कुल तस्लिमा। और आज 2026 के इस अहम मोड पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि तबी साइंस ने कितनी तवील मसाफत तय की है, लेकिन अभी मंजिल बाकी है और इसी मंजिल को पाने के लिए आज हमारे इस खसूसी नशरियात का एक ही सबसे जो है वो पैगाम है, वह है हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने निज़ाम को दोबारा मजबूत करना होगा और एक नए अज़म के साथ आगे बढ़ना होगा।
3: अरूफ, आपने जो ये पहला जुमला कहा ना कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा, मेरे ख्याल में ये

0: सबसे बुनियादी और अहम तरीन मरहला है। आज 2026 में भी जब इंसान हर शोबे में तरक्की कर चुका है, हमारे समाज में HIV और एड्स को लेकर पुरानी दकियानूसी और फरसुदा सोच मौजूद है। आज भी जब किसी इंसान के बारे में मालूम होता है कि वो HIV से मुतासिर है, तो समाज का रवैया मेरे ख्याल से बदल जाता है उनके साथ।
1: बिल्कुल, और सच यही है तस्लीमा कि ये जो समाज जो बायकॉट है, एक ऐसी बीमारी है जो खुद वायरस से ज़्यादा इंसान को मार देती है। हमें अपनी सोच को ये कहकर बदलना होगा कि जो HIV का जो शिकार फर्द होता है कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि वो हमारे ही तरह एक इंसान है और जो एक तबी चैलेंज का सामना कर रहा है। हमें ये बात बार बार दोहरानी होगी कि ये वायरस जो है हाथ मिलाने से, गले मिलने से, एक साथ खाना खाने से, एक ही दफ्तर में काम करने से या एक ही जो वॉशरूम है इस्तेमाल करने से हरगिज नहीं फैलता।
0: और ये जो
1: तो बहुत इंपॉर्टेंट
0: इन्फॉर्मेशन
1: है।
0: सही रूफ, ये जो हम खुदा बने बैठे हैं ना और खुद फैसला सुनाते हैं, ये बहुत बड़ा ऐब है एक इंसान में। फैसला सुनाने के लिए, हुक्म सादर करने के लिए वो ऊपर बैठा है, हमें उसके जो हुक्म की है तामील करनी है। और किसी को कटहरे में खड़ा करना हमारा काम नहीं है। हम किसी को कटहरे में खड़ा नहीं कर सकते कि भाई आपकी ये गलती है। और जब भी हमें किसी की गलती नजर आए कहीं पे, तो सबसे पहले हमें अपनी गलतियों का हिसाब करना चाहिए। यकीन मानिए रूफ, कभी भी हम किसी की तरफ उंगली नहीं उठाएंगे, या जब भी हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं ना, बाकी सारी उंगलियां जो है वो हमारी तरफ उठती है। और यही वजह है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए भी हम बहुत सारे मामलों में बहुत पीछे हैं। अब अगर इस वायरस की बात करें, तो ये वायरस जैसे आपने कहा कि कैसे कैसे एक दूसरे में मुंतकिल नहीं होता है,
1: बिल्कुल,
0: और ये वायरस सिर्फ मुतासर खून के तबादले, आलूदा सरिंजों या सुइयों के दोबारा इस्तेमाल और गैर महफूज तालुकात की वजह से ही मुंतकिल होता है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, लोग डर के मारे अपने टेस्ट नहीं करवाएंगे, और जब टेस्ट नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा रूफ।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए याद रखने की बात है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। नफरत वायरस से होनी चाहिए, किसी इंसान से नहीं। गलती किसी से भी हो सकती है और नेग्लिजेंस हो जाती है। गलती की बात हम बाद में करेंगे, नेग्लिजेंस होती है। लाइक अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं किसी जगह इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, तो वहां हमें कॉन्शियस रहना, डॉक्टर हजरात को या जो सुई लगाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना है कि कोई जो यूज सरिंज वो फिर से इस्तेमाल ना करें। प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की जरूरत है, क्योंकि ये एक गलती से भी बढ़ सकता है और ये गलती हम कर सकते हैं, इसको नेग्लिजेंस कहा जा सकता है।
1: और बिल्कुल, और जब तस्लीमा हम बात करते हैं ना कि जो जो थीम है इस साल इस वर्ल्ड एड्स वैक्सीन की, तो वो था पहले रिथिंक और अब है रिब्यूल्ट, यानी सोच बदलने के बाद अब बारी आती है हमारे दूसरे अहम सतून की, दैट इज वो है कि अपने निज़ाम को दोबारा मजबूत करना होगा। और तस्लीमा, जो हमारा देश जो है, इसने कोरोना की वबा के दौरान भी दिखाया कि जब हमारा हेल्थ केयर सिस्टम मिलकर काम करता है, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को महफूज रख सकते हैं। और पोलियो का खात्मा जो है इसकी एक और बड़ी मिसाल है।
0: और एक वक्त ये भी होगा कि HIV का भी परमानेंट सोल्यूशन निकल आएगा। हालांकि अभी तक बहुत सारे तजुर्बात हो रहे हैं, क्योंकि ये जो वायरस है, इसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा वायरस है जो अंदर अपनी शक्लें बदलता रहता है और खून में इस तरह से छुप जाता है, आपके DNA में इस तरह से छुप जाता है कि ये इसको किसी भी दवाई का या जो वैक्सीन है उसको ढूंढ नहीं पाता है। उसको ढूंढने के लिए, उसकी एग्जैक्ट पोजिशन क्या है उसको ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी है, उम्मीद रखनी है। और जब तक इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता,
1: ही दुनिया कायम है।
0: बिल्कुल, उम्मीद जब तक हम नहीं रखेंगे, दुनिया कायम कहां रहेगी। और रही बात इस वैक्सीन की, तो ये वैक्सीन ले लेना चाहिए और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है उनका ख्याल रखना चाहिए। और फिर अगर किसी के साथ कुछ भी होता है, चाहे बीमार होता है या कुछ भी किसी के साथ होता है, तो ये समझ ले कि ये इक्वली हमारे साथ भी हो सकता था या हुआ है। उस दर्द को महसूस करें, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, इंसान एक दूसरे की जो दर्द को महसूस करते हैं वो बहुत बड़ी बात है, वही इंसानियत का असल में तकाजा है। और दूसरा ये है कि इसको क्योर करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, इन सब चीज़ों में शामिल होना चाहिए जो इस वबा को ख़त्म कर सकते हैं। साइंसदान तो कर ही रहे हैं अपने तजुर्बात, लेकिन जो एक इंसान है वो भी अगर आगे आ जाए और इन सब चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करे, तो यकीनन ये मोहलिक बीमारी से एक दिन हमारे समाज को

0: मिल जाएगी।
1: जी बिल्कुल तस्लीमा, और न सिर्फ इलाज बल्कि हमें अपनी जो तालीमी जो निज़ाम है, हमारे जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस है, तो हमें वहाँ भी सेहत से जुड़ी आगाही को लाजमी हिस्सा बनाना होगा। हमारे जो टीचर्स हैं तो उन पर भी जिम्मेदारी है, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो किसी भी किस्म के वहम या अफवाह का शिकार ना हो। जब हमारा मेडिकल, तालीमी और समाजी निज़ाम एक साथ मजबूत होगा, तभी हम एड्स के खिलाफ इस जंग को जीत सकेंगे।
0: हमारे निज़ाम को मजबूत करने का मतलब ये है कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारे सरकारी अस्पतालों का जो नेटवर्क है वो इतना मजबूत हो कि मुल्क के दूर दराज गाँव, देहातों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आखिरी इंसान तक भी टेस्ट और इलाज की सहूलत बिल्कुल मुफ्त पहुँच जाए। आज हमारे मुल्क में एंटी रेट्रोल वायरल थेरापी की दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त मिलती है, जिनकी मदद से एक मरीज बिल्कुल आम और तवील जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन हमें इस बुनियादी ढांचे को और ज्यादा मजबूत करना होगा। रूफ
1: बिल्कुल तस्लिमा, और पहले एक वक्फा लेते हैं और कुछ तजारती पैगाम सुनते हैं।
0: जी
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे?
4: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
3: ओह,
4: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
3: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
4: अम्मा लेवल वेवल छोड़, ऑफर्स देख।
3: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर, क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है, खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है, और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
7: पर क्या कर सकते हैं?
6: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहाँ सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
8: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
9: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
10: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
9: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आवर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
10: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
9: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
10: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
9: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
10: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
9: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
10: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
9: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
5: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
0: जी रूफ, अपने सामने को बताते हैं ये आकाशवाणी श्रीनगर का प्राइमरी स्टेशन है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे हैं पयाम सुबह लाइव मॉर्निंग शो। हम जो वर्ल्ड एड्स जो है, एड्स के बारे में जो आज दिन मनाया जाता
1: वैक्सीन।
0: है वैक्सीन के हवाले से, तो मैंने कहा कि वैक्सीन लेनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मेजर्स है इसके लिए किए जाते हैं उनको लेना चाहिए, और वैक्सीन को हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि एक ना एक दिन ये वैक्सीन ज़रूर हमारे पास आएगी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे DNA में जब जाती है, हमारे खून में जब जाती है, तो रूफ ये बदल जाती है, अपनी शक्लें बदलती है, तो जो माहिर कार है उनके लिए इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बनी है तो उसके लिए एक खास उनको पता चल जाता है कि कहाँ पे है, बट ये बीमारी, ये वायरस जब हमारे खून में चला जाता है।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन कोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जुनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात गोटनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। वो इस मुल्क

0: दो रोजा दौरे पर कल गोटेनबर्ग पहुंचे थे। जनाब मोदी को स्वीडन के आला तरीन एजाज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया। उन्हें यह एजाज दो तरफा ताल्लुकात में उनके गैर मामूली तआवुन और उनकी दूरंदेश क्यादत को तस्लीम करते हुए दिया गया है। यह अवार्ड आला तरीन इम्तियाज है जो किसी सरबराह हुकूमत को दिया जाता है। यह वजीर आजम मोदी का 31वां बैन अल-अक़वामी एजाज है। वफ्द की सतह की बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने भारत स्वीडन ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया और दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया, जो इन ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त है। उन्होंने तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, माहौल के लिए साजगार राहदारी, खला, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा और सलामती, SMEs, रसाई और आवाम से आवाम के रिश्तों के मैदानों में गहरे तआवुन के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस दौरे का असल मकसद 2026 से 2030 तक के लिए एक मुश्तरका एक्शन प्लान इख्तियार करना है, ताकि दो तरफा इक्तिसादी तबादलों को अगले 5 साल में दोगुना किया जा सके। भारत स्वीडन मजबूत तर अंदाज में यकजा 2047 की जानिब मौजू के तहत दोनों मुल्कों ने 2027 में दो तरफा तजारत और सरमायाकारी समिट मुनाकिद करने का आजम किया। स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान वजीर आजम ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन, खासतौर पर माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अहम मादनियात के मिशनों में मजीद सरमायाकारी को मदऊ किया। अब इस शराकतदारी को सेमीकंडक्टर्स, जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग और मुस्तहकम सप्लाई चेन तक तोसी दी जाएगी। वजीर आजम ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत को स्वीडन की तरफ से हिमायत दिए जाने पर खासतौर पर शुक्रिया अदा किया, जो आलमी इस्तेहकाम के तई एक मुश्तरका अज़्म का इयादा है। गोटेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन जैसी पहल के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। गोटेनबर्ग में स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने स्वीडन की कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मिशन, साफ सुथरी तवानाई और दीगर शोबों में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत और स्वीडन के दरमियान जमहूरियत, शफाफियत, इख्तिरा और पायदारी की मुश्तरका अकदार मौजूद हैं, जनाब मोदी ने स्वीडन की ताकत को इख्तिरा और पायदारी के मैदान में भारत की तरक्की, सलाहियत और नशोनुमा की रफ्तार के मुताबिक बनाने को कहा।
2: वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजेक्शन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
0: वजारत खारजा ने कहा है कि स्वीडन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने भारत में काफी दिलचस्पी जाहिर की है और पिछले कुछ बरसों में पायदार इकतसादी असलाहत के जरिए मुल्क में यकसर तब्दीली की सताइश की है। यूरोपी गोल में सनती मीटिंग के बाद नामनिगारों से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने हालिया बरसों के दौरान भारत में देखी गई काबिल जिक्र तब्दीलियों को उजागर किया। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी और स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टरसन ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मुश्तरका सकाफती विरासत के जश्न के तौर पर खसूसी तोहफों का तबादला किया। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के चौथे मरहले में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट और दोतरफा सरगर्मियों के लिए आज नॉर्वे पहुंचेंगे। ये वजीर आजम मोदी का नॉर्वे का पहला दौरा तो है ही, अलबत्ता पिछले 43 साल में भारत के किसी वजीर आजम का नॉर्वे का पहला दौरा भी है। जनाब किंग हेराल्ड फाइव और जनाब मोदी किंग हेराल्ड फाइव और क्वीन सोंजा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम जोनास गहर स्टोर के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी नॉर्वे के वजीर आजम के साथ साथ भारत नॉर्वे तिजारत और तहकीक की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कांग्रेस रहनुमा VD सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर उन्हें तिरुवनंतपुरम में एक तकरीब में आज सुबह 10 बजे ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। नामजद वजीर आला ने कल शाम UDF की 21 रुकनी काबीना का ऐलान किया था। तफसील हमारे नमानिगार से।
3: कांग्रेस की

0: रियासत की राजधानी पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के वज़ीर आला, सुबुकदोश वज़ीर आला पी नराई विजयन और बीजेपी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दो रोजा दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। रियासत के अपने दौरे में जनाब शाह रायपुर और बस्तर में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन आज सुबह रायपुर में हंगामी खिदमात डायल 112 के तहत नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो बस्तर के लिए रवाना होंगे, जहां जिले के नेतानार गांव में अवामी सहूलत मरकज के इफ्तिताह करेंगे। इस मरकज का मकसद दूर दराज के इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की हुकूमत और डिजिटल खिदमात तक रसाई को आसान बनाना है। इसके बाद जनाब शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और अमर वाटिका पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब शाह का जगदलपुर की बादल एकेडमी में दोपहर में शहीदों के अफराद खानदान, हिफाजती अहलकारों, माओनवाजों के तशद्दुद से मुतासर अफराद और मुख्तलिफ मकामी बिरादरियों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। वज़ीर दाखला शाम को लोक सकाफती प्रोग्राम बस्तर के संघ में मौजूद रहेंगे। मरकजी वज़ीर दाखला कल 19 मई को जगदलपुर में वस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वज़ीर आला शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ को माओनवाजों से पाक करार दिए जाने के बाद जनाब शाह का रियासत का यह पहला दौरा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड अदा करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़द होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब के दौरान सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड अदा करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत असेंबली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ये 6 रोजा तकरीब आज से जिनेवा में शुरू होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि यह असेंबली 165 मुल्कों के वज़राए सेहत, मुअज्जज अफराद और अवामी सेहत माहिरीन को यकजा करेगी, जहां मुस्तहकम ज्यादा शमूलियाती और लचकदार सेहत देखभाल निज़ाम के तहत मुश्तरका आलमी अज़्म की यकीन दहानी कराई जाएगी। मगरिब वस्ती रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल आग लगने के वाकये की जांच के लिए आला इंतजामी ग्रेड सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। आग लगने का वाकया ट्रेन के एक मुसाफिर कोच और एक लगेज ब्रेक और जनरेटर कार में उस वक्त पेश आया जब ट्रेन मध्य प्रदेश के लूनी, रिचा और विक्रमगढ़ अलौत स्टेशनों के दरमियान थी। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बारख न्यूक्लियाई मरकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं और कशीदगी के खतरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती हैं। नई दिल्ली ने सब्र तहमुल की अपील करते हुए बातचीत और सिफारतकारी की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। इससे पहले कल मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़दफरा के बारख न्यूक्लियाई मरकज के अहाते में ड्रोन हमला किया गया, जिससे मरकज की अंदरूनी हदूद के बाहर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के 1 जून की मुकर्रर तारीख से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम पे आ जाने का इम्कान है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि जुनूब मगरबी मानसून की अगले 2 से 3 दिन के दौरान जुनूब मशरकी बहरे अरब, खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और अंडमान समंदर के हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। एक रिपोर्ट।
0: भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अंडमान और निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे में आज शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश में आज गर्मी की शदीद लू चलने की पेशगोई की है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली

0: कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम खेले गए इस दिलचस्प मैच में जीत के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 194 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 19 ओवर्स और 2 गेंदों में 197 रन बनाए। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 8वें मकाम से 7वें मकाम पर पहुंच गई है और प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है। एक दीगर मैच में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 222 रन बनाए। जवाब में 223 रन के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा ओवर्स में 8 विकेट खोकर 198 रन ही बना सकी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाली आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के नीदरलैंड्स दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान दो तरफा तालुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वीडन पहुंचने पर उन्हें आला तरीन एजाज से सरफराज किया गया। रोजनामा प्रताप ने जजों की तादाद बढ़ाने की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने की मरकजी काबीना के फैसले को मंजूरी दे दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के गुजरात दौरे की खबर को सुर्खी बनाया है, अमित शाह ने कहा कि गुजरात टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मुल्क की क्यादत करेगा। अखबारात की कुछ अहम खबरें, बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर सर्विस जल्द शुरू होगी, अश्विनी वैष्णव का बयान। अमेरिका से चीन 200 से ज्यादा तैयारी खरीदेगा, मुत्तहिदा अरब अमारात के जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। ईरान ने अब नए हुरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए टोल लगाने का मंसूबा बनाया।
0: और आखिर में खास खबर एक बार फिर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टरसन गोटेनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदद किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतीसन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। सुबह के 8:45 हुए हैं।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। सुबह के 9 बज चुके हैं। समाप्त करें मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां।
1: पेश की जा रही हैं आज की सुर्खियां।
0: आज सोमवार है, साल 2026 ईस्वी की महीने की 18 तारीख मुताबिक यकुम जिलाजा 1447 हिजरी। मकामी रोजनामों की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। एक रोजनामे की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में मर्दमशुमारी 2027 का आगाज, पहली बार मुकम्मल डिजिटल अमल, खुद अंदराज पोर्टल खुल गया, अवाम खुद ऑनलाइन अंदराज की सहूलियत दस्तियाब।
2: एक रोजनामे से ली गई खबर इस तरह से है, वजीर आजम का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरक कार्रवाई पर जोर, नीदरलैंड के बादशाह मलिका और वजीर आजम से मुलाकात, पहलगाम हमले की मजम्मत। इसी हवाले से एक और अखबार लिखता है, हिंदुस्तान और नीदरलैंड के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक, आला सतही मुलाकातों के जरिए दो तरफा ताउन में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया।
0: जम्मू कश्मीर की खवातीन इंतहाई जहीन और बासलाहियत

0: 1,286 मेगावाट इजाफे बिजली मिलेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 3,024 मेगावाट की जरूरत और 4,310 मेगावाट बिजली दस्तिया।
1: मेरे हाथ में एक और उर्दू रोजनामा है, इसकी शह सुर्खी है रुख। मानीपुरम में 37 साल बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी। नंद किशोर मंदिर में सोमली मावास फेस्टिवल का रूह परवर इनकाद।
0: कुलगाम के कई गांव में पानी के पीने की जो किल्लत। लद्दाख के डिलीजर्स को राहत, योमिया उजरत में इजाफा।
1: जी बानीहाल में एक एक्सीडेंट की खबर लिखता है अखबार। बानीहाल में एक एक्सीडेंट और ड्राइवर हलाक। आजकल ट्रैफिक हादसात बहुत बढ़ रहे हैं शहर में। ज़रूरत है कि ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करें ताकि जो कीमती जान है उनका ज़िया ना हो। रूफ
0: 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अस्पताल बदस्तूर बंद, काकापुरा के लोगों में बेचैनी।
1: लोग रात 10 बजे तक लाल चौक में आजादाना तौर पर घूमते नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख का तफसीली दौरे के बाद पार्लिमानी कमेटी का जायजा रिपोर्ट।
0: जी बिल्कुल। और एक और सुर्खी है, अवाम सियासी तरजीहात पर असरिनो गौर करें। भीवा में AIP के वर्कर्स जो है वो पार्टी लीडरान का खिताब।
1: मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा है, इसमें जो खबर छपी है ये खबर कुछ इस तरह से है। फ्रूट ग्रोअर्स सेंड SOS टू CM उमर, सेक्स कंपनसेशन क्रॉप इंश्योरेंस आफ्टर डिवेस्टिंग हेल स्टॉर्म। कश्मीरी फ्रूट ग्रोइंग कम्युनिटी हैज इशूड एन अपील टू चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला सेकिंग इमीडिएट कंपनसेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड रिवाइवल ऑफ द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS after successive hailstorms caused massive destruction to orchards across north and south Kashmir.
0: Arnai Hormuz paar karke jahaz Gujarat varid 20,000 ton LPG pochne se rahat.
1: Kuch khelon se mutalliq khabrein hamare is angrezi rozname mein chapi hain. Headline है, J&K Sports Council expands football vision, Kashmir's biggest crossroad football talent hunt trials draws massive response.
0: सांबा में नशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 60 करोड़ रुपए मालियत के सरकारी अराजी पर 33 गैर कानूनी तामीरात मिसमार।
1: इसी अंग्रेजी रोजनामे से एक और खबर है, कुलगाम हरिकेन्स लिफ्ट साउथ कश्मीर वॉलीबॉल लीग टाइटल। स्पोर्ट्स बेस्ट प्लेटफॉर्म टू चैनल एनर्जी ऑफ यूथ इन पॉजिटिव डायरेक्शन MLA शबीर अहमद कुल्ले।
0: इसराइल और लेबनान 45 रोजा जंग बंदी में तौसी पर मुत्तफिक अमेरिका।
1: एक और खेल से रिलेटेड खबर है, हेडलाइन है, DFA श्रीनगर कंग्रेचुलेट्स J&K U20 टीम ऑन अ सेकंड विन इन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप।
0: इमाम खमेनी ने उम्मत को हकीकी इस्लाम की तरफ वापस लाया, रहबर शियान बहरीन। समीन ये थी मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और TVS कंपनियों के बाइख्तियार डीलर। कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं उमर मुख्तार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दो तरफा रिश्तों को बेहतर बनाने, नीज इनकी दानिशमंदाना क़यादत के लिए स्वीडन के आला तरीन एजाज़ द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सरफराज किया गया। वाजह रहे कि यह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 31वां बैनुल अक़वामी एजाज़ है। पूरे जम्मू कश्मीर में कल से सेंसस 2027 का सरकारी तौर पर आगाज हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी सेल्फ एन्यूमरेशन मुकम्मल करके जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की कि वो इस अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपने घरों से मुतालिक तफासील ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराएं। उन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन को एक अजीम जिम्मेदारी करार दिया।
1: जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जनगणना आपके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए बहुत आवश्यक है। आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अपने मकान और उसमें रहने वाले कितने परिवार के सदस्य हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी जनगणना से जुड़े हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीजिए। मुझे लगता है कि आप सब इसमें पूरा सहयोग करेंगे।
0: दरियास्ता, जम्मू कश्मीर के बेशतर जिलों में सेल्फ इनोमरेशन का अमल शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। कानून साज असेंबली के मेंबर सुनील कुमार ने लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और मजहबी मकामात को बढ़ावा देने, आवामी बुनियादी ढांचे को तकवियत बख्शने और अपने हल्के के दीगर मामलात इनकी नोट्स में लाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर का एक वफद कमेटी के सदर मोहम्मद इकबाल आहनगर की क्यादत में LG मनोज सिन्हा से मुलाकात हुआ।

0: वफद ने जम्मू कश्मीर में जारी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की पेशरफ्त की सताइश की। नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कल जम्मू में एक मीटिंग के दौरान पूरे जम्मू सूबे में पीडब्ल्यूडी महकमे की तरफ से अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। नायब वज़ीर-ए-आला ने अफसरों को हिदायत दी कि वो कामों के मियार को बरकरार रखते हुए इनकी मुकर्रर मुद्दत के अंदर तकमील को हर सूरत में यकीनी बनाए। जम्मू कश्मीर में जुल्हजा का चांद नजर आ गया है। ईद उल अजहा 27 मई यानी बुधवार को मनाई जाएगी। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: कल मौरख 17 मई मुताबिक 29 ज़िलहिज्जा जुल्हजा का चांद देखे जाने की इत्तला'आत मौसूल हुई। मुशावरत के बाद ये फैसला लिया गया कि आज 18 मई जुल्हजा की पहली तारीख है और ईद उल अधा 27 मई को मनाई जाएगी। ईद को सादगी से मनाएं, गुरबा और मसाकीन का खास ख्याल रखा जाए, जानवरों की कुर्बानी करते वक्त माहौलियात का खास ख्याल रखा जाए।
0: जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से पाक करने के लिए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां जारी हैं। पुलिस, इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमे ड्रग स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कोई भी दकी का फरोगुजाश्त नहीं कर रहे हैं। एक अहम कार्रवाई के तहत हुकाम ने कल सांबा जिले के बीरपुर ब्रह्मना में 60 करोड़ रुपए की 50 कनाल सरकारी अराजी पर से मनुष्यात फरोशों का कब्जा हटा लिया है। वादी के एक मारूफ थिएटर और टीवी रेडियो अदाकार शबीर हकाक के वालिद गुलाम नबी हकाक के इंतकाल पर रेडियो लिस्टर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार के अलावा कई सकाफती, समाजी, अदबी और थिएटर से वाबस्ता कई अफराद और अंजुमनों ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। मरहूम की इज्तिमाई फातेखानी 20 मई बुधवार को सुबह 10 बजे मकबरे आखुन साहब कैन मजार श्रीनगर में अंजाम दी जाएगी। जल शक्ति, माहौलियात और जंगलात के वजीर जावेद अहमद राणा ने कल मेंढर पूंछ में 58 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों में 20 वाटर सप्लाई स्कीमें भी शामिल हैं। आवामी मसाइल पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम शहर शहर मंजर के लिए फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग आज और कल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक फोन नंबर 0194-245-2019 पर हो रही है। कश्मीर की सकाफती विरासत को तहफ़ फराहम करने के लिए काम करने वाली कश्मीर हिस्ट्री फाउंडेशन के अहतमाम से श्रीनगर में द फर्स्ट ट्रैवलिंग म्यूजियम एंड कल्चरल फेस्टिवल के नाम से मुनाकिदा 3 रोज़ा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। प्रोग्राम के तीसरे रोज कल मुकर्रीन में कश्मीर की वसी तारीख पर मकाले पड़े। और अब आखिर में दर्ज हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.6 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज़।

का दिन इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी अजाइब घरों के आलमी दिन के तौर पर भी मनाया जा रहा है। जब हम म्यूजियम या अजाइब घर के नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे जहन में पुरानी तारीखी इमारतें आती हैं, लेकिन ये जो रेडियो स्टेशन है, ये जो हमारा रेडियो स्टेशन है, इसके अंदर भी एक अनमोल अजाइब घर मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर की जो तारीखी आर्काइव्स और साउंड लाइब्रेरी है। ये दरअसल कश्मीर की तारीख का, आवाज़ों का अजाइब घर है, जहाँ आम म्यूजियम में चीज़ें देखी जाती हैं। हमारे इस अजाइब घर में कश्मीर की तारीख, तहजीब और सकाफत को महसूस किया जाता है और सुना जाता है। तो प्रोग्राम आप सुनते रहें, पयाम सुबह रुकते हैं। एक प्यारा सा जो ट्रैक है, ये मैंने क्यों करके रखा है, पहले आपको यही सुनाते हैं।

0: वक्त की बात करें तो वक्त गूंगा जरूर होता है, लेकिन बोलता बहुत है। अगर आप वक्त की आवाज को सुनना चाहते हैं तो कभी किसी अजायब घर यानी म्यूजियम का चक्कर जरूर लगाएं। वहां रखी हर तस्वीर, हर पुराना खत, हर टूटी हुई चीज आपसे कुछ कहती है। वो बताती है कि दुनिया बदल जाती है, इंसान चले जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां जिंदा रहती है। आज म्यूजियम डे के मौके पर हम भी अपनी तारीख और अपने विरासत को अगर याद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आखिरी बार किसी म्यूजियम में कब गए थे, तो यकीनन आप में से कई लोग कहेंगे कि स्कूल के बाद तो शायद कभी मौका ही नहीं मिला।
1: जी बिल्कुल, ये जो तस्लीमा आपने बात की, अजायब घर जो होते हैं, ये म्यूजियम जो है सिर्फ पुरानी चीजों को रखने की जगह नहीं है, ये माजी की वो खिड़कियां हैं जिनमें जाकर हम देख सकते हैं कि हम ये जो हमारे अब आजाद हैं कैसे रहते थे, इनका रहन सहन कैसा था, और इंसानी तहजीब ने कैसी तरक्की की। और हमारी पहचान यही जो है ये म्यूजियम में जो चीज़ें होती है, ये हमें माजी से जोड़ती है। म्यूजियम हमें बताती हैं कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं।
0: You are right, रूफ। इमारतें सिर्फ ईंट और गारे से नहीं बनती, बल्कि पुरानी चीज़ें सिर्फ जो होती है मिट्टी का ढेर नहीं होती, उनके अंदर हमारे बुजुर्गों की सांसें, उनकी मेहनत, उनका लाइफस्टाइल और हमारी पहचान छुपी होती है। इसी को हम कहते हैं हमारा सकाफती विरसा। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जो कौमें अपनी माजी को भूल जाती हैं उनका मुस्तकबिल कभी रोशन नहीं होता। ये दरो दीवार, ये पुरानी हवेलियां या सारे करीमा, ये सब बताते हैं कि हम कितने अजीम थे। मिट गए मिटाने वाले, मगर ये निशानियां बाकी हैं। गवाह है ये कि कभी हम भी यहाँ मुकीम थे। हाँ, अपने विरासत को बचाना है, अपने विरासत को याद रखना है। और واریاہ چیز چھ تم روف یہ اس ون کس پائی
1: کہ
0: مول ماج ونان کہ سنس وقت مز اس پر ونان یت پر زن ہاتھ روپی اخ نوٹ چھ تو تم چھ ونان مطلب ہمارے دادا نانی نانو کہتے کہ اس آسان بوڑھ اخ نوٹ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن ایسی چیزوں کو دیکھنے کا اگر من کرے ہمیں کہ سون پوت کال کیا اس اسے کو میوزیم ویلزلی وزٹ کرتھن یم ساری چیز وچت تو پن پوت کال زن پن ثقافتی ورس تت متعلق زان پرویت۔
1: بالکل، اور آج کا دن کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو کتابوں سے نکل کر عملی طور پر تحریک کا جو ہے مشاہدہ کروائیں۔ تو پہلے رکتے ہیں، بریک لیتے ہیں،
0: ایک خوبصورت نغمے کے لیے کشربوت بوزو بوزنا اوپن سامنے۔

0: जी, हम बात कर रहे थे कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड म्यूज़ियम डे मनाया जा रहा है, और इस साल जो आलमी थीम है वो क्या चुनी गई है, वो है म्यूज़ियम यूनाइटिंग डिवाइडेड वर्ल्ड, यानी अजायब घर, ये जो बटी हुई दुनिया
1: बटी
0: है
1: हुई दुनिया है, इनको एक
0: इनको एक
1: साथ
0: साथ.
1: जोड़ने के लिए है। यही थीम आज के इस डे की है। बहुत
0: बिल्कुल.
1: बढ़िया जो
0: तो
1: थीम
0: ये
1: है।
0: जो थीम है ये हमें सिखाती है कि किस तरह ये तारीखी जो मराकज़ हैं, चाहे जगरूफाई, चाहे समाजी या सकाफती हदूद जो है, इनसे बलातर होकर इंसानों को एक दूसरे के करीब लाती है. हमने इस हवाले से, आज के दिन के हवाले से हमने बात की है कुलदीप कृष्ण सिद्धा, जो कि जम्मू कश्मीर के एक सीनियर और तजुर्बेकार ऑफिसर हैं, जो डायरेक्टर आर्काइव्स, आर्कोलॉजी और म्यूज़ियम के तौर पर अपने

0: अंजाम दे रहे हैं। जी तस्लीमा।
1: जी बिल्कुल, इनके साथ बात की है, इस बातचीत को सुनवाते हैं हम अपने सामीन को। आइए सुनते हैं आज के दिन के हवाले से हमारे डायरेक्टर साहब क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, पयाम स्कूल प्रोग्राम में आपका हार्टली वेलकम।
2: गुड मॉर्निंग एवरीवन।
1: सर, आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे श्रीनगर के SPS म्यूजियम में इस हवाले से आज क्या हो रहा है।
2: इंटरनेशनल म्यूजियम डे आईकॉम की तरफ से May 18 को डेजिग्नेट किया गया इंटरनेशनल म्यूजियम डे, जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स है, सो दैट जो मोर देन 150 कंट्रीज में 37,000 से ज्यादा म्यूजियम्स है, वहां पर एक दिन मनाया जाए जहां पर सभी म्यूजियम्स फैसिलिटेट करते हैं अपनी आर्टिफैक्ट्स को डिस्प्ले में, एंड दे सेलिब्रेट द शेयर्ड ह्यूमन स्टोरी। आपने SPS म्यूजियम की बात की, तो हमारे यहाँ पर J&K में दो म्यूजियम है, SPS म्यूजियम और डोगरा आर्ट म्यूजियम, और आज हमने स्पेशली क्यूरेटेड जो म्यूजियम्स है, एग्जीबिशन है, यहाँ पर लगाई है, जहाँ पर फ्री है एंट्री फॉर ऑल द पर्संस, ऑल द विजिटर्स।
1: सर, कहा दोनों म्यूजियम्स में कि SPS म्यूजियम में खाली?
2: नहीं, दोनों म्यूजियम्स में, श्रीनगर में SPS म्यूजियम में और डोगरा आर्ट म्यूजियम जो जम्मू में।
1: जी जी।
2: और यहाँ पर जो खसूसन हमने जो मैन्युस्क्रिप्ट से, आप जानते हैं कि ज्ञान भारतम जो एक मिशन लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उसमें भी हमने जो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें अगर हम SPS म्यूजियम की बात करें, गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट है, 5th सेंचुरी का है, बर्ज बार्क पे लिखा हुआ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी और जो भी सुनने वाला है कि उसको अभी नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज रजिस्टर में भी। और हमारे पास रेयर कॉपीज है तफसीर कबीर की, यहाँ शाहनामा है फिरदौसी की, और बहुत सारे रेयर शारदा में, टाकरी में, जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है जो डोगरी का, उसमें हमारे हर जगह पे जो SPS म्यूजियम में भी और डोगरा आर्ट म्यूजियम में भी डिस्प्ले किए गए। इसके अलावा हमारे पास टेराकोटा टाइल्स हैं, हमारे पास रेयर जो न्यूमिस्मेटिक वॉल्ट है, अगर आप SPS म्यूजियम की बात करें तो मोर देन 70,000 कॉइन्स हमारे पास है। आज हमने गोल्ड कॉइन्स जो है उसका भी जो कलेक्शन है यहाँ पर रखा है, रेयर जो स्कल्पचर है उनका भी रखा है। सो जितनी भी सारी चीजें हैं वो आज हमने स्पेशली डिस्प्ले पे रखी है। अगर आप डोगरा आर्ट म्यूजियम की बात करें, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमने शाहजहां का जो गोल्ड प्लेटेड बो और एरो है वो रखा है वहां पर डिस्प्ले पे इस वक्त डोगरा आर्ट म्यूजियम में, और वहां पर रेयर जो टेराकोटा हेड्स है, या जो हमारी बसोली की या पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स है, जो आपने अभी सब लोग जानते हैं कि भाई वो GI टैग भी मिला है उनको। और SPS म्यूजियम में हमारे एक रेयर है एक जो वुवन शॉल है, श्रीनगर सिटी का जो भी मैप है वो बुना गया है, और इसको बुनने में कम मोर देन 10 ईयर्स लगे हैं, वो शॉल भी एक डिस्प्ले है। वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही है, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक इंग्लैंड में, और एक SPS म्यूजियम में।
1: सर, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो आज श्रीनगर में जो हमारी गैलरी है ना SPS म्यूजियम को लेके, तो इसमें कहा जाता है कि मोर देन 85,000 कलेक्शंस है, तो exactly, क्या वो exactly. सारे कलेक्शंस डिस्प्ले कर पाते हैं इस दिन पे आप?
2: देखिए, SPS म्यूजियम इट इज G+2 स्टोरी, तो 3 मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर मिला के तो 4 मंजिल टोटल है, तो 85,000 स्कल्पचर्स को, आर्टिफैक्ट्स को डिस्प्ले करना है, इट्स अ ह्यूमंगस टास्क, पर इट रिक्वायर्स अ लार्ज स्पेस। हम लोग क्या करते हैं कि ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स है रोटेशन बेसिस पे ये डिस्प्ले होते हैं, और प्लस हम हर एक चीज को रेगुलरली डिस्प्ले भी नहीं कर सकते, बिकॉज म्यूजियम्स के नाम्स होते हैं कि कहीं पर जो डेलिकेट चीजें होती हैं वो केसेस में रखी गई हैं, जैसे हमारा जो गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट है बर्ज बार्क पे लिखा हुआ है, और इसको हम बिल्कुल जो ग्लास के शोकेस में रखते हैं। हमारे पास जो टेक्सटाइल कलेक्शन है, हमारे पास अफगानी शॉल्स है, हमारे पास डोगरा शॉल्स है, हमारे पास पुराने मुगल एरा के शॉल्स पड़े हुए, तो वो टेक्सटाइल कलेक्शन, वो भी बहुत सारे कलेक्शन, तो उनको भी रोटेशन बेसिस के ऊपर वो लगाया जाता है। तो इस चीज में जैसे न्यूमिस्मेटिक्स जो हमारे पास 70,000 से ज्यादा कॉइन्स है, सो अगर 70,000 कॉइन्स को लगाया जाए, इट विल टेक ए ह्यूज एरिया, आपको चाहिए पता नहीं कितनी सारी बिल्डिंग, सो रेगुलर जो बेसिस पे ऊपर एक जो साइकिल में, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग इनको डिस्प्ले करते हैं। जी
1: ओके। जो आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें, तो आज क्या कुछ खास है जो हमारी न्यू जनरेशन है कि उनको क्या कहना चाहेंगे, वो अगर आज हम उनको कहें कि म्यूजियम चले, तो उनके लिए क्या कुछ खास है जो उनकी मतलब दिलचस्पी का मरकज बनेगा या फिर उनके लिए स्पेशल रहेगा?
2: देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आज का जो थीम है जो आईकॉम ने डिसाइड किया है, म्यूजियम्स यूनाइटिंग ए डिवाइडेड वर्ल्ड, तो आजकल के सिनेरियो में जहां सोशल फ्रेगमेंटेशन या जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, सो म्यूजियम्स आर द ओनली न्यूट्रल पब्लिक स्पेसेस। और अगर आप जो यूथ है या स्टूडेंट्स है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप आएंगे, यू विल सी योर हिस्ट्री, योर कल्चर, योर ट्रेडिशंस, और उनके जो चिन्ह है, उनकी जो उनकी रिफ्लेक्शंस है इन आर्टिफैक्ट्स में या बाकी सारी चीजों में, वो देख पाएंगे, एंड दे विल फील प्राउड ऑफ। और जो हमारी अगर हम देखेंगे, अगर SPS म्यूजियम में आए,

0: तो हमारे पास 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी के आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं जो आज हमने डिस्प्ले पे लगाए हैं। अगर आप बात करते हैं पर्शियन की या खसूसन एक कम्युनिटी की, लेकिन पर्शियन लैंग्वेज में महाभारत लिखी गई है, गुरुमुखी में कुरान शरीफ लिखा गया, तो कुरान की जो सारी तफसील लिखी गई है, सो इट इट ट्रैवर्सेज ऑल द रिलीजंस और द लैंग्वेजेस, और वो सारी रिफ्लेक्शन, वो सारी चीजें जो एक रेयर चीज और जो हमारी धरोहर है, जिसको हम अपना एक जो एक
1: पहचान बोलते हैं, बिल्कुल
0: जी जी जी एब्सोल्युटली, एंड दे शुड कम एंड दे शुड फील प्राउड ऑफ।
1: जैसे कि आज हम मॉडर्न डिजाइन वियर्स पहनते हैं, हमारे पास मॉडर्न कपड़े हैं, लेकिन जब ये सब कुछ नहीं था तब भी हमारे पास ऐसे बुनकर थे, ऐसे सलाहियतकार थे, या ऐसे जो बुनाई करते थे, जो शॉल बाफी करते थे, उनके कुछ ऐसे नमूने हमारे पास मौजूद है जो हमारी नई नस्ल को जानना चाहिए।
0: एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छी बात की, क्रिएटिविटी की बात की और क्रिएशन की बात की। अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो मैंने एक सोजनी मैप है हमारा, जो श्रीनगर सिटी का जो हाथ से बना गया है, एंड इट हैज गॉट ऑल द डिटेल, चाहे डल है, आसपास के एरिया है, जितने भी रीजन है, पूरे श्रीनगर सिटी को उन्होंने एक डिटेल में बना गया है, इट हैज टुक मोर देन 10 ईयर्स टू वीव दैट होल मैप। अगर उसके बाद आप डोगरा जो जो इराक के शॉल्स की बात करते हैं, या अफगान इराक के शॉल्स की बात करते हैं, या बहुत सारे जो टेक्सटाइल कलेक्शन है हमारा, इवन जो मॉडर्न, अगर आप आज आप उनको डिस्प्ले पे देखेंगे, मैं आपको भी खुसूसन दावत देता हूँ, आप देखेंगे जो डिजाइन है और जो इंटरकेसी के साथ उन्होंने बुना है, इन द एब्सेंस ऑफ मशीन, इन द एब्सेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड डिजाइन,
1: लेटेस्ट टेक्नोलॉजी,
0: इन द एब्सेंस ऑफ एआई, वो एक बिल्कुल एक यूनिक सी चीज है,
1: अपने आप में मुनफरद है। जी जी, मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को, हमारी नई नस्ल को, और इवन इनफैक्ट हमें भी ये देखने के लिए आना चाहिए, ताकि हमें अपने जो विरसे की पहचान है वो हो जाए। आपसे बातें बहुत सारी करनी थी, चूंकि वक्त बहुत कम है, और इंशाल्लाह इस बारे में आपको दावत देंगे अपने प्रोग्राम में। बस आज के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, शॉर्ट में अगर पूछूं?
0: मैं एक ही चीज कहूंगा कि वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर हिस्ट्री एंड अवर कल्चर। और एक उर्दू कपलेट से मैं ये एंड करना चाहूंगा और अपील करना चाहूंगा कि खामोश बैठी है यादें पुराने कमरों में, जो गौर से सुनो तो तारीख गुनगुनाती है, कम एंड विजिट एंड रेस्पेक्ट अवर कल्चरल।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्टेड होने के लिए, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे जो डायरेक्टर कुलदीप कृष्ण सिन्हा जी, जिनके साथ हमारी सिद्धा जी, जिनके साथ हमारी बात हुई, और SPS म्यूजियम में, जो हमारे श्रीनगर का म्यूजियम है, ये सिर्फ एक अजायब घर नहीं है, पुरानी चीज़ों को जमा करने की जगह नहीं है, बल्कि ये वो दरीचे होते हैं, हमारे अजायब घर जो है वो बहुत ख़ास होते हैं, ये वो दरीचे होते हैं जिनके ज़रिए हम गुजरे हुए वक्त, कदीम तहजीबों और इंसानी इर्तका का मुशाहिदा कर सकते हैं। अजायब घरों के बारे में कुछ अहम और दिलचस्प मालूमात के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे, तो इनकी अहमियत किसी घर से भी जो है, अजायब घर किसी भी कौम की सकाफत शनाख्त के महाफ़िज होते हैं, और यही हमें बताते हैं कि हमारे असलाफ ने किन हालात में जिंदगी गुजारी, उनके अवजार कैसे थे, उनका फन तामीर कितना बुलंद पाया था। ये तहकीक करने वालों और तालिब इल्मों के लिए इल्म का एक जिंदा जरिया बनते हैं। दुनिया का सबसे जो बेहतरीन घर है, मुझे लगता है, इल्म का खजाना, सकाफत का खजाना, अजायब घर है।
2: बिल्कुल, और ये जो इस साल जो थीम है, म्यूजियम्स यूनाइटिंग ए डिवाइडेड वर्ल्ड, यानी अजायब घर बटी हुई दुनिया को मुतहिद करने का जरिया। और तस्लिम, आपको नहीं लगता कि जो हमारी आर्काइव्स लाइब्रेरी हैं, ये भी ये काम करती हैं?
1: बिल्कुल, हमारे आर्काइव्स में ऐसे ऐसे नादर नमूने हैं,
2: नायाब
1: नमूने हैं कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन जब हम नई नस्ल, नई जनरेशन, या इनफैक्ट जब हम भी सुनते हैं ना, तो हमारे होश उड़ जाते हैं कि यूतः जबरदस्त फनकार इसमें ऐसे अवेलेबल, यमो यूतः दुत अदबस दुत,
2: बिल्कुल,
1: और बहुत दिल खुश हो जाते
2: हैं। चाहे उस कथ करो राज बेगम, चाहे इस कथ करो कुनि कहाँ तो सोफियाना कलाम, चाहे इस कथ करो छकरी हंस, चाहे इस कथ करो नायाब शाहकारी ड्रामा तिज कथ करो गोड़ बोजो राज बेगम आवाज में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये सन सकाफत यूजन इस ये पठ पन्न सामिनन ताम वात नावान पन विरसत मन ताम वात नावान बोजो ये बहुत राज बेगम जी हिंद आवाज में।

सूफी सदा यह प्रोग्राम चु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़न दहन बजन ताम नश सब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: दुनिया के किसी भी कोने में मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी के जरिए
1: जी हाँ, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। हम फिर हाजिर, फिर इस्तकबाल अपने होस्ट के पास आप सबका। और ये वक्त है हमारा माहौल पे बात करने का। माहौल की बात करें तो माहौल सिर्फ हमारे इर्द गिर्द मौजूद हवा, मिट्टी या दरख्तों का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये उस फिजा का नाम है जो हमारी रूह और सोच को मुतासिर करती है। सच्चा और पाकीजा माहौल वही है जहाँ दिल को सुकून और रूह को बालीदगी मिले। जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को मोहब्बत, एहतराम और गहरे एहसास से सजाते हैं तो कायनात का हर जर्रा एक खास तरतीब और खूबसूरती में रंगा हुआ नजर आता है। एक ऐसा माहौल जहां मिट्टी की खुशबू और हवा का लम्स दिल को किसी खास याद या अकीदत की तरफ ले जाए, वही असल में जीने की काबिल फिजा तख्लीक करता है। चलिए, एक और फिजा तख्लीक हो गई हमारे आसपास। हमारे मेहमान आज के जो हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज में, आ पहुंचे हैं हमारे मेहमान। आज के हमारे मेहमान बहुत ही खास हैं, समीर बख्तू साहब। ये कश्मीर के माहौल को बचाने और इसे पायदार बनाने के लिए बुनियादी तौर पर जिम्मेदाराना सयाहत यानी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और इको टूरिज्म के शोबे में नुमाया काम कर चुके हैं, कर रहे हैं वो। एक और इनका जो मैं आपको परिचय कह सकते हैं वो दे सकती हूँ आपको, वो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर चैप्टर के चेयरमैन और सियाहती इदारों के सरबराह के तौर पर माहौल दोस्ती के लिए सरगर्म अमल है। तो अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। समीर साहब, आपका हार्टली वेलकम हमारे इस शो में।
2: शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के।
1: जी, माहौल और वादी के तहफ़ के हवाले से हम अगर आपसे बात करें तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, सयाहत और माहौलियात जो है ये आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है?
2: देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जो टूरिज्म है और कश्मीर का एनवायरनमेंट है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। एंड व्हेन आई से इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर, इसका बहुत गहरा और इम्पॉर्टेंट ताल्लुक है आपस में। बिकॉज वी लिव इन अ इको फ्रेजाइल जोन इन कश्मीर, और कश्मीर का जितना भी टूरिज्म है दैट इज़ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड विद एनवायरनमेंट। लोग यहाँ पे पहाड़ देखने आते हैं, साफ शफाक पानी के नाले देखने आते हैं। आई वुड से दे कम हियर टू सी ब्यूटिफुल लेक्स, मेडोज, वॉट नॉट, बट एवरी थिंग इज़ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड विद एनवायरनमेंट। और अगर हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दावा के साथ कि कश्मीर का जो टूरिज्म है दैट विल कोलैप्स एंड इट विल कोलैप्स इन अ वेरी बिग वे। और अगर आप ग्लोबली देखें, बहुत सारे दुनिया की टूरिज्म जगहें हैं जहाँ पे आज कोई नहीं जाता, वो बंजर बन गई है बिकॉज वहाँ पे ओवर टूरिज्म एंड एक्सेसिव टूरिज्म करा गया विच इज़ अनप्लान्ड। सो टूरिज्म, जब व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एंड इको टूरिज्म, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको टूरिस्ट को रोकना है कश्मीर आने से। अगर हम अभी कश्मीर में 50 लाख टूरिस्ट को होस्ट कर सकते हैं, अगर हम इसको रिस्पॉन्सिबली प्लान करें, वी कैन होस्ट 10 टाइम्स मोर टूरिज्म इन कश्मीर, बिकॉज कश्मीर इज मच मोर बिगर देन गुलमर्ग, पहलगांव एंड सोनमर्ग। अभी हमने 80% कश्मीर को एक्सप्लोर भी नहीं किया है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एंड इको टूरिज्म इज द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री।
1: गुड, ये जो हमारी सियाहत है, अगर इसको हम मस्जिद के हवाले से देखें तो मैशियत में, हमारे मैशियत में ये रीढ़ की हड्डी का जो दर्जा है वो रखती है। तो लेकिन जो सियाहत और माहौलियाती तहफ़ के दरमियान एक हल्की सी, जो पतली सी लकीर है, वो कहाँ पर हम खींच सकते हैं, इसको एक पायदार तवाजुन, इसमें सस्टेनेबल बैलेंस जिसको हम कह सकते हैं, उसको कैसे कायम कर सकते हैं?
2: देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज जो ये तवाज़ु आप कह रहे हैं उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। दीज आर वेरी टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। सो जैसे गुलमर्ग, पहलगांव और सोनमर्ग जो ओवर ऑलरेडी प्रमोटेड जगहें हैं, वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। एंड प्लेसेस लाइक बंगस, दूधपथरी, लोलाब, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। सी, टूरिज्म का मतलब ये नहीं है कि वी विल रेज कंक्रीट जंगल्स। सी अबाउट सोनमर्ग, सोनमर्ग इज बीन कन्वर्टेड इनटू अनप्लान्ड कंक्रीट जंगल। आप जहाँ पर भी देखेंगे होटल्स है, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है, और जो सोनमर्ग का अपना ऑरा था दैट इज गॉन। और इफ यू सी द सेम थिंग हैपेंस इन पहलगांव, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ कमर्शियल सिटी।

0: एक टूरिस्ट को अगर कमर्शियल सिटी और बड़े बड़े होटल्स में रहना है, ही विल रीच टू दुबई एंड अदर प्लेसेस वेयर आर्टिफिशियल टूरिज्म इज ऑन हेल्म, जहां पे आर्टिफिशियल टूरिज्म की बहुत तरजीह है और बहुत कम पैसों में और बहुत अच्छे, कश्मीर से 10 गुना अच्छे होटल्स में रुक सकते हैं. बट लोग जब कश्मीर के बारे में सोचते हैं, दे थिंक अबाउट एनवायरमेंट, दे थिंक अबाउट नेचर, दे थिंक अबाउट फ्रेश वाटर लेक्स, वेरी ब्यूटीफुल टेम्परेचर्स विच वी आर लूजिंग विद एवरी पासिंग डे.
1: बिल्कुल.
0: हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरे वर्ल्ड में है, वी अंडरस्टैंड, बट जिस स्पेस पे कश्मीर में ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट कर रही है, इट इज डिजास्टरस.
1: जी, ये जो सियाहत हमारे कश्मीर में बढ़ रही है, जैसा कि हम इसके लिए ना नहीं बोल सकते हैं, हम सैयाहों को रोक नहीं सकते कि आप नहीं आए हमारे कश्मीर में, क्योंकि इससे हमें जो माहौल को बचाने के लिए, हम कभी एक आम आम इंसान ये सोच सकता कि एज गेस्ट टूरिस्ट यू और इनकी ठीक है, आम तौर पर जिसमें टूरिस्ट मतलब इनकी वजह से माहौल को बहुत माहौल में आलूदगी आती है. तो लेकिन कहाँ पर आप

0: क्योंकि इससे हमें जो माहौल को बचाने के लिए हम कभी एक आम आम इंसान ये सोच सकता कि एज गेस टूरिस्ट यूर इन कहीं ठीक है आमतौर पर टूरिस्ट मतलब इनकी वजह से माहौल को बहुत माहौल में आलूदगी आती है तो लेकिन कहाँ पे आप जो इको टूरिज्म के साथ जो आपकी वाबस्तगी रही है तो वहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे जो सयाहत है क्यों क्या वो सयाहत का बढ़ता रुझान जो है वो हमारे माहौल के लिए खतरा बन रहा या फिर उस खतरे को अगर हम बैलेंस करना चाहें तो किस तरह से करेंगे क्या करना चाहिए हमें इंडिविजुअली और इंफरादी तौर पर तो है ही अगर हम सब मिलकर इंडिविजुअल और इंफरादी तौर क्या कर सकते हैं हम सब मिलकर इसके लिए
1: देखिए आपने बहुत अच्छी कोर पे टच किया है इससे बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी इको टूरिज्म और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का मतलब ये नहीं है कि टूरिस्ट को रिस्ट्रिक्ट करिए कश्मीर आने से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ गुलमर्ग की कैपेसिटी है 10 लाख लोग पर डे वहाँ जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इट्स अ हाइपोथेटिकल फिगर 10,000 पीपल कैन विजिट गुलमर्ग इन अ डे हम क्या करते हैं हम 20 लाख लोग को वहाँ पर लेके जाते हैं उससे कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ते हैं उससे आपका जो माहौलियात है खराब हो जाता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिससे माहौल खराब हो जाता है आपके जो करंट जैसे गंडोला है उस पर बहुत सारा लोड पड़ जाता है और हेवी सिचुएशन हो जाती है और इवेंचुअली आपके स्नोफॉल्स डिले हो जाते हैं जो अभी गुलमर्ग में हो रहा है जितनी स्नो 10 साल पहले पड़ती थी कश्मीर में वो अभी नहीं पड़ती है सो दिस इज द प्रॉब्लम अब इसको हेल्प कैसे करें हाउ वुड वी सॉल्व इट सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनर लाइन परमिट्स जो लद्दाख में चलते हैं और बहुत सारी जगहों पर चलते हैं तो उसमें क्या होता है लेट्स से आप गुलमर्ग जाना चाहते हैं यू विल गो थ्रू अ वेबसाइट वेयर यू विल बुक अ परमिट फॉर गुलमर्ग और गवर्नमेंट चाहती है माहौलियाती एक्सपर्ट ने प्रॉपर R&D करके बोला है कि सिर्फ 10 लाख लोग जाने चाहिए गुलमर्ग पर डे फॉर एग्जाम्पल तो जब ये 10 लाख लोगों का पैरामीटर फुल हो गया गुलमर्ग कोई नहीं जा पाएगा देन द टूरिस्ट विल शिफ्ट टू पहलगांव दे मैट शिफ्ट टू बंगस लोलाब दे मैट शिफ्ट टू दूधपथरी कोकरनाग देर आर सो मेनी ब्यूटिफुल प्लेसेज इन गुलमर्ग विच एग्जिस्ट इन कश्मीर इफ यू टॉक अबाउट दूधपथरी दूधपथरी इज मच मोर बेटर देन गुलमर्ग वेन इट कम्स टू स्नो स्कीइंग If you install a gondola in Gulmarg, it is going in Doodhpathri. ये Gulmarg से 10 गुना लंबा और much more beautiful meadows आपको ऊपर मिलेंगे उससे ज़्यादा. If you talk about the altitude height, Gulmarg और Doodhpathri almost equal altitude पे है. So हर तौर पे हर comparison में Gulmarg and Doodhpathri are neck to neck. Why do you want to put load on one destination? So that's how you can do it. And there are two more aspects that I want to talk about.
0: Okay.
1: You have to be a responsible travel agent or a stakeholder.
0: Okay.
1: Also, you have to be a responsible tourist. So, tourist ki bhi ek responsibility hai ki if tourists will come from other states, they are going to come to Kashmir. They have to ensure that they work responsibly. They don't trash. They don't use plastic. They don't put trash all over the place. And they use washrooms properly. And they are going to adopt responsible tourism norms. We as stakeholders. At the same time, हमको इंश्योर करना चाहिए हमारे जो होटल्स हैं इको फ्रेंडली टॉयलेट्रीज यूज़ करें वी डोंट यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स वी यूज़ ग्लास बॉटल्स ये छोटे छोटे मेजर्स हैं जिससे हम को इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं
0: तो ये छोटे छोटे मेजर्स करेगा कौन
1: Exactly.
0: किसको करने चाहिए
1: एग्जैक्टली देखिए हमें पहले एक कॉन्शियस स्टेक होल्डर बनना है इट इज़ मी हू हैज़ टू डू इट इफ आई एम अ होटेलियर आई हैव टू इनिशिएट बिकॉज अगर मैंने 50 करोड़ 100 करोड़ लगाए अपने होटल्स में ये 100 करोड़ जीरो है अगर हमारा माहौलियात खत्म हो गया ये 100 करोड़ खत्म हो जाएंगे जिस 100 करोड़ जो हमारा वट एवर इन्वेस्टमेंट आई हैव पुट इन ये सब खत्म हो जाएगा इन इन केस आई डोंट टेक केयर ऑफ दी एनवायरनमेंट मैंने माहौलियात पे अगर कुछ काम नहीं किया ये
0: तो
1: सारा
0: जो आपका इन्वेस्ट किया हुआ है वो खत्म तो वो खुद अपने हाथ से
1: मुझे करना है कॉन्शियस उसके बाद सेकंड लेग वी कम टू द गवर्नमेंट द पॉलिसीज ऐसी बनानी है जिस पॉलिसी पे हम इंश्योर करेंगे कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस इंप्लॉय में हो अगर मुझे गवर्नमेंट बोलता है यू कैन नॉट यूज प्लास्टिक इन गुलमर्ग इट हैज टू बी बैंड अगर मुझे गवर्नमेंट बोलता है प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपको करना है इट हैज टू बी प्लान्ड तो दैट्स वेयर द गवर्नमेंट कम्स इन एंड द लास्टली द टूरिस्ट हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल
0: प्लान्ड बाय हु
1: गवर्नमेंट हैज टू एनफोर्स इट
0: लेकिन मुझे लगता है क्या मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगी गवर्नमेंट तो अपनी कोशिशें करेंगी लेकिन क्या मींग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोगों पे ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम इंडिविजुअली इस चीज़ को अच्छा जो ये हमारे पास जो टूरिस्ट आते हैं तो वो जब ये सारी चीज़ें उनकी वजह से भी माहौल में काफ़ी आलूदगी आती है लाइक वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जब विजिट करते हैं तो इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है तो उसके लिए प्रॉपर वे क्या है कि वो

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन के साथ इस वक्त आप जुड़े हुए हैं मेरी वेव और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़। इस वक्त आप मुखातिब हैं अपने आज के मेहमान के साथ। आज हमारे साथ है समीर बख्तूर साहब, जो माहौल दोस्त सयाहत में काफ़ी काम कर चुके हैं। और ये जो सयाहत है ये एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो हमारे माहौल के साथ काफ़ी रिलेट करता है। और माहौल अगर नहीं बचा तो सयाहत असवाति वारिया जाख, सयाहत कैसे ख़त्म। और सयाहत अगर ख़त्म हो जाएगी तो हमारा जो सिस्टम है सारा बिगड़ सकता है। मईशत के लिहाज से अगर हम देखें तो ऐसे और कौन से सेक्टर्स हैं कि अगर माहौलियात का तवाज़ुन बिगड़ता है तो वो सेक्टर्स अफेक्टेड हो जाते हैं।
1: देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी ये बोला था कि कश्मीर इको फ्रेजाइल जोन है, तो यहाँ पे कोई भी सेक्टर हो, चाहे टूरिज्म हो, हॉर्टिकल्चर हो, आप एग्रीकल्चर की बात करें, आप हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, कोई भी सेक्टर है, इट इज़ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड विद एनवायरनमेंट। तो आप हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, आप मानिए आपके पास जब रेन होना है तब रेन नहीं होता है तो हमारे क्रॉप्स पे प्रॉब्लम पड़ता है, हमारे सेब प्रॉपरली ये नहीं होते हो जाते हैं। तो अभी एग्रीकल्चर में आप देखिए, अगर आपके सही वक्त पे बारिशें ना हुई, सही वक्त पे सूखा ना हुआ, तो जब आप हार्वेस्ट कर रहे हैं तब बारिशें हुई, जब क्रॉप्स को पानी चाहिए तब पानी नहीं मिल रहा है, तो ये इफेक्ट हो जाते हैं। टूरिज्म भी इफेक्ट होता है, अगर टूरिज्म इफेक्ट हो गया तो अपना हैंडीक्राफ्ट आपका इफेक्ट हो गया, हैंडीक्राफ्ट इफेक्ट हो गया तो लाइवलीहुड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल इज इन प्रॉब्लम, जो हैंडीक्राफ्ट के साथ
0: इंबैलेंस हो जाएगा,
1: तो एवरीथिंग विल बी इंबैलेंस। एग्जैक्टली, तो जो भी हमारा है वो सब इंबैलेंस में पड़ जाएगा। तो दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड थिंग इज एनवायरमेंट किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज आपकी टॉपोग्राफी जो जगह की है दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट।
0: बिल्कुल, तो ये जो एनवायरमेंट है आप समझ जाना चाहिए हम सबको, मेरे ख्याल से आपसे बात करने के बाद और इस सब्जेक्ट के बारे में जानने के बाद यही पता चलता है कि अगर हमें ज़िंदा रहना है, एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, अपने कश्मीर को खूबसूरत बनाना है और हर एक शोबे को बहुत ही परफेक्टली हमने रखना है इन ऑर्डर, तो हमें सबसे पहले हर एक फर्द को माहौल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो सांसों की तरह रखिए अपने माहौल का ख्याल, क्योंकि जैसे सांस आती जाती सांस इंसान को ज़िंदा रखती है, वैसे ही ये माहौल हमारे आसपास के गिर्द नवाह को ज़िंदा रखता है, हमारी कश्मीर को ज़िंदा रखता है और हमको ज़िंदा रखता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो समीर साहब, आप एक बात बताएं कि जैसे हमारा, जब हम टूरिस्ट की बात करते हैं और जब टूरिस्ट यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं, जब पहली बात वो डेस्टिनेशंस की बात करते हैं कि तिमकुतकरण विजिट, तो ऐसे सयाहत को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो ये जो वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एक लोकल टूरिस्ट ट्रैवलर, अच्छा सांतिम या हमारे जैसे यहाँ गाइड्स होते हैं, जैसे ट्रैवल एजेंसीज होते हैं, ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, तिम के एक्सपेक्टेशंस चित मनीष थवा, और जो वो एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी हो जाती है, क्या खुद सयाह फिर जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं क्या वो उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। हमारे इको टूरिज्म में एक टर्म है जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर। तो रिस्पॉन्सिबल बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रैवलर के लिए कि वो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बने। अब मैं अपनी बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं पहाड़ों में जाता हूँ ट्रैकिंग करने के लिए, इफ़ आई एम अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर, मैं इंश्योर करूँगा कि जब मैं वापस जाऊँ अपना टेंट लगा के पहाड़ों में एक दो दिन गुजारूँ, जब मैं वापस जाऊँ मेरे कोई सबूत ना वहाँ हो, इसको हम माहौलियाती लैंग्वेज में बोलते हैं, मेरे सबूत फुटप्रिंट्स ना हो मेरे वहां पे,
2: जैसे कि कोई वहां पे आया ही ना हो।
1: हाँ, तो दैट्स डेस्टिनेशन को उसी तरीके से आप वापस करें जिस तरीके से आपने उसको देखा था। रादर उसको बेटर बनाएं अगर वहां पे ट्रैश हो। हमारे पास पहले बहुत कॉन्शियस ट्रैवलर्स आते थे, अंग्रेज आते थे, तो वो क्या करते थे, जब हम ट्रैकिंग लेके जाते थे उनको, हमारे बाप दादा जब ट्रैकिंग लेके जाते थे, तो हमने सुना बिफोर कि हम रैप अप करते थे, वी यूज टू गिव देम सर्विसेज, तो हम जब रैप अप करते थे अपना सारा गेयर वेयर सब कुछ, तब तक ये ट्रैवलर ना घूमता था इस कैंप साइट पे, कहीं प्लास्टिक बॉटल देखता था, कहीं ट्रैश देखता था, एंड यूज टू बर्न देम ऑफ एंड बर्न देम ऑफ ऑन अ स्टील प्लेट, ताकि जो नीचे ग्रास है उस पर भी वो काला जलने का ना वो निशान ना पड़े। दैट इज कॉल्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर। अभी ट्रैवलर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट्स से मैं इको टूरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आई विल गो टू अ डेस्टिनेशन, क्या मैं वहाँ लोकल लोगों को फायदा दे रहा हूँ, क्या मैं वहाँ पे लेज का चिप्स खा रहा हूँ या लोकल नून चाय पी रहा हूँ? That is responsible traveler. That's how traveler will contribute to the

0: प्लेस दैट ही इज विजिटिंग, क्या मैं वहां पे जाके लोकल आर्ट क्राफ्ट खरीद रहा हूँ या अमेजोन की ही चीजें खरीद रहा हूँ या कहीं से लिवाइस की जीन्स खरीद रहा हूँ. कश्मीर बंदा जो आता है, एक ट्रैवलर आता है, वो लिवाइस की जीन्स खरीदने नहीं आता, ही हैज टू बाई कश्मीरी कार्पेट, कश्मीरी शॉल्स, पेपर माशी. तो वहां से वहां की लोकल मार्शत को फायदा मिलता है, लोकल स्टेक होल्डर्स को. दैट्स व्हाट अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर इज अ वेरी वास्ट टर्म.
1: क्या एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर के लिए ये जरूरी नहीं है कि जब एक सैयाह उससे ये पूछे कि कौन सी डेस्टिनेशन दे रहे हो, इस पे क्या क्या हमें, मतलब इसमें हमें कौन सी चीज़ें मिल रही हैं या फिर हम कहाँ विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे देखने वाली कौन सी चीज़ें हैं, तो जो हमारा रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल एजेंट हो वो भी उस सैयाह को उस वक्त जब वो उसको गाइड कर रहा होता है ये बोले कि आपको किन चीज़ों से गुरेज करना है जिससे हमारा जो माहौल है वो पोल्यूट ना हो. वो ऐसा नहीं कर सकता.
0: एग्जैक्टली
1: उसे ऐसा करना चाहिए.
0: बिल्कुल करता भी है. आप मुझे बताइए, जब हम लद्दाख का पैकेज बेचते हैं, पहली बात हम उनको बोलते हैं जनाब प्लास्टिक वहाँ पे बैन है, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाना है बिकॉज यू विल गो टू सर्टन हाइट, वहाँ पे ये चेकलिस्ट आपकी. But then, पहली एक बात है ना, it goes hand in gloves. दोनों चीजें बिल्कुल hand in gloves. एक responsible traveler, traveler तब responsible है ना जब मेरा local जो माशरा है वो responsible है. Second leg comes to the travel agent, he will give. अभी कश्मीर में हर जगह हम बोलते हैं plastic.
1: समीर साहब, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि हम इन चीजों को उस वक्त नजरअंदाज करते हैं जब हम एक communicate करते हैं एक सैयाह को, एक tourist को, हम इन चीजों को उस वक्त आपको मानना पड़ेगा कि इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं. बीइंग अ ट्रैवल एजेंट, हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, हम ये चीज़ें उस वक्त मदद नज़र रखते नहीं, अपने टूरिस्ट को नहीं कहते हैं कैटेगोरिकली कि आपको जी इन सब चीज़ों
0: का. दैट्स वेयर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कम्स इन प्लेस. जितने भी हमारे मेंबरान हैं, चाहे मैं ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का बात करूँ, चाहे इको टूरिज्म सोसाइटी की बात करूँ, वी इंश्योर कि मेरा मेंबर कुछ ऐसा एक्ट ना करे जो एनवायरमेंट के खिलाफ हो, बिकॉज ही विल लूज हिज मेंबरशिप और ही विल लूज हिज एसोसिएशन विद मी, विद माई माई ऑर्गेनाइजेशन, इफ ही डज एनीथिंग अगेंस्ट द एनवायरमेंट. नंबर वन. नंबर टू, लेट मी टेल यू वन थिंग. आज जो तरजीह दी जाती है ना, वो दी जाती है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को. मेरे पास बहुत हाई एंड व्लॉगर्स हु आर माई फ्रेंड्स, वो यहाँ आते हैं. आई एम टेलिंग यू, व्हाइल दे आर व्लॉगिंग दे डोंट वॉन्ट प्लास्टिक बॉटल इन द फ्रेम. That is where consciousness is coming up. आज एक प्लास्टिक बोतल अगर मेरे टेबल पे यहाँ पे होगी, इट इज कंसिडर्ड एज अ टेबू. और ये हमको करना चाहिए. That's how slowly. आज ट्रैवलर बोलता है, can I visit your homestay? He doesn't want to visit five-star hotels. वो चाहता है होम स्टे में जाए, कल्चरल एक्सपीरियंसेस मिले, शिकारा में जाके किसी फैमिली से इंटरेक्ट करे. टूरिज्म अभी स्लोली स्लोली स्विच हो रहा है टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबिलिटी, बट इसमें हमें विग्रेसली काम करने की बहुत जरूरत है.
1: जितनी आपने ड्राइव्स आज तक चलाई हैं, रिसेंटली मैं आपको दो दिन पहले की बात बोलूंगी, गुलमर्ग में एक ड्राइव चलाई गई क्लीनेस के लिए, सफाई मुहिम गुलमर्ग एरियाज में चलाई गई, तो काफ़ी उसका रिव्यू आया, काफ़ी कामयाब रही वो. तो ऐसी ड्राइव्स कितने किस पैमाने पे चलनी चाहिए, और जितनी ड्राइव्स आपने चलाई हैं ऐसी मुहिमात, जो सफाई मुहिमात आप चला रहे हैं, उनका क्या रिस्पांस मिला और उससे कितना फ़ायदा हुआ, लगता है आपको कि उसका उसको चलाने के बाद, वो ड्राइव चलाने के बाद जो आपका मौकिफ था, हदफ था, वो कम्प्लीट हो गया किसी हद तक?
0: पहले मैं आपको बात बताऊँ, क्रिटिसिज्म विल ऑलवेज कम. We have to be ready for
1: जरूरी है. जब तक नहीं आएगा हम perfect नहीं होंगे.
0: हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्लीननेस स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने चलाया. ही कैन नॉट, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ही पूरे हिंदुस्तान को साफ नहीं कर सकते, बट उनका झाड़ू हाथ में उठाना एक मैसेज है. ऐसे ही जो हम क्लीनर्स ड्राइव कर सकते हैं, मैं गुलमर्ग को पूरा साफ नहीं कर सकता, मैं कश्मीर को साफ नहीं कर सकता, बट जो कॉन्शियस स्टेक होल्डर्स गुलमर्ग जाके, पहलगांव जाके हम इनिशिएट लेते हैं, बाकी जितने लोग वहां देखते हैं या जो फर्द वहां लोकल है, उनमें भी कॉन्शियस थोड़ा सा उठता है. यू वोंट बिलीव, मैं एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाऊंगा. मैं सोनमर्ग में बाय द डायरेक्टिव ऑफ डायरेक्टर टूरिज्म, हमने एक वहां पे क्लीनर्स ड्राइव करी, और जूही में सामान ये कुछ ट्रैश उठा रहा था, एक टूरिस्ट आया, व्हाई आर यू डूइंग इट? मैंने कहा नहीं, हम आपके लिए कर रहे हैं. उसकी आंखों में आंसू आए, आई डोंट नो, इट वाज इमोशनल, आई हैव इट ऑन कैमरा. एंड वो इमोशनल हुआ वहां पे, और इमोशनल होने के बाद उसने बहुत ऐसी बातें की, उसने हैंड फोल्ड किए कि सर हमने माहौल को खराब किया, हमने ट्रैश किया था, और वो हमारे साथ जुड़े. That's where these cleaners drive will help you out. वहाँ पे ये जो हमारे initiatives होते हैं, वहाँ में help करते हैं.
1: एक आम इंसान को आप कैसे motivate करते हैं इन सब चीजों को, इन सब चीजों की तरफ कैसे motivate?
0: बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है. मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए है. हमने सोनम
1: बोल सकते हैं, हमारा ये program इसलिए है ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं,
0: हमने काम कर रखा है.

0: बात ग्लेशियर्स की चल रही है सुनील साहब, हमने ग्लेशियर्स की बात तेजी से पिघल रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: जी,
0: जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
1: जैसे मैंने आपको बोला, मैं अपनी बात करूंगा। ग्लेशियर्स जो है, आई रिमेम्बर जब मैं थर्ड क्लास में था, मैं सोनमर्ग जाता था और मेरे सामने एक बहुत बड़ा ग्लेशियर दिखता था। मुझे लग रहा था कि जो थाजवास ग्लेशियर है बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। अगर अब मैं आज जाता हूँ, इट इज श्रिंकिंग, अब मुझे बहुत दूर लगता है वो, मुझे लगता है मैं पहुंच ही नहीं सकता उस तक। तो ये एक छोटी बात है, लेकिन अगर हम इंटेंसली सोचे, ये डिजास्टर है कश्मीर के लिए, बिकॉज आपके ग्लेशियर्स ही रिस्पॉन्सिबल है आपके पास बड़े बारिश लाने के लिए, वक्त के तौर पे, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे जब आपके पास बारिशें आएंगी, दैट्स हाउ ग्लेशियर्स आर गोना प्रिजर्व, बिकॉज जो बारिशें पड़ती हैं दो दिन में निकल जाती है। ग्लेशियर्स जो है वो विंटर में आपकी बर्फ को फ्रोज करते हैं और समर्स में आपको वो पिघल के नदी नालों में बहते हैं, इवेपोरेशन हो जाता है, एंड देन कंडेंसेशन कम्स इन, देन यू हैव रेन्स कमिंग इन, दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। तो ग्लेशियर्स बहुत बड़ी चीज और बैकबोन है हमारे एनवायरमेंट की। ग्लेशियर्स निकल गए ना हमारे हाथ से, एनवायरमेंट की ऊपर नीचे सब हेवाई सिचुएशन हो जाएगी।
0: हमारे पास होटल्स हैं जो कि मतलब इस वक्त होटल्स है या टूरिस्ट के लिए हमें होटल्स का और जो हाउस बोट्स है, इन पर अक्सर ये इल्जाम लगते हैं कि फजले और गंदे पानी का जो इखराज है वो डायरेक्टली नदी नालों में जाता है, झीलों में जाता है, जो पल्यूट करता है इसके पानी को, है कि नहीं?
1: देखिए,
0: तो इसका क्या वे आउट हो सकता है जो हमें करना चाहिए? देखिए, हाउस बोट्स की बात करें, वो पानी में रहने वाले लोग हैं, तो उनको इस चीज को ब्रेक करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो जो वेस्ट जो प्रोडक्ट है जो हमारे सीधा इन झीलों में

0: जाता, पानी में जाता, नदी नालों में जाता, ये होटल्स का जाता है, उसको बदलने के लिए क्या करना चाहिए?
1: देखिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया, मैं आई विश कि आपने ये पहले उठाया होता, और आई वुड लव टू स्पीक ऑन दिस पॉइंट।
0: ये मैंने इसलिए बाद में रखा ताकि जो हमारे सुनने वाले हमारे साथ धीरे धीरे सारे कनेक्ट हो जाए और इस अहम बात
1: सुने। हम अभी 2026 में जी रहे हैं
0: जी,
1: जब डिजिटल बहुत पुराना हो गया है। वी आर इन AI राइट नाउ। वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस नैरेटिव कि हाउस बोट्स ने लेक को खराब किया है, होटल्स ने लेक को खराब किया है। लेक को खराब किसने किया है? एक पुरानी रिपोर्ट है रुड़की यूनिवर्सिटी की, वो बोलती है जब हाउस बोट में हेल्म पे बिजनेस होता है, हेल्म पे इट विल पोल्यूट 0.4% ऑफ द लेक। लेकिन बाकी लेक कौन पोल्यूट कर रहा है भाई? वो हमको सुनना है। लेट्स कम आउट ऑफ दिस नैरेटिव। अब ये आप फोर फ्रंट पे ब्लंट बात करते हैं। द लेक इज बीन स्पॉइल्ड बाई पीपल लिविंग ऑन द पेरिफेर एरियाज। लेक इज बीन स्पॉइल्ड बाई गवर्नमेंट रन पंप स्टेशन, जो अनट्रीटेड वाटर, जो ट्रीटेड वाटर होता है बट कभी पावर कट्स होते हैं, बाकी चीजें होती है, वो लेक में जाती है। इट इज नॉट रॉकेट साइंस टू क्लीन डल लेक। इट इज नॉट रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी। दुनिया में इससे बड़ी बड़ी लेक्स को सेव करा गया है। बट जब हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग, मैं खुद कॉन्शियस हूं और मुझे ये मैंने ठान लिया कि लेक को साफ करना है, हमको मेकअप नहीं करना है लेक का। आप मुझे बताइए, दुनिया में कहां पर जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन आई है, लोग पानी के जखायरों के पास ही सिविलाइज हुए हैं। चाहे वो सी हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे लेक्स हो, हमेशा आप बट सी पर शो हमेशा लुक रूज विद यन पट ह्यूमन सिविलाइजेशन जो आमच। दिस इज द टाइम, इज इट रॉकेट साइंस फॉर गवर्नमेंट टू गिव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू द पीपल लिविंग ऑन द पेरिफेरल एरियाज ऑफ डल लेक, इनसाइड डल लेक? इट इज नॉट। एक छोटी जगह है गीथॉन नीदरलैंड में, उन्होंने क्या करा, एक बड़ी सी लेक थी। मैं हमेशा ये पूछता हूं, आप डल लेक इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए इतना? डल लेक इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर डल लेक इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फ्रेश वाटर लेक है, देन यू आर रॉन्ग। देन गो एंड से वॉलर लेक व्हिच इज प्रेशियस।
0: अगर हम नदी नालों की बात करें तो हमारे हर नदी नाले की, हर झील की, हर दरिया की यही कहानी है।
1: आप दो मिनट मुझे हेयर आउट कीजिए। व्हाई इज डल लेक इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट्स अ फ्रेश वाटर लेक? नो
2: नो।
1: If you are saving freshwater lake, go and save the water lake, which is Asia's biggest freshwater lake.
0: Exactly.
1: Why is Dal Lake important? Because it has a rich flora, fauna, aquatic life, people living inside. Githon, Netherlands mein ek jagah hai, jahan pe logon ne ek lake ko banaya, lake ke andar artificial hamlets banaye, logon ko basaya, artificial boats banaye. ठीक है, ताकि ये लाइवली लगे। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ऑलरेडी बहुत दिया है, हमें करना क्या है, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम लगाना है, और जो ऑलरेडी लग गया है उसको प्रॉपरली वर्केबल बनाना है। जो डल लेक के इर्द गिर्द होटल्स है उनको प्रॉपरली ड्रेन से कनेक्ट कीजिए। मुझे बताइए, अगर एक मंजिला होटल डल लेक पे है, चाहे एक मंजिला हो या चाहे 10 मंजिला हो, इससे क्या प्रॉब्लम पड़ेगी?
2: वही जो ड्रेनेज सिस्टम जो बना है ऑलरेडी डल लेक, निगिन लेक की अगर हम बात करें, तो उसके बाद से अभी तक क्या उसमें चेंजेस आई है?
1: हमारे माशरे की सबसे जो बेसिक तबका है, सबसे जो इकोनॉमिकली वीक तबका ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट, आई एम नॉट सेइंग ऑल, वो डल लेक या नगीन लेक या किसी लेक के इर्द गिर्द रहता है। इट शुड बी, अगर मैं डल लेक के ऊपर मकान बनाऊं, मेरे एसटीपी का कॉस्ट शुड बी 1 crore रुपीज। Only people who can afford high-tech STP should be able to live on Dal Lake, should be able to make hotels on Dal Lake. That is what is going to help. वो चीज हमें मदद करेगी। ठीक है, इसमें मैं क्या आपको कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है, डल लेक पे लोगों को रहने दीजिए, होटल्स बनाने दीजिए, लेकिन इंश्योर आप कीजिए कि उनके पास STPs हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो, ट्रैश जो निकलता है वो डल लेक में ना पड़े। बाकी डल लेक से ही, डल लेक से चो अशुभ साइंस से चो डाल अशुभ। अगर ये तू हाउस बोट एम एस नेबर कर दू, ये बन जाक ओपन डेड लेक।
0: एज अ माहौलियती कारकुन जन तो छो, अगर तो ये एज अ माहौलियती कारकुन भाई ये प्रसिक है, तू उन चेक छा रोजा इमन चीज इन पेट।
1: देखिए, हमारा काम है अवेयरनेस ड्राइव्स करना, हमारा काम है छोटी मोटी क्लीननेस ड्राइव्स करना, हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना।
0: आप खुद जाते हैं इन होटल्स में, इन जगहों पे, आप हमारे ये सब देखने के लिए,
1: आप हमारा कारकर्दगी देख सकते हैं, पोर्टफोलियो देख सकते हैं। हर साल, हर महीने में हम ये हमने हम अपना मामूल बनाया है, हम ड्राइव्स करते हैं हर संडे के दिन। जब भी हमारा अपना काम मतलब साइड में रख के संडे के दिन वक्त मिलता है, हम इस चीज़ पे काम करते हैं, चाहे हाउस बोट वालों को अवेयरनेस करे, होटल्स को अवेयरनेस करे, लोकल
0: पब्लिक को
1: अवेयर करते हैं।
0: लोकल पब्लिक को अवेयर करने के लिए कितना आप ड्राइव चलाते हैं, और जो आपको लगता है कि जो हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट्स है तालिबे इल्म है उनको अवेयर कराने की जरूरत है, स्कूल में जाकर ऐसे प्रोग्राम्स करने की जरूरत है?
1: इम्पोर्टेंट चीज है, हमने

0: कुछ स्कूल्स में ड्राइव्स करी थी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे थे, और हमें रिजल्ट वहाँ से ये मिला था कि एक फादर वॉज ड्राइविंग विद हिज डॉटर, बाप ने बाहर ट्रैश फेंका, बेटी ने बोला पापा रुको, उसने उठाया और अंदर लिया। वो बाप बोल रहा है तब से लेकर आज तक मैंने कभी ट्रैश नहीं फेंका।
1: तो इसका मतलब है कि अगर स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे, ऐसे मुहिम, ऐसे ड्राइव्स चलाते रहे, तो इसका हमें पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और बहुत बड़ा, मतलब हम अपना हद पूरा कर सकते हैं बहुत बड़े,
0: बिल्कुल बहुत बड़े हद तक। हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर है, हम अपने बच्चों को सिखाए वो आगे चलेगा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं आपको दूं, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, हमने हमको वक्तन फवक्तन रिक्वेस्ट किया है एक प्रॉपर बोर्ड बनाया जाए, एनवायरमेंटल बोर्ड बना जाए, एक फंड, एनवायरमेंटल फंड हो, अवेयरनेस हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। बिकॉज जितने भी माशरे, जितने भी बिजनेसेस या सेगमेंट्स रिलेटेड है हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, वो डायरेक्टली एनवायरमेंट पे इन्वॉल्व्ड है, और एनवायरमेंट पे बहुत बहुत बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है।
1: आजकल टूरिज्म के, टूरिज्म एनवायरमेंट जो नेचुरल, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है, कुदरती वसाइल जो हमारे हैं, वो हमारे भविष्य को बहुत बूस्ट करते हैं। इसके अलावा और कौन से सेक्टर्स है जिसको हमारा जो नेचुरल एनवायरमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज है, बूस्ट करते हैं?
0: देखिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोला, टूरिज्म के अलावा हमारे पास, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, अपार्ट फ्रॉम गुलमर्ग, पहलगांव, सोनमर्ग, जितनी भी कश्मीर में नदी नाले बहते हैं, अगर आप हर एक नदी नाले पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाएं, यू विल बी द रिचेस्ट रीजन, रिचेस्ट स्टेट इन साउथ ईस्ट एशिया। That's the first thing. You can go for, हमारे पास बहुत अच्छे वसाइल है सोलर एनर्जी बनाने के लिए, बिकॉज पेट्रोल के बाद जो आपको अभी नेक्स्ट एनर्जी क्राइसिस आने वाले हैं, दैट इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। हमारे पास पानी भी बहुत है, उसको प्रिजर्व कर, डैम्स बनाने की जरूरत है,
2: प्योरीफाई करने की जरूरत, हमारे पास खजाना है उसका,
0: रिजर्व वाटर, व्हाई डू यू वेस्ट? हम गुलमर्ग पहलगाम की जो नदियां हैं उनको फ्री बहने क्यों देते हैं? व्हाई डोंट यू मेक स्मॉल डैम्स आउट ऑफ इट, मिनी वाटर पावर प्लांट्स? अच्छा, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की जरूरत है, हमें सोलर एनर्जी की तरफ स्विच करने की जरूरत है, हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ स्विच करने की जरूरत है। हमारे पास काफी वसाइल है, बट उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत।
1: अच्छा, जब आप ये ड्राइव्स चलाते हैं, काम करते हैं जमीनी सतह पर, तो आपको सबसे बड़ी रुकावट कहां नजर आती है? लोगों की लापरवाही में, इंतजामी सतह पर, पॉलिसी के फुकदान में, और मुस्तकबिल में कश्मीर के माहौल को असल शक्ल में बरकरार रखने के लिए आपका ख्वाब या अगला बड़ा मंसूबा क्या हो सकता है? क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, इसलिए मैंने आपसे ये
0: मुझे लोकल स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, समीर एंड हिज इको टूरिज्म ब्रिगेड इज कमिंग, बिकॉज बहुत सारे लोगों को हम खुश नहीं आते थे कि होटल मत बनाइए बड़े बड़े, आप इनको एनवायरमेंट को खराब मत कीजिए, अजी ये बोल रहे हैं कि टूरिस्ट को यहाँ पर मत लाइए, लेकिन अब परसेप्शन चेंज हो रहा है लोगों को, उनको समझ आ रहा है माहौल चला गया तो हमारे हाथ से सब चला गया। होटल बनाने की जरूरत है, हाउस बोट बनाने की जरूरत है, परमिशन दीजिए जितने मर्जी, लेकिन थोड़ा सा इसके साथ सस्टेनेबल टूरिज्म को भी प्रमोट करना है, और गवर्नमेंट को सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट का है इसमें, हैंड होल्डिंग करने की बहुत ज़रूरत है स्टेक होल्डर्स को। एंड आई थिंक एक लाइन मैं आपको बोलना चाहूँगा, एक पंच लाइन, एक लास्ट में मैसेज देना चाहूँगा।
1: ओके, हम चाहते हैं कि आप हमारे सुनने वालों तक ये मैसेज पहुँचा दें, क्योंकि हमारा माहौल जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और हम सबको इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी तरफ से अपना मैसेज हमारे सुनने वालों तक पहुँचा दीजिए।
0: पहले अंग्रेजी में बोलूँगा फिर इसको ट्रांसलेट करूँगा, बिकॉज ये अंग्रेजी में
2: है। जिसमें इंसानी तहफ्फुज़, खूबसूरती हमारे माहौल की, सारा उस जुमले को कैसे देखते हैं।
0: एक कोट है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर बेसिकली सोशल प्रॉब्लम्स, दे इरप्ट विद अ मैन एज अ कॉज एंड एंड अप एज अ मैन एज अ विक्टिम। ये सोचने की जरूरत है, जो माहौली प्रॉब्लम्स है ये सोशल प्रॉब्लम है, ये एक छोटे फर्द की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सोसाइटी की प्रॉब्लम है। ये स्टार्ट होती है एक मर्द को, एक इंसान को, एज अ कॉज,
1: एक फर्द को
0: एज अ कॉज स्टार्ट होती है, बट ये एंड अप होती है पुटिंग हिम एज अ विक्टिम, बिकॉज इवेंचुअली जो सैलाब हमारे पास आया, एक बंदे ने गलती की या एक मुआशरे ने गलती की, एक सोसाइटी ने गलती की, सैलाब में सारा कश्मीर हुआ,
1: सारा कश्मीर, yes, exactly.
0: अगर कल अर्थ कोई आएगा, अगर कल लैंड स्लाइड आएंगे, आप मत बताइए कि आप कश्मीर श्रीनगर में रह रहे हैं, वो सोनमर्ग में आएगी, आप तक भी उसकी छींटे आएंगे।
1: डेफिनेटली, तो जो हम बोते हैं वो हमें काटना पड़ता है, जैसी फसल हम बोएंगे वैसे फसल की कटाई हमारे हाथों

0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जो ये सरगर्मियां हैं, आपका जो ये मूव है, ये इसी सरगर्मी अमल रहेंगे, आप इन्हीं जज्बात के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपका एक मुंह माहौल को बचाने के लिए हजारों मुंह से बढ़कर है और आपको देखकर हजारों लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। आज मैं और फहमीदा भी आपके साथ जुड़ गए, हमारी कहीं जरूरत हो डेफिनेटली हमें याद कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे यहाँ पे अपने प्रोग्राम में, और आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने आसपास माहौल का ख्याल रखिए और माहौल को बचाने की कोशिश कीजिए जितना भी हो सकता है उतना, क्योंकि इंसान अगर सांसें लेना बंद करेगा तो मर जाएगा और माहौल अगर ख़राब होगा तो सच में वैसे ही हम भी मर जाएंगे। आकाशवाणी श्रीनगर का प्राइमरी स्टेशन मीडियम वेव 268.8 मीटर यानी 1116 के हर्ट्ज़ पर, FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर पयाम सुबह प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम होता है। लेंगे आप सब से इजाज़त अगली सुबह तक, कल सुबह फिर आपसे मुखातिब होंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। आगे का सफ़र आपका फहमीदा के साथ खुश व खुर्रम रहे।
1: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
2: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग दे जिवा।
3: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
4: सब्र रूशित सुलुम।
3: सुनते रहिए हमारी नशरियात
1: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
5: इस आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 68.8 मीटर FM 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समीन का बजे 3 मिनट सपेत वली बोजो छकर तुरु पेश करन गुलाम मोहम्मद कावत यही सही यमनिश बोजो कलामी रहमान डार।

0: سمعت سيد شاكر روبوزان پیشس کنان غلام محمد کاوتی ہند ستی یمنش بوزوتای کلام رحمان دار یہ آکاشوانی سری نگر سون دئی ملن بوزیو یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. سمی دن کے 12 بجنے والے ہیں, لیے چلتے ہیں آپ کو آکاشوانی دلی خبروں کے لیے.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं. इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है. श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही. उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है. श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया. यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया. श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं. उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं. सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा. इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी. श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है. केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.
2: वडचेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम.
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई. नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं. समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

सामीन आप समात कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर से। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 12:30 हो रहे हैं। पेश है हमारे यहाँ से खबरें।

0: हम दोनों ममालिक। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को दावत दी है कि वो भारत में मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसे इख्तराई प्रोग्राम में अपनी शमूलियत को बढ़ाए। गोथेनबर्ग में स्वीडन के मुंतखब सीईओ के साथ एक मीटिंग में वजीर अजम ने कहा कि भारत और स्वीडन जमहूरियत, शफाफियत, नेज इख्तरेज जैसे अकदार के साथ जुड़े हुए हैं। ताहम दोनों ममालिक बाहमी इश्तराक के तमाम तकाजों को बरोएकार लाते हुए तरक्की की नई मंजिलें छू सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में कल से सेंसस 2027 का सरकारी तौर पर आगाज हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी सेल्फ इन्यूमरेशन मुकम्मल करके जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की है कि वो इस अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने घरों से मुतलिक तफासिल ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराए। उन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन को एक अजीम जिम्मेदारी करार दिया।
1: जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जनगणना यह आपके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए आवश्यक है। आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अपने मकान और उसमें रहने वाले कितने परिवार के सदस्य हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी जनगणना से जुड़े हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीजिए। मुझे लगता है कि आप सब इसमें पूरा सहयोग करेंगे।
0: दरियासना जम्मू कश्मीर के बेशतर जिलों में सेल्फ इन्यूमरेशन का अमल शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की बिदत से पाक करने के लिए तमाम सतहों पर सूदमंद कोशिशें जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के तहत अमलाई जा रही सरगर्मियों की कयादत कर रहे हैं और उनकी कयादत में मुख्तलिफ अजला में पद यात्राओं और बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। वाजह रहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले महीने की 11 तारीख को इस अभियान का आगाज किया, तब से लेकर आज तक मनुष्यात के बुनियादी ढांचे को खत्म करने में काफी पेशरफ्त हासिल हो गई है। मनुष्यात के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद और MLA लंगेट शेख खुर्शीद के वालिद खजर मोहम्मद शेख एम्स नई दिल्ली में इंतकाल कर गए हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। एक पैगाम में उन्होंने सोगवार कुंभे के साथ ताजियत का इजहार करते हुए उनकी जन्नत नशीनी के लिए दुआ किया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा ने कलश मुकाम में सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह की ज़ियारतगाह का दौरा करके वहां तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम मजहबी मकामात पर जदीद तर्ज की सहूलियात दस्तियाब कराने और सोलर लाइट्स नस्ब करने की वादाबंद है। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसदुक रशीद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
3: अपने डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ज़ियारतें हैं, हर जगह हम लाइट्स प्रदान कर रहे हैं। तो बड़ा जरूरी है अच्छी क्वालिटी की लाइट्स हो, जिनकी वारंटी गारंटी अच्छी हो। ब्लेसिंग्स हमें भी मिलेंगे और जरूरत भी है उसको खूबसूरत बनाने की।

0: been set at 41 years. For Group B posts, the limit has been raised to 44 years. And for Group C and Group D posts, the maximum age is now 45 years. The government clarified that where higher age limits are already in place, the existing rules will continue. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलो हर्ट्ज के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय 1:10 हुए हैं। समाप्त करें एनसीईआरटी का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
1: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
2: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और

0: शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं?
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, what do you like most?
4: I like playing, sir.
6: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
7: Sir, I like singing.
8: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
6: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds? That's very nice, children.
6: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
6: Story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay.
2: As I lie on my back,
3: as I lie on my back,
2: looking up at the sky,
3: looking up at the sky,
2: I see a big white bear,
3: I see a big white bear,
2: looking down at me,
3: looking down at me,
2: as I lie on my back,
3: as I lie on my back,
2: looking up at the sky, I see a ship sailing.
3: I see a ship sailing.
2: On a white sea.
3: On a white sea.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see an elephant.
3: I see an elephant.
2: Waving its trunk at me. As I lie on my back,
3: as I lie on my back,
2: looking up at the sky,
3: looking up at the sky.
2: Oh, it's fun. It's fun to me.
3: Oh, it's fun. It's fun to me.
2: To see whatever I want to see.
3: To see whatever I want to see.
2: So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
3: Yes, sir.
6: They are beautiful.
5: They are very big.
4: They change the shapes.
2: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen to this song?
3: Yes, sir.
2: So kids, here comes the song, As I Lie. What?
3: As

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir. It will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds. And you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of clouds. You were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajender Pal. Technical coordinator, Bati Lang Lingdo. Child singer, Angel. Child artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका.
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
13: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
12: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
14: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम में वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजाति

0: पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना?
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
1: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकूं।

0: जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
1: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
2: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
1: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
3: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
4: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
3: अच्छा।
4: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
3: अच्छा।
4: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
3: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
4: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
3: अच्छा।
4: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
4: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
3: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
4: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फॉस्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
4: आपका भी बहुत धन्यवाद।
1: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
2: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों

0: का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: समीन अब समाप्त कर रहे थे NCERT का तैयार करता स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। हमारे अगले ऐलान का इंतजार फरमाइए।
6: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समय 1:50 होने वाले हैं। लिए चलते हैं आपको आकाशवाणी दिल्ली खबरों के लिए।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं, जहां वो नॉर्वे के अपने हमनसब योनास गहर स्टोरे के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि स्वीडन के उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। दोनों मुल्कों ने अगले 5 साल में दो तरफा तजारत दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। कांग्रेस के लीडर वीडी सतीशन को केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। 20 काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में इमरजेंसी की सूरत हाल में काम करने वाली 400 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन का 2 दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद अब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे में भारत और नॉर्वे के दरमियान बाहमी बातचीत होगी, साथ ही तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह मीटिंग में भी वो शिरकत करेंगे। जनाब मोदी के इस दौरे से नॉर्डिक मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात को तकवियत मिलेगी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे के अपने पहले दौरे पर ओस्लो पहुंच गए हैं। पिछले 43 बरस में भारत के किसी भी वजीर आजम का नॉर्वे का पहला दौरा है। जनाब मोदी आज नॉर्वे के शाह हारल्ड पंजुम और मलका सोंजना से मुलाकात करेंगे। नॉर्वे के वजीर आजम योनास गहर स्टोरेस के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वो भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी समिट से भी खिताब करेंगे। इस दौरे में माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी, समुद्री मीशत जैसे शुबों पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा तजारत सरमाकारी के मौाक़े को भी फ़रोग हासिल होने की तवक्को है। कल वजीर आजम तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हाल ही में नाफिज किए गए तजारती और इकतसादी शराकतदारी माहदे के तनाजुर में तवक्को की जा रही है कि सरबराह कॉन्फ्रेंस रुकन मुल्कों के साथ इकतसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहक करने में मददगार साबित होगी। सरजद भारत और 5 नॉर्डिक ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत 19 अरब डॉलर मालियत की है। नॉर्वे के ओस्लो से संगीता गोडबुले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि स्वीडन के उनके दौरे में ऐसे कई अहम नतायज सामने आए हैं जिनसे बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह तक पहुंचाने से लेकर मुश्तरका इख्तराई साझेदारी के दूसरे मरहले के आगाज और भारत स्वीडन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत कॉरिडोर से लेकर अगले 5 साल में दो तरफा तजारत को दोगुना करने का बड़ा मकसद तय करना उनके दौरे की के खास निकात रहे और बातचीत काफी मुफीद साबित हुई। जनाब मोदी ने स्वीडन के आवाम, वहां की सरकार और वजीर आजम उल्फ क्रिस्टर्सन का गर्मजोशी और दोस्ती के लिए शुक्रिया अदा किया। हमारे नामनिगार ने बताया है कि बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने में 2026 से 2030 तक के भारत स्वीडन मुश्तरका अमली मंसूबे का अहम रोल रहा। जामे खाके का मकसद अगले 5 साल में दो तरफा इकतसादी लेन देन को दोगुना करना और मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि भारत आज सरमायाकारी, इख्तिरा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया के सबसे पुरकशिश मुल्कों में से एक है। जनाब मोदी स्वीडन के अपने 2 दिन के दौरे में गोतनबर्ग में सनअत से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि मुल्क में सभी कंपनियों के लिए अच्छे मौके दस्तियाब हैं। साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले बरसों में भारत के सरकर्दा प्रोजेक्टों का हिस्सा बनने के लिए उनके वास्ते एक इदारा जाती निज़ाम समेत मुख्तलिफ इकदाम भी किए जा सकते हैं। अपने खिताब में जनाब मोदी ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारत के तारीखी समझौते के मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल होने समेत भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में तेजी आने का खैर मकदम किया। केरलम में कांग्रेस के सरकर्दा लीडर वीडी सतीशन की सरबराही में नई यूडीएफ वजारत को आज तिरुवनंतपुरम में हलफ दिलाया गया। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने

नए वजीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। साबिक अपोजिशन लीडर और केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के साबिक सदर रमेश चिन्नीथाला, केपीसीसी के मौजूदा सदर सनी जोसेफ, केपीसीसी के साबिक सदर के मुरलीधरन और आईयूएमएल के लीडर पीके कुनाहली कुट्टी नई वजारत में सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल हैं। मजमूई तौर पर 21 अरकान को हलफ दिलाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर वीडी सतीशन को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार अवाम की उमंगों की तकमील में केरलम की नई तश्कील शुदा सरकार की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएगी। मगरबी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की जेर क्यादत बीजेपी सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए रियासती सरकार की मुलाजमत में आने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में इजाफा कर दिया है। ग्रुप ए असामियों में भर्ती के लिए उम्र की हद अब 41 साल तय की गई है, जबकि ग्रुप बी के ओहदों के लिए इसे बढ़ाकर 44 साल कर दिया गया है। ग्रुप सी और ग्रुप डी असामियों के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र अब 45 साल होगी। सरकार ने यह वजाहत की है कि जहां कहीं उम्र की बालाई हद पहले ही नाफिज है वहां मौजूदा जाब्ते बरकरार रहेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज रायपुर में अगले सिलसिले की 400 डायल 112 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर आला विष्णुदेव साई, रियासती असम्बली के स्पीकर रमन सिंह और नायब वजीर आला विजय शर्मा भी मौजूद थे। अब तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में डायल 112 की खिदमत दस्तियाब थी। प्रोग्राम के बाद जनाब शाह बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वो नेतानार गांव में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप के अहाते में कायम करदा सरकारी खिदमात के मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये मरकज दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार और डिजिटल खिदमात तक आसानी से रसाई हासिल करने में मदद फराहम करेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खेरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 9 अफराद की मौत हो गई। मालूम हुआ है कि एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आने वाली एक गाड़ी से टकरा गया। इस गाड़ी में 2 खवातीन समेत 10 अफराद सफर कर रहे थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में लोगों की अमवात पर रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन कुंभों से ताजियत का इजहार किया है जिनके अरकान खानदान इस हादसे में चल बसे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। जनाब मोदी ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वें आलमी सेहत असम्बली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये 6 रोजा तकरीब आज जनेवा में शुरू हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि इस साल का मौजू आलमी सेहत की असर नौ तश्कील एक मुश्तरका जिम्मेदारी आलमी सतह पर सेहत से मुतालिक चैलेंजों को दूर करने के लिए इज्तिमाही अमल की अहमियत को उजागर करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज वियतनाम और जनूबी कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इस दौरे से इन दोनों मुल्कों के साथ भारत के राबतों के दायरे में मजीद वसअत आएगी। जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे में कलीदी फौजी इश्तराक को फरोग देने, दिफाई सनती साझेदारी को मुस्तहकम बनाने और भारत बहरुल काहिल खित्ते में बहरी तालमेल को बढ़ावा देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ताजा तरीन प्वाइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद फिलहाल 12 मैचों में 14 पॉइंट्स के साथ तीसरे मकाम पर है। उसने अब तक 7 मैचों में जीत हासिल की है और प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए मजबूत दावेदार है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं, जहां वो नॉर्वे के अपने हम मनसब योनास गहर स्टोरे के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि स्वीडन के उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। दोनों मुल्कों ने अगले 5 साल में 2 तरफा तिजारत दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। कांग्रेस के लीडर वीडी सतीशन को केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। 20 काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में इमरजेंसी की सूरत हाल में काम करने वाली 400 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया
और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेजबान

0: Cricket hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ पर। समय 2:15 हुए हैं। आइए समाप्त करते हैं चंद फिल्मी नगमे में।

से हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 बजने वाले हैं, हमारा अगला ऐलान सुनिए। ये छा आकाशवाणी श्रीनगर समीन दू चढ़ाई बजे वली बोजो छा कर तो रो पेश करान गुलाम मोहम्मद कावती हिंद से थी ये मनीष बोजो कला मेरा मंडार।

arzar sabdum s-ar fi panas, dacă trudum tăie. Și chirlăjmo

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों, आज की निशस्त का प्रोग्राम लेकर मैं आपकी मेज़बान फहमीद आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम सब भी खैर वाफियत से हैं। दोस्तों, लेकर एक बार फिर से वही फिल्मी नगमों का सफ़र हम अपने प्यारे दोस्तों के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, फिल्मी नगमे जो दिल से दिल के तार जोड़ते हैं और हमारे अपनों से हमें मिलाते हैं। दोस्तों, नगमे जो हर बार की तरह हम कहेंगे, वो एहसास है जो इंसान के अंदर प्यार, मोहब्बत और विश्वास कायम रखता है। नगमों में हम वो सब कुछ, वो प्यार मोहब्बत जिसकी हमें तलब होती है, तलाश होती है, वो हमें नज़र आता है। दोस्तों, इसी के साथ करते हैं हम इस नगमे सफ़र शुरू और सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत सा नगमा।

जी फजी दोस्तों, ये नगमा आपने सुना शबीर कुमार की आवाज में। दोस्तों कहते हैं एक इंसान के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है, कुछ राज वक्त के साथ खुल जाते हैं और कुछ लोग राज बनकर ही खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा बाप तो ज़रूर होता है जिसे वो पढ़ तो लेता है मगर कभी किसी को सुनाता नहीं। कभी कभी ये खामोशी भी दिल की सबसे खूबसूरत गुफ्तगू बन जाती है। जहाँ इंसान को ये राज खोल बैठता है तो वो उन मोतियों की तरह बिखर जाता है जो एक माला जब एक टूट कर बिखर जाती है, तो उसी तरह वो राज उन बातों की खूबसूरती वही ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर कोई राज इंसान कभी किसी से नहीं कहता, वो राज राज ही रहता है, तो वह खूबसूरत सी याद बनकर हमारी जीवन में हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है और खूबसूरत सी माला बनकर उसको हम हमेशा अपने अंदर फिरोते रहते हैं। उससे बढ़कर तो इंसान खुद एक राजदार है।

फर्जी दोस्तों, ये नगमा अपने सुना फिल्म कभी कभी से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। दोस्तों कहते हैं जिंदगी एक सफ़र की तरह है और एक इंसान एक मुसाफिर की तरह। दोस्तों सफ़र जितना भी कठिन होता है, मुसाफिर उसी रफ्तार से उसी तेज़ी से उस सफ़र पे अपने कदम रखता है और शुरू करता है जिंदगी का वो सफ़र जिससे वो बिल्कुल

अनजाना होता है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती है, मुश्किलात आते हैं, और हर मुश्किल के बाद एक राहत, एक सुकून तो ज़रूर मिलता है। दोस्तों, जो इंसान कठिनाइयों के बाद, मुश्किलात के बाद जो सुकून पाता है, वो शायद ही हमारी ज़िंदगी में कभी वो सुकून हम पाते हैं, एक राहत की सांस लेते हैं। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ आसानियों का नाम नहीं, असल ज़िंदगी मुश्किलात को, कठिनाइयों का सामना करना। दोस्तों, क्योंकि इंसान का ताल्लुक एक ऐसे माशरे से है जहाँ इख्तिलाफ, तमीज़ी, सच बोलो तो बेअदबी, और अगर कुछ ना बोलो तो मुनाफिकत समझी जाती है। दोस्तों, इंसान हर ऐसा लम्हा, हर ऐसी चीज़ को फेस करता है, सामना होता है जीवन का, जिनका कभी हमने तसव्वुर भी नहीं किया। लेकिन जो इंसान उन मुश्किलों से लड़ता है, उन मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ता है, वही तो असल ज़िंदगी का मज़ा देखता है।

जी फौजी दोस्तों, आनंद बख्शी का लिखा ये नगमा अपनी सुना फिल्म नगीना से अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजें थी। दोस्तों कहते हैं इंसान, क्या कभी सोचा है हम जिंदगी भर कुछ पाने की कोशिश करते रहते हैं, या कि इंसान कुछ पाने की कोशिश करता है मगर आखिर में सुकून सिर्फ उसे उन लम्हों में मिलता है जहां उसे सच्ची मोहब्बत, खालिस रिश्ते और दिल उसका मुतमईन होता है। क्योंकि ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हुनर शायद यही है कि इंसान मुश्किल वक्त में भी अपनी मुस्कुराहट को अपने होंठों पे सजाए रखे, क्योंकि अंधेरी रातें हमेशा नहीं रहती और हर खामोश रास्ते के बाद कहीं ना कहीं रोशनी हमारा इंतज़ार कर रही होती है। दोस्तों हम आज से खुद से एक वादा करें, जो भी हो अपने दिल की खूबसूरती कभी भी कम ना होने दें।

जी दोस्तों, ये थी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। फ़िल्म का नाम रात अकेली है और बोल हसरत जयपुरी के। दोस्तों, ज़िंदगी कभी धूप की तरह रोशन लगती है और कभी शाम की उदास खामोशी जैसी। दोस्तों, मगर हर गुज़रता लम्हा हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। कभी लोगों की बातों की वजह से दिल टूट जाते हैं और कभी किसी एक मुस्कुराहट से हमारा एक पूरा दिन संवर जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने दिल को थोड़ा सुकून दें, अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा वक्त दें और उन लोगों की कदर की करें जो आपकी खामोशी भी समझ लेते हैं, क्योंकि खूबसूरत रिश्ते आवाज़ से नहीं बल्कि एहसास से ज़िंदा रहते हैं।

जी फौजी भाई, ये आवाज़ थी किशोर कुमार की और फिल्म का नाम नमक हराम। बोल आनंद बख्शी के लिखे थे और संगीत राहुल देव बर्मन का।

जी फौजी भाई, यू फिल्म जवानी से आपने गुलशन बावरा का लिखा ये नगमा सुना, डी बर्मन के संगीत से सजा आवाज़ें आशा भोसले और अमित कुमार की थी। फौजी दोस्तों, नगमों का ये सफ़र जारी है।

0: हाँ, मिलते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
3: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
2: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आवर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
3: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
2: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
3: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
2: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले

0: श्रीनगर के साथ, और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
2: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
2: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
1: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
2: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
1: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
2: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
1: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
2: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
1: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
3: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
4: फौजी दोस्तों, वक्फे के बाद आपका प्रोग्राम एक बार फिर से खैर मकदम है। दोस्तों कुछ लोग हमारी जिंदगी में एक कहानी बनकर आते हैं, बस लोग जो हमारी जिंदगी में कहानी बनकर नहीं आते बल्कि एक खूबसूरत एहसास या खूबसूरत किरदार जो उनका हमारी जीवन के साथ बन जाता है, खूबसूरत एहसास बनकर रहते हैं, वो ज़्यादा बातें नहीं करते मगर उनकी मौजूदगी दिल को सुकून दे जाती है, और कभी कभी एक मुख्तसर सी मुलाकात भी पूरी ज़िंदगी की एक याद बनकर रह जाती है। दोस्तों ज़िंदगी में दौलत, शोहरत और कामयाबी अपनी जगह, मगर असल खुशनसीब वो इंसान है जिसके पास चंद सच्चे लोग हों, जो उसकी खामोशी में भी उसका साथ न छोड़े, जो उसकी तकलीफ़ में भी उसका साथ दे। इसलिए आज अगर किसी अपने की याद आए तो उसे ज़रूर बताएं, उससे ज़रूर मिलने की कोशिश करें कि वो आपकी ज़िंदगी के खूबसूरत बाबों में से एक खूबसूरत सा बाब है।

जी फाजी दोस्तों, ये आवाज़ थी यसुदास की फ़िल्म का नाम सफ़ेद झूठ। आइए आखिर में सुनते हैं सफ़र फिल्म से हिंदी बर का लिखा मनाड़ी की आवाज़ में ये नगमा।

बेशक दोस्तों कहते हैं जिंदगी क्या है, अनासिर में जहूर तरती मौत है यही इंसना का परेशान होना। कहते हैं जिंदगी हमेशा दूसरा मौका जरूर देती है जिसे हम कल कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए आज की निशस्त से इजाज़त, आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद और आप सुनते रहिए नगमा।

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समय 3:50 हो रहे हैं। अब पेश है हमारे यहाँ से खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दिन के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं आरिफ हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। अमरीकी सदर की ताज़ा वार्निंग के नतीजे में ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में फिर इजाफा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस साल की यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रा निवास श्रीनगर में सभी तामीराती कामों को मुकम्मल करने की हिदायत। जिलिजा के चांद की हो गई रुयत। ईद उल अजहा 27 मई को। और जम्मू कश्मीर में मर्दमशुमारी के पहले मरहले के तहत मकानों का अज खुद इंदराज करने का अमल जारी। अब पेश हैं खबरों की।

0: every service is being now rather affected as well as augmented by these digital lines. तो कल बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज से आए थे, एनआईटी से आए थे, एसएसएम से आए थे, फील्ड इंजीनियर्स आए थे, तो डिफरेंट रिटायर्ड चीफ इंजीनियर्स आए थे, तो डिलीबरेशन एंड डिस्कशन हुआ कि जो थीम है डिजिटल लाइफ लाइन स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, कि इसमें क्या असरअंदाज इंजीनियरों ने आज तक किया, क्या कर सकते हैं, क्या करना है, तो डिस्कस हुआ यही साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न आए हैं, डिजिटल दुनिया ने हमारा सुकून भी छीना, उससे भी बात हो गई, लेकिन साइमल्टेनियसली इसमें और कितनी जरूर है कि ताकि हमारी ईज भी लाइफ बनाए लेकिन हमारी लाइफ पे भी हमारे सेहत पे भी असर न कर सके. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सतीश शर्मा हु प्रेज्ड इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एंड क्लियर कट टोल्ड दैट फॉरवर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट वी विल गेट थ्रू इट वी विल ट्राई टू इंप्लीमेंट व्हाट इज बेटर फॉर द सोसाइटी एज वेल एज द पीपल.
1: जम्मू कश्मीर के सूबे जम्मू में आजकल शदीद गर्म लहर है, जहां दिन का पारा 40 डिग्री तक पहुंच रहा है, जबकि कश्मीर वादी में खुश्क मौसमी सूरत हाल बनी हुई है. ताज़ा मौसमी सूरत हाल के बारे में श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया.
2: वेदर थोड़ा सा पिछले एक दो दिनों से ड्राई रह रहा है और दर्जे हरारत में भी थोड़ा सा इजाफा देखा गया है और आज भी टेम्परेचर में थोड़ा सा राइज देखा गया है. 31 तक भी जो है टच कर सकता है यहाँ मैदानी इलाकों में वैली के अंदर. और इसी तरह जम्मू डिवीजन के जो मैदानी इलाके हैं या कुछ एक जो एडजेसेंट प्लेन्स हैं खासकर उधमपुर जम्मू सांबा कठुआ के अंदर रियासी की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 38-39 से लेकर 41 डिग्री तक का भी राइज होगा. कल से जैसे थोड़ा सा वेदर भी एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा दर्जे हरारत में भी गिरावट देखा जाएगा. थोड़ा सा वेट स्पेल एक्सपेक्टेड है दोपहर के बाद ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन थंडर शावर एक्टिविटी विथ हेल स्टॉर्म गस्टी विंड्स के साथ साथ. तो ये सिलसिला कमिंग डेज में थोड़ा बाद दोपहर रहने के चांसेस हैं टिल 24-25 ऑफ मई तक. 26 ऑनवर्ड फिर से जो है ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है तो दर्जे हरारत जो है फिर से राइज देखा जा सकता है अक्रॉस डिफरेंट स्टेशंस ऑफ जेएंडके.
1: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी के सभी अजला में सिविल और पुलिस इंतजामिया के अहतमाम से मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं और 100 रोज़ा मुहिम के चलते अब तक के करीब 40 दिनों में सिविल और पुलिस इंतजामिया की जानिब से हज़ारों बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया जिनमें लाखों लोगों ने सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया. सरकार ने मुनशियात के स्मगलरों के खिलाफ कतअन बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर कारबंद रहने का तहैया किया हुआ है. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम.
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा. एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा.
1: इस बिदत के बारे में जम्मू में मुकीम एक ड्रामा अदाकार नरेश कौल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा.
4: जो ये ड्रग्स है ये मैं अपने बच्चों से अपील करना चाहूंगा कि ये पहली नंबर तो ये समाज के लिए भी बर्बादी है. अपने सेहत बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, ड्रग्स के लिए बच्चे फिर चोरियां करते हैं. मेरा अपील है पेरेंट्स से, समाज से और बच्चों से भी कि इस सब से दूर रहिए और समाज और पेरेंट्स इसमें मदद कर सकते हैं बच्चों को कि इन बच्चों को कैसे रेस्क्यू किया जाए. इस ड्रग ट्रैप्स जम्मू कश्मीर पुलिस है वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं और उन्होंने बड़े सारे लोगों को पकड़ा भी है आज तक जो इसमें मुलव्वस हैं.
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 31 तारीख को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूआत पर आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे. आकाशवाणी पर नशर होने वाले इस माहाना प्रोग्राम की ये 134वीं किस्त होगी. इस प्रोग्राम के लिए लोग अपनी आरा और तजावीज़ टोल फ्री नंबर 7800111800 पर भेज सकते हैं. तजावीज़ नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम पर भी 29 मई तक भेजी जा सकती है. इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ. आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन सहपहर 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा. खुदा हाफिज.
5: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है. समीन सपहर के 4:00 समाप्त करें आज का पहाड़ी प्रोग्राम इस वक्त के बाद.
6: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे. क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान.

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आज दा पहाड़ी प्रोग्राम केनक में आ तुस दा मेज़बान ख्वाजा परवेज़ प्यार खलूस और ताजीम नाल अस्सलामु अलैकुम अर्ज करदा ते प्रोग्राम बिच जी आया क्वाखता सामीन अज 18 मई है ते इस दिन आलमी सतह उते हर साल एडज वैक्सीन दा आलमी त्याड़ा मनाया जुलदा है। इस दिन को HIV वैक्सीन दी जानकारी दे तौर ते खिताब कीता जुलदा है। एक इजी शुरुआत है जिस बिच HIV वैक्सीन दी जरूरत दे बारे बिच शूर उजागर करने दी तरफ हिदायत कीती गई है। इस दिन दे दो वाजिया मकसद इन एक बुनियादी तौर उते सेहत दे वर्करां साइंसदाना और मददगारां ते रजाकारां को एजाज़ देने दी कोशिश कीती गई है जिन्हां सुण एक माशरे और महफूज एड्स वैक्सीन आणने दी कोशिश बिच अपनी जिंदगी वक्फ कीती और दुआ इस वैक्सीन दी अहमियत उते तवज्जा दिती जुलदी है जिहड़ा जानलेवा वायरस तो बचाने वास्ते एक ढाल है। सामीन प्रोग्राम को अगे वधेंदे होया आओ सुनदे हां जबैदा अख्तर ते साथियों की आवाज़ बिच ये गीत।

0: नियम जहीरिया को और कुछ जुड़े मसलियां तय गलबात अमल बिच रुकावट आई। ट्रंप सुन तेहरान ते जोर दिता के वो जल्दी मुकरे वेले को देखते हो या किसी मुआहदे दी तरफ बढ़न। अलबत्त ईरान सुन इन्हें शर्तों को रद्द करके गल नहीं कीती, जिन्हां बिच खित्ते खासकर लेबनान बिच फौजी कार्रवाइयां बंद करने, पाबंदियां मुकाने और जमा ईरान दे असासियां बिच बहाली दी गल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड या त्री निवास पंथा चौक श्रीनगर बिच इस साल दी यात्रा शुरू होने तू पहला ही सारे कमां को पूरा करने दी हिदायत दी। अज यात्री निवास ते दौरे दे दौरान तैमीराती कमां दा जायजा लेंदे होया उन्हां सुन मौजूद अफसरां और मुलाजमां नाल गल कीती। उन्हां दे नाल श्राइन बोर्ड दे सीईओ डॉक्टर मनदीप के भंडारी और सिविल ते पुलिस इंतजामिया दे अहुदेदार भी आसे। जम्मू कश्मीर बिच जिल हज दा चन नजर आ गया और बड़ी ईद 27 मई यानी बुधवार को मनाई जा सीगी। इस बारे भी जम्मू कश्मीर दे मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम सुन लोगों को मुबारकबाद देंदे होया आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर दे नाल गल करदे होया आख्या।
1: कल मौरख 17 मई मुताबिक 29 ज़िलहिज्जा जिलहजा का चांद देखे जाने की इत्तला'आत मौसूल हुई। मुशावरत के बाद ये फैसला लिया गया कि आज 18 मई जिलहजा की पहली तारीख है और ईद उल अधा 27 मई को मनाई जाएगी। ईद को सादगी से मनाएं, गुरबा और मसाकीन का खास ख्याल रखा जाए, जानवरों की कुर्बानी करते वक्त माहौलियात का खास ख्याल रखा जाए।
0: वाजरे विच बड़ी ईद दे आने दी खुशी विच बाजार विच चहल पहल होण लागी और मुझ सारे लोग पहला ही जरूरी चीज़ां लेण लागे। बड़ी ईद दे वेले कुर्बानी वास्ते जानवरां को लेण दा ध्यान ज़्यादा होंदा है और कुछ जगह ते अजकल बकरवाल कुर्बानी वाले जानवर बेच रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर बिच कल सेंसिस 2027 दा सरकारी तौर ते आगाज होया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन अपनी सेल्फ इन्यूमरेशन पूरी करके जम्मू कश्मीर दे लोगों को अपील कीती है कि वो इस अमल बिच सुनी तरीके नाल हिस्सा किनन और अपने कार आलिया को भी इस तफसील ऑनलाइन सरकारी पोर्टल ते दर्ज करन। उन्हें सुन सेल्फ इन्यूमरेशन को एक बड़ी जिम्मेदारी करार देंदे होया आख्या।
2: जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जनगणना भी आपके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए बहुत आवश्यक है। आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अपने मकान और उसमें रहने वाले कितने परिवार के सदस्य हैं इनके बारे में पूरी जानकारी जनगणना से जुड़े हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीजिए। मुझे लगता है कि आप सब इसमें पूरा सहयोग करेंगे।
0: इसी दौरान जम्मू कश्मीर के मुझ सारे जिलों बिच भी सेल्फ इन्यूमरेशन का अमल शुरू होया जिस बिच लोग असल तरीके नाल हिस्सा गिन रहे हैं। अज दूजे तिहाड़े भी इस पोर्टल ते मुझ सारे लोगों सुन अपने मकाना की तफसील दर्ज की। जम्मू कश्मीर दे सूबा जम्मू बिच अजकल मुच गर्म लहर है जिथे तिहाड़ी दा पारा 40 डिग्री तक पहुंच रहा है, जदों के कश्मीर वादी बिच खुशक मौसम की सूरतयाल बढ़ रही है। ताज़ा मौसम के सुरतयाल के बारे में श्रीनगर बिच महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करदे होए आख्या।
3: वेदर थोड़ा सा पिछले एक दो दिनों से ड्राई रह रहा है और दर्जे हरारत में भी थोड़ा सा इजाफा देखा गया है और आज भी टेम्परेचर में थोड़ा सा राइज देखा गया है। 31 तक भी जो है टच कर सकता है यहाँ मैदानी इलाकों में वैली के अंदर। और इसी तरह जम्मू डिवीजन के जो मैदानी इलाके हैं या कुछ एक जो एडजेसेंट प्लेन्स हैं खासकर उधमपुर जम्मू सांबा कठुआ के अंदर रियासी की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 38-39 से लेकर 41 डिग्री तक का भी राइज होगा। कल से जैसे थोड़ा सा वेदर भी एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा दर्जे हरारत में भी गिरावट देखा जाएगा। थोड़ा सा वेट स्पेल एक्सपेक्टेड है दोपहर के बाद, ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन थंडर शावर एक्टिविटी विथ हेल स्टॉर्म गस्टी विंड्स के साथ साथ, तो ये सिलसिला कमिंग डेज में थोड़ा बाद दोपहर रहने के चांसेस हैं टिल 24-25 ऑफ मई तक। 26 ऑनवर्ड फिर से जो है ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है तो दर्जे हरारत जो है फिर से राइज देखा जा सकता है अक्रॉस डिफरेंट स्टेशंस ऑफ जेएंडके।
0: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी के सारे जिले में सिविल ते पुलिस इंतजामिया इकट्ठे मुझ सारिया कोशिशां कर रहे हैं और सियाड़े 100 तिहाड़िया की मुहिम के चलद आने तिकर दे 40 तिहाड़िया में सिविल ते पुलिस इंतजामिया की तरफों आजार बेदारी प्रोग्रामा का इनकाद होया। सरकार सुन मंशिया के समगरों के खिलाफ सिर उबरदाश्त न करने की पॉलिसी तहत रहने का आख्या।
4: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त।

आकाशवाणी श्रीनगर ते अज को गोजरी प्रोग्राम लेके हूँ थारो मेज़बान शौकत अमन बोकड़ा थारी खिदमत में हाजिर हूँ। तो तम सारा ना मेरा तरफ से प्यार खलूस ते ताज़ीम नाल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करूँ कि तम खैर सुख नाल होएगा ते अपना मनपसंद गोजरी प्रोग्राम सुन रहा होएगा। समीन इकराम आओ प्रोग्राम का शुरू में सुना लोकगीत आवाज़ है सूरज सिंह शबनम अख्तर ते साथियों की।

लोकगीत सुन रहा था, आवाज़ थी सूरज सिंह शबनम अख्तर तय साथियों की। अगै लगे हथे थारे वास्ते गज़ल ला के रखी हुई है, आवाज़ है मुनीर अमन मीर तय मुदसर की, और यो कलाम है अब्दुल मजीद हसरत साबुरा को।

इस वास्ते आमना किसे भी जा के बिच हमेशा सब्र जुड़ा उसके ना काम लेनो चाहिए। समीन ए थारे वास्ते माइयो पेश है आवाज़ है दिलबर जुमा खान की, आओ सुन।

जी सामिन, डॉक्टर संजीत थॉमस की आवाज में हम गीत सुन रहा था। ते हुण वारी है लोक गीत की, आवाज है बेगम जान की।

0: समीन आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। प्रोग्राम पेश कर रहे थे शौकत अहमद बोकड़ा, माविन शाइस्ता इतु, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक वानी। मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। शाम के 5:50 हो रहे हैं। आइए गोजरी खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं।
1: आदाब, यू आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों को बुलेटिन लेकर चौधरी इरशाद बेना अहम खबरों की सुर्खी। अमरीकी सदर की ताजा वार्निंग का नतीजा मां ईरान से अमरीका के पिशकार पिशकीजी मां इजाफो। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस साल की यात्रा शुरू होने तो पहले ही यात्री नवाज श्रीनगर मां सारी तामीराती कमां ना मुकम्मल करने की हदायत। जुलहज का चांदगी हो गई है रोहित, ईद उल अजहा 27 मई। जम्मू कश्मीर में मरदमशुमारी का पहला मरहला के तहत मुकानन का अज खुद अंदराज करने को अमल जारी। पेश है खबरों की तफसील। अमरीका ने ईरान के शिकार तेहरान वास्ते ट्रंप की ताजा वार्निंग का नतीजा में एक बार फिर कशीदगी बात की है, जबकि मगरबी एशिया में कई महीने की बदमनी तो बाद जंग तो मुतल नुकसान का मुआवजा पाबंदियां में नरमी के यूरेनियम जहीरा की दूजा मामला पर मजाकती अमल तातुल को शिकार। ट्रंप ने तेहरान पर भी तो जोर किए हुए तेजी न खत्म हो रहा वक्त के पेश नजर जल्दी किसी मायदा के दर बढ़ी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका चाहे कि ईरानी जंग मुआवजा का मुतालबात वापस ले तो तस्लीम करे कि ईरानी असासन का बड़ा हिस्सा मंजमद रहेगा। अलबत् ईरानी इन शर्त न मुस्तरद कर छिड़ी है मुजाकरात की बहाली वास्ते अपनी शराइत पेश कर छिड़ी, जिन मां खासकर लबनान मां फौजी कार्रवाई बंद करनू पाबंदी खत्म करनू तो मंजमद ईरानी असासन की बहाली की बात की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यात्री नवास पांथा चौक श्रीनगर में इस साल की यात्रा शुरू होने तो पहले ही सारी जानकारी सारा जारी काम मुकम्मल करने की दी है हदायत। आज यात्री नवास का दौरा के दौरान तामीराती कामों का जायजा लेता हुआ उन्होंने उत्ते मौजूद अफसर के मुलाजमों गलबात की। उनके नाल श्राइन बोर्ड का CEO डॉक्टर मनदीप के भंडारी, सिविल पुलिस इंतजामिया का अहदेदार भी था। जम्मू कश्मीर में जुलहज का चंद नजर आ गया है तो ईद उल अजहा 27 मई यानी बुधवार ना मनाई जाएगी। इस तालक न जम्मू कश्मीर का मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने आवाम ना मुबारकबाद देता हुआ आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हुआ क्यों है।
2: कल मोरख 17 मई मुताबिक 29 जीकादा जुलहजा का चांद देखे जाने की इतलात मौसूल हुई। मुशावरत के बाद ये फैसला लिया गया कि आज 18 मई जिलहजे की पहली तारीख है और ईद उल अधा 27 मई को मनाई जाएगी। ईद को सादगी से मनाएं, गुरबा और मसाकीन

0: का खास ख्याल रखा जाए, जानवरों की कुर्बानी करते वक्त माहौलियात का खास ख्याल रखा जाए।
1: वाजह रहे कि ईद उल अजहा की आमद का सिलसिला में बाजारा में गहमा गहमी बढ़ गई है और बाद लोग पहले ही जरूरी अशिया की खरीद में लग गए हैं। ईद कुर्बान का मौका पर कुर्बानी का जानवरों की खरीदारी पर ज्यादा तवज्जा मरकूज रही है और बाद मकामात पर आजकल बकरवाल कुर्बानी का जानवर लेके

0: पूरा जम्मू कश्मीर कल तो ही सेंसस 2027 का सरकारी तौर पर आगाज हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी सेल्फ इन्यूमिनेशन मुकम्मल करके जम्मू कश्मीर के लोगों तो अपील की है कि वे इस अमल में बढ़ चढ़ गए इसलिए और अपने घर तो मुतलक तफसील ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर दर्ज करावी। उन्होंने सेल्फ इन्यूमिनेशन को एक बड़ी जिम्मेदारी करार देता वहां क्यों है।
1: जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जनगणना आपके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए बहुत आवश्यक है। आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अपने मकान और उसमें रहने वाले कितने परिवार के सदस्य हैं इनके बारे में पूरी जानकारी जनगणना से जुड़े हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीजिए। मुझे लगता है कि आप सब इसमें पूरा सहयोग करेंगे।
0: कश्मीर का बेशतर जिला में भी सेल्फ इन्यूमिनेशन का अमल शुरू है जिसमें लोग बढ़ चढ़ गए शिरकत कर रहे हैं। आज दूजा तेरा भी मुतलका पोर्टल पर बहुत लोगों ने अपना मकानात की तफसील दर्ज कराई है। फौज में भर्ती वास्ते ऑनलाइन मुश्तरका दाखला इम्तिहान इस साल 1 से 12 जून तोड़ी लियो जाएगा जिस वास्ते उम्मीदवार ने ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल के जरिए अपना इंदराज करवाया हुआ है। मुतलका उम्मीदवार इस पोर्टल तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें और किसी भी वजाहत वास्ते आर्मी रिटर्निंग अफसर श्रीनगर के नाल फोन नंबर 01942310164 पर या फिर ईमेल एड्रेस arosrinagar123@gmail.com पर भी राब्तो कायम कर सकें। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी का सारा जिला में सिविल ते पुलिस इंतजामिया का एहतमाम तो मुतलक सरगर्मी जारी ते 100 रोजा मुहिम के चलता उन तोड़ी करीब 40 तहना में सिविल ते पुलिस इंतजामिया की तरफों हजारा बेदारी प्रोग्रामों को इनकाद किया गया जिनमें लखा लोगों ने सरगर्मी के नाल हिस्सों लियो। सरकार ने मनशियात का समगलारा के खिलाफ कतन बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर कारबंद रहने को तहयोग किया हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस विद्युत का बारे में जम्मू में मकीम एक ड्रामा अदाकार नरेश कौल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता वहां क्यों।
2: जो ये ड्रग्स है ये मैं अपने बच्चों से अपील करना चाहूंगा कि ये पहली नंबर तो ये समाज के लिए भी बर्बादी है, अपने सेहत बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, ड्रग्स के लिए बच्चे फिर चोरियां करते हैं। मेरा अपील है पेरेंट्स से, समाज से और बच्चों से भी कि इस सब से दूर रहिए और समाज और पेरेंट इसमें मदद कर सकते हैं बच्चों को कि इन बच्चों को कैसे रेस्क्यू किया जाए। इस सब ट्रैक्स जम्मू कश्मीर पुलिस है वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं और उन्होंने बड़े सारे लोगों को पकड़ा भी है आज तक जो इसमें मुलव्वस हैं।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पालक पुलवामा में एक पद यात्रा की क्यादत करेगा। इस सिलसिला में ट्रैफिक पुलिस रूरल कश्मीर की तरफ एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। एडवाइजरी की रूह के नाल श्रीनगर काकापुरा ते पामपुर तो आने वाली गड्डियों को ओल्ड सर्कुलर रोड तो छपियां ते लितरगी दर मोड़ कर दी गई है। इसी तरह के नाल नुगाम ते निवा जैसा इलाकों तो आने वाली गड्डियों का नवा सर्कुलर रोड ते मुरन किलर राजपुरा ते छपियां दर मोड़ कर चुड़िया है।

हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय इसके अलावा आप हमें DTH और मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव पर भी समाप्त कर रहे हैं।

शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नश्र होगा। खबरों का जरा सा इंतजार फरमाइए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
0: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त

0: सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी श्रीनगर समय मोहतरम 5 मिनट सपित पेश प्रोग्राम गर्मी बाई नहीं खतरे।

रेडियो 268.8 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समय हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए।

0: आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
2: शेरबीन के सामईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौसुआत थे, जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद रोज से शिद्दत की गर्मी जारी, कठुआ में दर्ज हरारत पहुंचा 44 डिग्री। जम्मू कश्मीर में कल से मौसम में हल्का सा बदलाव, 25 मई तक हीट वेव का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात। जम्मू खत्ते में जड़ियों समेत प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स की बेशतर असामियां खाली, सफेदा के दरख्तों से निकलने वाले रुई नुमा गाले लोगों के लिए परेशानी का बाइस, शहरों गांव में लोग एलर्जी का शिकार। और सन्नतों के फरोग के लिए नई राहें तलाश करने की जरूरत, माहरीन की राय। और भी मौजूदात हैं आज के शेरबीन में एक वक्फे के बाद।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
6: 9018074333।
7: 9018074333।
8: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ,
9: वाह इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
8: पता नहीं मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा।
9: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
8: अच्छा भाभी,
9: और हाँ मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए

0: ssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
1: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
2: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
3: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है, और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
4: पर क्या कर सकते हैं?
3: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
5: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
6: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
7: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
6: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
7: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
6: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
7: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
6: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
7: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
6: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
7: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
6: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
8: शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.1 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समीन सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने के मरकजी काबिना के फैसले को मंजूरी दी है। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल के मुताबिक सदर मौसूफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 जारी करने को मंजूरी दी है, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस के अलावा 33 से बढ़कर जजों की तादाद 37 हो जाएगी। अब एक और मौजूद, सभी जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद एक रोज से दर्ज हरारत में काफी इजाफा दर्ज हो रहा है। सबसे ज्यादा गर्मी जम्मू खित्ते में महसूस हो रही है, जहां दर्ज हरारत 40 डिग्री पार कर चुका है। कठुआ से हमारी नुमाइंदे रमेश मराठा के मुताबिक कठुआ में जोरों की गर्मी जारी है और यहां दर्ज हरारत 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस दौरान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू ने शदीद गर्मी के पेश नजर एडवाइजरी जारी की है और बच्चों बड़े बुजुर्गों को दिन के दौरान घरों में ही रहने की तलकीन की है। दरिया असना जम्मू खत्ते में सख्त गर्मी के बीच बिजली की कटौती भी जारी है। एक रिपोर्ट जावेद मेहराब से।
9: सरमाई राजधानी जम्मू में एक तरफ बढ़ती सख्त गर्मी, वहीं दूसरी तरफ बिजली की कटौती से लोगों का बुरा हाल है। यहां खासतौर पर बाहर चिलचिलाती धूप में काम करते लोगों के लिए काम करना सख्त मुश्किल होता जा रहा है। जम्मू शहर में कल इतवार को 3 डिग्री दर्ज हरारत बढ़ते ही पारा 40 डिग्री तक पहुँच गया। याद रहे कि शनिचरवार को दर्ज हरारत 37.1 डिग्री था, जबकि इतवार को पारा 40 डिग्री हो गया। वहीं सोमवार को भी सुबह से ही तेज धूप की वजह से सख्त गर्मी महसूस हो रही थी। वहीं महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पारा 40 डिग्री के पार चला गया। कठुआ और सांबा में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया और तेज लू भी चल रही है। दिन भर सड़कों पर सख्त धूप की वजह से गाड़ियों का चलना कम ही देखने को मिला। यहाँ बाजार दिन में सुनसान नजर आ रहे थे। लोग सुबह के वक्त ही जरूरी काम निपटाने में लग जाते हैं ताकि दोपहर के बाद की सख्त गर्मी से बचा जा सके। दिन में शहर भर में गर्मी की वजह से खामोशी छाई रही और इस दौरान जम्मू के लोग अब बिजली की कटौती भी महसूस कर रहे हैं और गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की कटौती और ज्यादा गहरी होने वाली है। इतला के मुताबिक महकमा बिजली ने मुख्तलिफ स्टेशंस को लगभग 500 मेगावाट बचाने के लिए सुबह और रात के वक्त बिजली कटौती करने को कहा है। गर्मी बढ़ने से यहाँ खित्ते के कठुआ और सांबा में सख्त बिजली की कटौती की शुरुआत हो गई है। याद रहे कि यहाँ

0: बिजली की कटौती पर काबू पाने के लिए मरकज से बिजली खरीदने की तैयारी में है। जम्मू और आसपास के इलाकों में लोग रात के वक्त 5 घंटों तक की कटौती झेल रहे हैं, जिससे आम लोगों की नींद हराम हो गई है। मुख्तलिफ स्टेशन में पावर सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से बिजली की कटौती हो रही है। जानकारी के मुताबिक बगलियार सेकेंड से 480 मेगावाट की जगह अब सिर्फ 130 से 150 मेगावाट ही हासिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से जम्मू में पावर कटौती के हालात पैदा हो गए हैं। JKPDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि दरियाओं में पानी कम होने की वजह से बिजली की सप्लाई पर असर पड़ा है। हालात पर काबू पाने के लिए महकमा बिजली खरीदने की तैयारी में है। उन्होंने आम लोगों से बिजली को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने को भी कहा है। याद रहे कि जम्मू में 1400 मेगावाट की जरूरत है और यहाँ सिर्फ 1100 मेगावाट से ही काम चलाया जा रहा है, इसलिए बाहर से बिजली खरीदी जानी जरूरी हो गई है। उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर बिजली की कटौती के हालात पर काबू पाया जा सकेगा। सख्त गर्मी और बिजली की कटौती के दरमियान उम्मीद सिर्फ बारिश की है, लेकिन अभी महकमे ने जम्मू में 19 से 21 तारीख तक को ही हवाएं चलने और बूंदाबांदी की उम्मीद जताई है, जिसको लेकर लोग पुरउम्मीद भी हैं कि कुछ मौसम जरूर बदलेगा और दर्जा हरारत में कमी होगी।
1: आपने जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट सुनी। दरियास्ता महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से दोनों खत्तों के मौसम में कुछ हद तक बदलाव देखा जाएगा और आसमान अबर आलूद रहने के साथ साथ बाज़ इलाकों में हल्की बारिश भी होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक 25 मई तक जम्मू कश्मीर में हीट वेव की कोई गुंजाइश नहीं है।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वेदर पिछले 2-3 दिनों से ड्राई चल रहा है और इस बीच दर्जा हरारत में भी काफी इजाफा देखा गया है अक्रॉस डिफरेंट स्टेशन और स्पेशली जम्मू डिवीजन के अंदर, जम्मू के मैदानी इलाकों के अंदर। तो आज भी ऑलमोस्ट 41 तक यहाँ जम्मू के मैदानी इलाकों में टच किया है और जम्मू के जो एडजेसेंट एरिया हैं, खासकर जो मैदानी इलाकों से जो सटा हुआ एरिया है, खासकर रियासी की बात करें, उधमपुर की बात करें, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 37 से लेकर 39 तक जो है आज रह सकता है। तो कल से जैसे एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा हल्की बारिशें भी हैं, टेम्परेचर में भी थोड़ा सा गिरावट देखा जाएगा। तो नेक्स्ट 4-5 दिन जो है फिलहाल कोई ऐसे हीट वेव नहीं है, तो हॉट एंड ड्राई वेदर थोड़ा सा रहेगा जम्मू के मैदानी इलाकों में, लेकिन हीट वेव के चांसेस आज के बाद बिल्कुल कम है, खासकर 25 मई तक। तो 26 ऑनवर्ड जो है फिर से दर्जा हरारत बढ़ने के चांसेस हैं, तो देखा जाएगा क्या कुछ रहता है, लेकिन फिलहाल गर्मियां जो है कल से थोड़ा सबसाइड होंगे, क्योंकि हल्की बारिशें बाद दोपहर जो है रह सकता है इंटरमीडियंटली टिल 25 ऑफ मई तक।
1: वादी कश्मीर में आप किस तरह का मौसम देखते हैं? यहाँ भी आज खासी गर्मी थी।
2: बिल्कुल, यहाँ ऑलमोस्ट 31-31.5 तक भी टच कर सकता है आज दिन का जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है। तो कमिंग डेज में भी जैसे गर्मियां जम्मू डिवीजन के अंदर भी थोड़ी कम होंगी, तो यहाँ वैली के अंदर भी एक्सपेक्टेड है टेम्परेचर 2-3 डिग्री 4 डिग्री तक का भी फॉल जो है देखा जाएगा।
1: ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। एमएलए गुलमर्ग पीरजादा फारूक अहमद शाह ने आज गुलमर्ग हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती अवामी और बेदारी प्रोग्रामों में शिरकत की। उन्होंने करालपुरा में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह किया और कहा कि दीही इलाकों में तालीमी ढांचे को मजबूत बनाना उनकी तरजीहात में शामिल है। बाद अजा उन्होंने MTM कॉलेज ऑफ एजुकेशन में नशा मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम में बतौर मेहमान खास के तौर शिरकत की और नौजवानों पर जोर दिया कि वह मनुष्यात से दूर रहकर मस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लें। एमएलए मौसूब ने टंगमर्ग में 9 मुंतखब आंगनवाड़ी वर्करों में तकरूरी नामे भी तकसीम किए और उन्हें लगन के साथ खिदमत अंजाम देने की तलकीन की। इस दौरान उन्होंने आपकी आवाज हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम के तहत करालपुरा और महीन देहात का दौरा किया और अवामी मसाइल सुने और यकीन दिलाया कि जायज मामलात को जल्द अज जल्द मुतल्लिका हुक्काम के साथ उठाया जाएगा। एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के महंगाई अलाउंस में 2% का इजाफा करने के हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया है। एक बयान में सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर और इजैक के सदर फयाज अहमद शबनम ने कहा कि हुकूमत की जानिब से ये इकदाम साबिक वादों के तसलसल में उठाया गया है और एक मजबूत कदम है। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत को मुलाजमीन के जेर इल्तवा वाजिबात भी फौरी तौर जारी करनी चाहिए ताकि वो ऐलान करदा राहती इकदाम से फायदा हासिल कर सके। उन्होंने सरकार से अपील की है कि ईद का त्यौहार नजर रखते हुए मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशनर्स की पेंशन ईद से कबल वागुजार कराई जाएं। اب ایک اور موسم. سمیر وادی کشمیر میں ہر سال موسم بہار آنے کے ساتھ ہی عام لوگ سفیدے کے درختوں سے نکلنے والے پولن، جنہیں ہم عرف عام میں روئی کے گالے کہتے ہیں کہ

0: किसी को पता नहीं चलेगा।
1: नशा किसी भी तरह का हो, एक बार इसकी लत लग जाए तो इतनी आसानी से नहीं छूटती। नशा सिर्फ आपका जीवन ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि ये आपके परिवार, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल, आपके फ्यूचर को अंधकार में ले जाएगा।
2: क्यों? सुन के डर लगाना, अभी भी देर नहीं हुई है। आप अब भी नशे को छोड़ सकते हैं और जिंदगी से फिर से अपना नाता जोड़ सकते हैं। से बाय बाय टू ड्रग्स एंड हाय टू गुड लाइफ।
3: तो आइए आज से हम सब मिलकर खुद को, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को, अपने जिले, अपनी यूटी को नशा मुक्त बनाने का प्रण ले और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दे।
4: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
6: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स।
7: शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के वालिद खजर मोहम्मद शेख नई दिल्ली के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। खजर मोहम्मद शेख कुछ अरसे से अलील थे और उन्हें हाल ही में नई दिल्ली बेहतर इलाज के लिए मुंतकिल किया गया था। खजर मोहम्मद शेख के जसद खाकी को नई दिल्ली से GMC बारामुल्ला पहुंचाया गया है और जरा के मुताबिक मरहूम की तदफीन इंजीनियर रशीद के वादी पहुंचने के फौरन बाद अंजाम दी जाएगी। वजरे की नई दिल्ली की एक अदालत ने इंजीनियर रशीद को 2 जून तक मशरूत जमानत दे दी है और उम्मीद की जा रही है कि वो कल सुबह तक घर पहुंचेंगे। इस दौरान वादी के मुतअद्दिद सियासी शख्सियात ने खजर मोहम्मद शेख के इंतकाल पर रंज का इजहार करते हुए इंजीनियर रशीद और अहलखाना से ताज़ियत किए। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रुकन पार्लियमान इंजीनियर रशीद और मेंबर असेंबली लंगेट खुर्शीद अहमद शेख के वालिद खजर मोहम्मद शेख के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सुगवार खानदान से ताज़ियत की है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला, माउन जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद रमजान, वजीर आला के मुशीर नासिर असलमानी, MLA लोलाब कैसर जमशीद लोन, PDP के सीनियर लीडर और साबिक वजीर एडवोकेट अब्दुल्ला खान, PDF के सदर हकीम मोहम्मद यासीन, PDP के सीनियर लीडर मंजूर अहमद वानी, जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम और पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के सदर अब्दुल कोईमानी, कल्चरल ट्रस्ट कुपवाड़ा के सदर अयूब दिलबर, जनरल सेक्रेटरी अशरफ चराग, अदबी तंजीम जोय अदब काजीनाग और समाजी कारकुन शेख कौमुद्दीन शिलवती के साथ साथ साफी फयाज हमीद ने भी खजर मोहम्मद की वफात पर रंज का इजहार किया है और सोगवारान से ताज़ियत की है। सब जम्मू कश्मीर में सन्नतों को फरोग देने और मकामी सतह पर रोजगार के वसाइल पैदा करने के सिलसिले में गुज़श्ता 3 दहाइयों से कोशिशें जारी हैं, मगर ये एक हकीकत है कि ये कोशिशें बराबर साबित नहीं हो रही हैं। खासतौर से वादी कश्मीर के जगराफियाई और मौसमी हालात इस सब में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। साथ ही सन्नती पॉलिसी, दफ्तरी तवालत समेत दीगर चीजें भी इस राह में रोड़े अटका रही हैं। इमरान नायको की रिपोर्ट।
8: जम्मू कश्मीर का सन्नत व तजारत शोबा इस वक्त कई संगीन चैलेंजेस, पॉलिसी खामियों, माली दबाव, बुनियादी सहूलियात की कमी और सन्नती अदम तवाजुन का सामना कर रहा है। जबकि सन्नती व तजारती तंजीमों, सन्नतकारों और कारोबारी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए एक जामع और मुअसर सन्नती पॉलिसी नाफिज करें। उन्होंने साथ ही हुकूमत से मुअसर और जमीनी हकाइक पर मबनी सन्नती असलाहत का मुतालबा भी किया है। सनती हलकों का कहना है कि गुज़श्ता कई वर्षों के दौरान मुतअद्दिद सनती पॉलिसियां, मुराती स्कीमें और सरमायाकारी मंसूबे मुतारिफ करवाए गए, तहम इनके मुअसर निफाज, निगरानी और जवाबदेही के फुकदान के बाइस जमीन स्तर पर मतलूबा नतायज हासिल नहीं हो सके। हालिया RTI इंकशाफात, सरकारी एदादोशुमार और सनती इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सनतकारी का अमल सुस्त रवि, इलाकाई अदम तवाजुन, ताखीर और पॉलिसी तजादात का शिकार है। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर FCIK ने ऐलान किया है कि वो न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम के निफाज से मुतालिक एक तफसीली व्हाइट पेपर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पेश करेगी, जबकि इसकी कॉपीज वजीर दाखिला अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला को भी अरसाल की जाएंगी। FCIK के मुताबिक हुकूमत हिंद की 28,400 करोड़ रुपए मालियत की NCSS स्कीम का मकसद जम्मू कश्मीर में मुतवाजन सनती तरक्की, ब्लॉक सतह पर सरमायाकारी और रोजगार पैदा करना था, तहम इसके निफाज में शदीद इलाकाई अदम तवाजुन सामने आया है। फेडरेशन के मुताबिक जम्मू खित्ते के कुठवा, सांबा और जम्मू, जबकि कश्मीर में पुलवामा, श्रीनगर और बड़गाम में सनती सरगर्मियां ज्यादा रही, जबकि डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, रियासी, कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, गांधरबल, कुलगाम, अनंतनाग और शुपियान जैसे अजला सनती तरक्की से महरूम रहे। सरकारी डैशबोर्ड और RTI

0: एक ही क्लास में पढ़े, पर दोनों दोस्तों का अंतर पता है क्या है? एक ने अच्छा उज्जवल जीवन चुना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी संगत, खेलकूद और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया,
1: जबकि वहीं दूसरा दोस्त गलत संगत में पढ़कर नशे की लत लगा बैठा। फर्क सिर्फ इतना रहा कि वो गलत संगत में फंसते चला गया, पर उसे बाहर निकालने वाला कोई दोस्त ना मिला।
0: ये दोस्त आप बन सकते हो। अगर अपने आसपास आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो नशे की तरफ जा रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो, उसे डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन एंड काउंसलिंग सेंटर तक ले जाके और उसके जीवन में नई रोशनी, नई आशा की किरण बन सकते हो।
1: आओ हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने आसपास अपनी कम्युनिटी को ड्रग फ्री बनाएं और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दें।
0: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
3: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
2: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
3: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
2: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
3: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
2: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हैरेसमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
3: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
2: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
3: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
2: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
4: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।

उनके इंतकाल पर दीगर कई अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने भी दुख और सदमे का इजहार किया है। बिहार और झारखंड की कानून साज असम्बली में सरकारी यकीन दहानी और अकलियतों की बहबूद से मुतालिक कमेटियों के मंदूबीन ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुलरहीम राथर से मुलाकात की। मेहमान मंदूबीन का इस्तकबाल करते हुए अब्दुलरहीम राथर ने कहा कि मुल्क के मुतनवे कानून साज मंजरनामे को समझने के लिए इस तरह से कमेटियों के साथ मुलाकातें सूदमंद साबित हो रही हैं। सेहत, समाजी बहबूद और तालीम के वजीर सकीन अयतू ने जम्मू कश्मीर भर में बच्चों के मवाफिक एक शमूलियाती और हॉलिस्टिक दरस तदरीस का माहौल कायम करने की ज़रूरत उजागर की है। उन्होंने महकमे समाजी बहबूद के तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को मजबूत करने और इसमें मुजवजा असलाहत को लागू करने के लिए ज़रूरी मुदाखलतों का अफसरों की एक मीटिंग में जायजा लिया। नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी के सभी अजला में सिविल और पुलिस इंतजाम के अहतमाम से मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। सरकार ने मनशात के स्मगलरों के खिलाफ कतन बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर कारबंद रहने का तहिया किया हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर

0: जरा से कमेटियों के साथ मुलाकातें सूदमंद साबित हो रही हैं। सेहत, समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना ऐतू ने जम्मू कश्मीर भर में बच्चों के मवाफिक एक शमूलियाती और हॉलिस्टिक दरसो तदरीस का माहौल कायम करने की ज़रूरत उजागर की है। उन्होंने महकमे समाजी बहबूद के तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को मजबूत करने और इसमें मुजवजा असलाहत को लागू करने के लिए ज़रूरी मुदाखलतों का अफसरों की एक मीटिंग में जायजा लिया। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी के सभी अजला में सिविल और पुलिस इंतजाम के अहतमाम से मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। सरकार ने मनशात के स्मगलरों के खिलाफ कतन बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर कारबंद रहने का तहिया किया हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिद्दत के बारे में जो में मुकीम एक ड्रामा अदाकार नरेश कोल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: जो ये ड्रग्स है ये मैं अपने बच्चों से अपील करना चाहूंगा कि ये पहली नंबर तो ये समाज के लिए भी बर्बादी है, अपने सेहत बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं ड्रग्स के लिए, बच्चे फिर चोरियां करते हैं। मेरा अपील है पेरेंट्स से, समाज से और बच्चों से भी कि इस सब से दूर रहिए और समाज और पेरेंट इसमें मदद कर सकते हैं बच्चों को कि इन बच्चों को कैसे रेस्क्यू किया जाए इस ड्रग ट्रैक्स। जम्मू कश्मीर पुलिस है वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं और उन्होंने बड़े सारे लोगों को पकड़ा भी है आज तक जो इसमें मुलव्वस हैं।
0: दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल पुलवामा में एक पद यात्रा की क्यादत करेंगे। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस रूरल कश्मीर की जानब से एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। एडवाइजरी के रूप से श्रीनगर, काकापुरा और पांपोर से आने वाली गाड़ियों को ओल्ड सर्कुलर रोड से शुपया और लितर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से नौगाम और निवा जैसे इलाकों से आने वाली गाड़ियों को नए सर्कुलर रोड से मुरन, केलर राजपुरा और शुपया की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तहम शुपया से श्रीनगर जाने वाली गाड़ियों को इन दोनों सड़कों से आगे बढ़ने की इजाज़त होगी। जिला अस्पताल की तरफ से जाने वाली मेडिकल इमरजेंसी की गाड़ियों को मुरन चौक से चलने की इजाज़त होगी। इधर पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत अपनी सरगर्मियां जारी रखते हुए आज अवंतीपुरा में कई बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद करके स्कूली तलबा और नौजवानों पर जोर दिया कि वो नशाखोरी की लत से बचें और अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज करें। हंदवाड़ा पुलिस ने दो अलग अलग कार्रवाइयों में अल्ताफ अहमद मीर और निसार अहमद अहंगर नामी दो मनशात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की है। उधर अनंतनाग पुलिस ने अपनी मनशात मुखालिफ कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए NDPS एक्ट के तहत 1,10,00,000 रुपये मालियत की जायदाद मुंसलिक कर दी है। मुंसलिक की गई जायदाद में मनशात फरोश एजाज अहमद भट्ट का 2 मंजिला रिहायशी मकान शामिल है। इसी असला में बड़गाम पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत बड़गाम में खशखाश की फसल को तबाह करते हुए इस ताल्लुक से 2 FIR दर्ज किए हैं। शुपया में पुलिस ने मनशात के मुजिर असरात के ताल्लुक से एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया। उधर जिले के केलर इलाके में पुलिस ने खशखाश की फसल को तबाह करते हुए 1 FIR दर्ज की। अनंतनाग और हंदवाड़ा में भी अलग अलग कार्रवाइयों में पुलिस ने खशखाश की फसल को तबाह कर दिया। पुंछ पुलिस ने भी एक कार्रवाई के दौरान एक मनशात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से चरस की कुछ मकदार बरामद की। सांबा पुलिस ने मनशात मुखालिफ एक कार्रवाई के दौरान बलोल खड बरी ब्रह्मणा में मनशात का कारोबार करने वालों की जायदादें मुनहदिम करने के अलावा 60 करोड़ रुपये मालियत की जेर कब्जा सरकारी अराजी को आज़ाद कराया है। रियासी पुलिस ने मनशात मुखालिफ एक कार्रवाई के दौरान मोहम्मद मकबूल नामी एक मनशात फरोश से 50 ग्राम हेरोइन जब्त की। पूरे जम्मू कश्मीर में कल से सेंसस 2027 का सरकारी तौर पर आगाज हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी सेल्फ इन्यूमरेशन मुकम्मल करके जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की है कि वो इस अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने घरों से मुतलिक तफासील ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराएं। उन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन को एक बड़ी जिम्मेदारी करार देते हुए कहा,
3: जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जनगणना आपके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए बहुत आवश्यक है। आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, अपने मकान और उसमें रहने वाले कितने परिवार के सदस्य हैं इनके बारे में पूरी जानकारी जनगणना से जुड़े हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीजिए। मुझे लगता है कि आप सब इसमें पूरा सहयोग करेंगे।
0: दरियासना जम्मू कश्मीर के बेशतर ज़िलों में भी सेल्फ इन्यूमरेशन का अमल शुरू हुआ जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं। आज दूसरे दिन भी मुतलका पोर्टल पर बहुत से लोगों ने अपने मकानात की तफासील दर्ज कराएं। محکمہ زرعی پیداوار دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے بھی آج سینسس 2027 کی

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज। सामीन, प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामीन, किसी भी मुल्क की बैन अलाक्वामी साख, उसके सियासी इस्तेहकाम, इदारा जाती मजबूती और पॉलिसियों के तसलसल से जुड़ी होती है। जब एक रियासत मुसलसल सियासी बहरान, दाखली कश्मकश और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो तो न सिर्फ इसके अंदरूनी मामलात मुतासर होते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी इस पर एतमाद कम होने लगता है। पाकिस्तान में जारी सियासी बहरानों ने आलमी बरादरी, सरमायाकारों और बैन अलाक्वामी इदारों के एतमाद को मुतासर किया है, जिसके असरात मईशत, सफारतकारी और कौमी वकार पर नुमाया तौर पर देखे जा सकते हैं। सियासी बहरान की एक बड़ी वजह मुसलसल अदम इस्तेहकाम है। हुकूमतों की तब्दीली, सियासी जमातों के दरमियान शदीद महाज आरई और इज्तिमाई सियासत ने एक ऐसी फ़जा पैदा कर दी है जहां पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। आलमी ताकतें और सरमायाकार ऐसे माहौल में मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं क्योंकि गैर यकीनी सियासी हालात तवील मुद्दती मनसूबा बंदी को मुतासर करते हैं। सामिन, इदारों के दरमियान तनाव भी आलमी एतमाद में कमी का एक अहम सबब बनता है। जब मुख्तलिफ रियासती इदारे एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात का शिकार हों या सियासी मामलात में कशीदगी नजर आए तो बिरूनी दुनिया में ये तासुर पैदा होता है कि निज़ाम हकूमत मुकम्मल हम आहंगी से काम नहीं कर रहा। इससे रियासती इस्तेहकाम पर सवालात उठते हैं। मौशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम का बाहमी ताल्लुक भी नुमाया है। जब सियासी सूरत हाल गैर यकीनी हो तो सरमायाकारी कम हो जाती है, कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होती हैं और मौशी तरक्की सुस्त पड़ जाती है। आलमी मालियाती इदारे भी ऐसे मुल्कों के साथ मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं जहाँ सियासी सूरत हाल गैर मुस्तकम हो। समीन, खारजा पॉलिसी पर भी सियासी बहरान के असरात मुरातब होते हैं। एक गैर मुस्तकम सियासी माहौल में खारजा पॉलिसी के अहदाफ और तरजीहात में तसलसल कायम रखना मुश्किल हो जाता है। इसके नतीजे में बैन अल-अक्वामी सतह पर मुल्क की सफारती पोजीशन कमजोर पड़ सकती है और आलमी शराकत दारों का एतमाद मुतासर हो सकता है। मीडिया और सोशल मीडिया ने भी इस तासुर को आलमी सतह पर ज्यादा नुमाया कर दिया है। सियासी तनाजात, एहतजाज बयानात और इदारा जाती इख्तलाफात की खबरें फौरी तौर पर दुनिया भर में फैल जाती है, जिससे मुल्क की तस्वीर एक गैर मुस्तकम रियासत के तौर पर उभर सकती है।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामिन, किसी भी रियासत की मजबूती का इन्हिसार उसके इदारों की कारकर्दगी, खुद मुख्तारी और मौसर निज़ाम हुकुमरानी पर होता है। जब रियासती इदारे अपने फराइज मौसर अंदाज में अंजाम देने में नाकाम होने लगे तो पूरा निज़ाम बहरान का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान में इदारों की कमजोरी और निज़ामी बहरान एक ऐसा मसला बन चुका है जो न सिर्फ हुकुमरानी को मुतासर कर रहा है बल्कि अवामी एतमाद, मौशी इस्तेकाम और कौमी तरक्की पर भी गहरे असरात मुरतब कर रहा है। इदारों की कमजोरी की एक बड़ी वजह सियासी मुदाखलत है। जब इदारों के फैसले मेरिट और कानून के बजाय सियासी मफादात के ताबे हो जाएं तो उनकी गैर जानिबदारी और कारकर्दगी मुतासर होती है। इस सूरत हाल में इदारे अपनी असल जिम्मेदारियों से हटकर दबाव और मफादात के तहत काम करने लगते हैं, जिससे निजामी तवाजुन कमजोर पड़ जाता है। समिन, बदउनवानी भी इदारा जाती कमजोरी का एक अहम सबब है। जब करप्शन निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्सों में सराइयत कर जाए तो शफाफियत, एहतसाब और इंसाफ का अमल मुतासर होता है। वसाइल का गलत इस्तेमाल, उकरबा परवरी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल इदारों की साख को कमज़ोर करता है और आवाम में बद एतमादी को जन्म देता है। कानून की कमज़ोर अमलदारी भी इस बहरान को बढ़ाती है। अगर कवानीन का इतलाक सब पर यकसान न हो और ताकतवर तबकात एहतसाब से बालातर दिखाई दें तो इदारों की हैसियत कमज़ोर पड़ने लगती है। इससे अवाम में ये एहसास पैदा होता है कि निज़ाम इंसाफ और रियासती ढांचा गैर मौसर हो चुका है। इंतज़ामी नाअहली और पॉलिसियों में अदम तसलसल भी निज़ामी बहरान की अहम वजूहात हैं। हुकूमतों की तब्दीली के साथ तरजीहात बदल जाती हैं, जिससे तवीलमुद्दती मनसूबा बंदी मुतासर होती है। इदारे मुस्तकिल सिमत के बगैर काम करते हैं, जिसके नतीजे में कारकर्दगी और अवामी खिदमात का मयार कमज़ोर पड़ जाता है। सामिन, इदारों के दरमियान इख्तियारात की कश्मकश भी निज़ामी अदम इस्तेहकाम को जन्म देती है। जब मुख्तलिफ इदारे अपने दायरे इख्तियार पर इख्तलाफ रखते हों तो हम आहंगी मुतासर होती है और फैसला साजी का अमल सुस्त पड़ जाता है। ये सूरतहाल रियासती नज्म व नस्क को पेचीदा बनाती है। इस निज़ामी बहरान के असरात नहायत वसी हैं। सबसे पहले आवाम का रियासती इदारों पर एतमाद कमज़ोर होता है। लोग ये महसूस करने लगते हैं कि उनके मसाइल का हल मौसर अंदाज में नहीं हो रहा, जिससे मायूसी और बेचैनी बढ़ती है। मौशी सतह पर भी इसके मनफी असरात सामने आते हैं। कमज़ोर इदारे सरमायाकारी, कारोबारी सरगर्मियों और तरक्याती मनसूबों को मुतासर करते हैं। जब निज़ाम गैर मुस्तकम हो तो मौशी तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है और बेरोजगारी और गुर्बत जैसे मसाइल शिद्दत इख्तियार करते हैं। समिन, समाजी सतह पर भी इदारा जाती कमजोरी के असरात नुमाया हैं। कानून की कमजोर अमलदारी जराइम, बदउनवानी और समाजी बेचैनी को बढ़ा सकती है। अवाम में एहसास अदम तहफ्फुज़ पैदा होता है और मआशरती हम आहंगी मुतासर होने लगती है। सामीन, निज़ामी बहरान ने नौजवान नस्ल में भी मायूसी को बढ़ाया है। जब तालीम, रोज़गार और इंसाफ के शोबे मौसर अंदाज में काम न करें तो नौजवान मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी कैफियत का शिकार हो जाते हैं। ये रुझान ब्रेन ड्रेन और समाजी बेहसी को जन्म दे सकता है। सामीन, इदारों की कमज़ोरी और निज़ामी बहरान एक ऐसे गहरे मसले की अलामत है जो रियासती ढांचे, अवामी एतमाद और कौमी तरक्की को बयक वक्त मुतासर कर रहा है। जब इदारे अपनी मौसर हैसियत खो दें तो

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। समय रात के 8:30 हो रहे हैं। आइए समाप्त करें प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम।
2: स्पोर्ट्स टाइम लेकर हम हाजिर। पहले एक नजर अहम खेल सरगर्मियों पर। IPL, पंजाब किंग्स को आसानी हराने के बाद दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL 2026 की पहली ऐसी टीम बनी जिसने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है। ये 13वें मुकाबले में RCB की नवी जीत थी। इस तरह से वो मजमुई तौर पर 18 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सरफहरिस्त है। RCB अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी। कल यानी इतवार को खेले गए इस अहम मुकाबले में लेजेंडरी विराट कोहली का एक मरतबा फिर अहम किरदार रहा। हालांकि RCB ने अपने इनफॉर्म बल्लेबाज जैकब बैसल की विकेट बहुत जल्दी गंवा दी थी। तहम कोहली ने 37 गेंदों पर 58 रनों की एक क्लिनिकल इनिंग्स खेलकर न सिर्फ डेविड पडिकल के साथ 76 रनों की एक अहम पार्टनरशिप कायम की बल्कि एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए टीम को एक उम्दा प्लेटफॉर्म भी फराहम किया, जिसका मिडिल ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर और टिम डेविड ने भरपूर फायदा उठाकर टीम के मजमुई स्कोर को 222 तक पहुंचा दिया, जो कि पूरी तरह से अपना मोमेंटम खो चुकी पंजाब के लिए बेहद मुश्किल था। पॉइंट टेबल पे इब्तदाई 25 दिनों तक सरफहरिस्त रहने के बाद पंजाब किंग्स की ये मुसलसल छठी हार थी। इस हार के बाद पंजाब किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने के इम्कानात भी बहुत कम हो गए हैं। इससे न सिर्फ अपना आखिरी मुकाबला जीतना होगा बल्कि दूसरे मुकाबलों के नतीजे पर भी इंहसार करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथी जावेद परे बात कर रहे हैं दुनियाई फुटबॉल के एक अजीम या शायद सबसे अजीम खिलाड़ी पेले के बारे में, वर्ल्ड कप के तनाजुर में।
3: मेरे वालिद मुझे हमेशा कहा करते थे कि फुटबॉल कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा है, आपको हमेशा चुस्त चौबन रहना है, अपने हरीफों की इज्जत करनी है और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप एक अजीम फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये उस अजीम फुटबॉलर की बात है जिन्हें आप, हम और पूरी दुनिया एडिसन एरेंटस डो नेसिमेंटो या पेले के नाम से जानती है। पेले सिर्फ एक फुटबॉलर ही नहीं बल्कि इससे बढ़कर भी और बहुत कुछ हैं। उनके बारे में माइकल प्लेटिनी कहते हैं, टू प्ले लाइक पेले इज टू प्ले लाइक गॉड। इंग्लिश फुटबॉलर बॉबी चार्ल्टन इस अजीम सुपरस्टार के बारे में कहते हैं, समटाइम्स आई फील एज दो फुटबॉल वाज इन्वेंटेड फॉर दिस मैजिकल प्लेयर। आज से तकरीबन 70 साल पहले के फुटबॉल की एक लंबी दास्तान शुरू होती है। इसी सेंटोस शहर से पेले ने फुटबॉल में अरूज हासिल करना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता उनकी शोहरत के चर्चे ब्राज़ील से बहुत दूर यूरोप, एशिया और अफ्रीका में होने लगे। फुटबॉल नस नस में बसी थी। उनकी माँ भी उन्हें डॉक्टर या उस्ताद के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन पेले को फुटबॉल के अलावा कहाँ कुछ रास आता था। 1950 के आलमी कप फुटबॉल फाइनल में ब्राज़ील को अपने ही मुल्क में यूरोगाय के हाथों शिकस्त हुई तो पूरे ब्राज़ील में मातम छा गया। पहले 10 साल के थे। उन्होंने देखा कि उनके वालिद जार जार रो रहे थे। मासूम अंदाज में उन्होंने अपने वालिद से रोने की वजह पूछी तो उनके वालिद ने उन्हें बताया कि ब्राज़ील की टीम वर्ल्ड कप हार गई है। पहले ने मजाक के अंदाज में अपने वालिद से कहा कि वो उनके लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाएंगे। 10 साल

कि महज 8 साल बाद वो ये काम करके दिखाएंगे। 1958 के स्वीडन में मुनाकदा वर्ल्ड कप के लिए जब 17 साल के पहले को ब्राज़ीलियन टीम के लिए चुना गया, तब खुद पहले टीम में उनकी सिलेक्शन पर हसरत ज़्यादा थे। वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब पहले ने स्वीडन की राह ली थी, तब उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन वर्ल्ड कप मुकम्मल होने के बाद महज 1 माह के अंदर अंदर वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गए। 4 साल बाद ब्राज़ीलियन टीम वर्ल्ड कप के लिए जब चिली पहुंची, तो इस टीम के मरकजी किरदार पहले ही थे। मैक्सिको के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने दिखा दिया कि वो सबके चाहिए।

मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। रात के 8:45 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नशर होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से

0: किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल, किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई

0: चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव जहातार 8.8 मीटर ते एफएम 73.5 में घर्जन पेट समय मोहतरम 9 बजे वलु के कशिर बोध बोजो दस्तुल कलामे शमस फकीर सहित गुलकार कैसर निजामी।

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय रात के 9:15 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।

सदर हू ची मिन के कल 136वें यौमे पैदाइश के मौके पर हो रहा है। ये आकाशवाणी है। मगरबी बंगाल सरकार ने मुबैना इदारा जाती बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ जुल्म ज्यादती की तहकीकात करने की गरज से दो तहकीकाती कमीशन तश्कील दिए हैं। ये कमीशन भारतीय जनता पार्टी के जरिए किए गए इंतखाबी वादों के मुताबिक बनाए गए हैं। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीना की मंजूरी के बाद आज इस फैसले का ऐलान किया। इदारा जाती बदउनवानी की तफ्तीश करने वाले कमीशन की सरबराही कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बिश्वजीत बसु करेंगे। दूसरे कमीशन ममता बनर्जी की क्यादत वाली साबिका सरकार के दौरान ख्वातीन के खिलाफ जुल्म ज्यादती की तहकीकात करेगा। इसकी सरबराही कलकत्ता हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज संपति चैटर्जी करेंगी। मीडिया से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि दोनों कमीशन अगले महीने की पहली तारीख से काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि तहकीकात में बदउनवानी के माजी के मामलात और ख्वातीन के खिलाफ जराइम का अहाता किया जाएगा और अवाम में से लोग इन कमीशनों के सामने अपनी शहादतें पेश कर सकेंगे। बदउनवानी की इंक्वायरी में तमाम सरकारी महकमों का मुआयना किया जाएगा जिनमें पंचायतें और जिला परिषद शामिल हैं। आयुष की वजारत ने इस साल गर्मी के मौसम के लिए इंतहाई शदीद गर्मी और गर्म लहर के सिलसिले में अवामी सेहत से मुतालिक एक जामे एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में जोर देकर कहा गया है कि जिस्म में पानी की कमी ना होने दें, इंतहाई धूप के औकात में धूप में बराह रास्त आने से गुरेज करें, हल्के सूती कपड़े इस्तेमाल करें और मौसमी फल भरपूर मकदार में लें और ऐसे मशरूबात वगैरह लें जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता हो। इसमें शहरियों को खबरदार किया गया है कि वो गर्मी से मुतालिक बीमारियों जैसे चक्कर आना, सर में दर्द होना, जी मतलाना, जहनी थकावट महसूस करना, बुखार होना, पानी की कमी, अचानक बीमार महसूस करना और बेहोशी की सूरत हाल का सामना करने से मुहतात रहें। एडवाइजरी में सिफारिश की गई है कि खराब सूरत हाल में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 108 या 102 पर कॉल करें। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन गर्म लू की सूरत हाल रहने के बारे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले दो दिनों के दौरान गर्म लहर की सूरत हाल जारी रहने का इम्कान है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के अपने दौरे के दौरान बस्तर ज़िले में नितनार गांव में अवामी खिदमात के एक मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मरकज़ का नाम कबायली लीडर और शहीद मुजाहिद आज़ादी वीर गुंडाधुर के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अगले 1.5 बरस में बस्तर में कायम तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 को इसी तरह के खिदमात से मुतालिक मरकज बना दिया जाएगा। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम गैब्रिसस से स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में मुनक़िदा 79वीं आलमी सेहत असम्बली से अलग मुलाकात की। जनाब नड्डा ने आलमी सेहत इक्विटी की पेशरफ के तहत भारत के अज़्म को दोहराया और कुछ अहम स्कीमों को उजागर किया जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, रिवायती अदवियात, मसनूई जहानत से चलने वाले अवामी सेहत की इख्तिराआत और टीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए की जाने वाली पायदार कोशिशें। डॉक्टर टेड्रोस ने सेहत के शोबे में भारत की असलाहत और आलमी सेहत शराकत दारी में उसकी क्यादत की तहसीन की और मुश्तरक तरजीहात के ताल्लुक से आलमी सेहत तंजीम के साथ शराकत दारी को मजीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की रिफाइनरीज में मामूल के मुताबिक काम हो रहा है और मगरबी एशिया के जारी बहरान के बावजूद भारत में खातिर खा खाम तेल मौजूद है। नई दिल्ली में आज बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, LPG और कुदरती गैस का खातिर खा जखीरा मौजूद है। इसके बावजूद अफवाहों की वजह से कुछ इलाकों से LPG की घबराहट में खरीदारी की खबरें मिल रही हैं। केमिकल और कीमियावी खादों की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी अपर्णा शर्मा ने बताया कि मुल्क भर में 200 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइज़र दस्तियाब है और खरीफ की फसल के लिए कीमियावी खादों की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में वाक़े धनीवरी में एक बारात को ले जा रहे ट्रक और एक कंटेनर के दरमियान
ٹکر سے ہوئے سڑک حادثے میں 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 20 دیگر زخمی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد میں بڑھوتری کا اندیشہ۔

ये आवाज थी उस मस्त मलंग आदमी की जिसका नाम अली कमाल था। जब देखो ये अलबेला प्यार और मोहब्बत के गीत गाया करता था। यह उसकी लाओबालीपन का दौर था। इस दौर में आटे दाल की फिक्र नहीं होती है, बस जिंदगी एक सतरंगी और कोसे कजा की तरह लगती है, हर रंग दिलकश और दिल फरेब। इस उम्र में इंसान बस सपने बुनता रहता है, हसीन सपने, रंगीन सपने, खूबसूरत सपने, दिल को गुदगुदाने वाले सपने। वो इन सपनों के सहारे अपने शब रोज गुजारता रहता है। एक दिन ये सपने टूट जाते हैं। जिंदगी जब अपने असली रूप में सामने आ जाती है तो अपने साथ ढेर सारे मसाइल लेके भी आती है। रोजी रोटी की फिक्र से ख्वाबों के ये महल जमीन बोस हो जाते हैं और इंसान रोटी की तगदों में उलझ जाता है। अली कमाल भी जिंदगी की इस हकीकत से रूबरू हो गया था। उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी ख्वाब है या

0: सच है क्या, सब सच है।
1: आप दीपक कमल की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं कैप्टन किशोर। सच ये था कि अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसे नौकरी करना पड़ रही थी। जिस दिन अली कमाल की ड्यूटी लाल सिंह ड्राइवर के साथ लगा दी गई, अली कमाल कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अपने उस्ताद की ट्रक के पास जाकर खड़ा हो गया। लाल सिंह अधेड़ उम्र का एक सिख था जो जम्मू का था। हमेशा जौलीदा मुंह लिए घूमता हुआ दिखाई देता था। उसकी पगड़ी कहाँ है, वर्दी कहाँ है, उसे कोई सुध बुद्धि नहीं होती थी। उसने जब अली कमाल के सरापा का जायजा लिया तो झुला कर दौड़ते हुए यार्ड मास्टर के पास गया और उसे एक कोने में ले जाकर कहा, जनाब ये कैडेट छोकरे को आपने मेरे नाल लगा दिया, ये तो बाबू बना फिरता है, ये क्या कंडक्टर करेगा? हो जनाब इसका पहनावा तो देखो, मैंने तो ये किसी भी जाविये से कंडक्टर नहीं लगता है। अली कमाल की भर्ती इस महकमे में 6 महीने पहले हुई थी। जो पहला वाला यार्ड मास्टर था उसने उसे हिर्ज़ जान बना के रखा था, इसलिए उसे किसी ट्रक के साथ काम करने की नौबत नहीं आई। इसकी वजह यह थी कि अली कमाल का बाप, जो कि पेशे से ड्राइवर था, एक मिनिस्टर की गाड़ी चलाता था। 2 साल कबल उसकी हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से मौत हुई। मिनिस्टर ने अपने मरहूम ड्राइवर की वफादारी के एवज उसके बेटे को नौकरी पर लगा दिया था। पुराना यार्ड मास्टर उसके बाप का जेर बार था, क्योंकि उसने एक बार उसे रिश्वत सताने के जुर्म में पकड़े जाने पर न सिर्फ उसे जेल जाने से बचा लिया था बल्कि उसकी मौतली भी रुकवाई थी। इस एहसान को वो भूल नहीं पाया था, इसलिए वो अली कमाल को अपने बच्चे की तरह समझता था। उसकी 1 हफ्ते पहले तब्दीली हुई थी और उसकी जगह नया यार्ड मास्टर आया था जो बड़ा कड़क और बेमुरव्वत अफसर था। इस महकमे में हराम खोरों की तादाद काफी थी जो महीने भर नाबूद रहते थे, लेकिन पहली तारीख को किसी खुदरव झाड़ी की तरह नमूदार हो जाते थे और यार्ड मास्टर की मुंह भराई करके पूरे महीने की तनख्वाह लेकर निकल जाते थे। नए अफसर के आते ही इन हराम खोरों की बन आई थी। इन सबको काम पर लगा दिया गया था। इनमें एक अली कमाल भी था। उसने अली कमाल की ड्यूटी बद्रो लाल सिंह के साथ लगा दी। लाल सिंह अव्वल दर्जे का ओबाश था, एक नंबर का मैखार। दोम

इधर उधर मुंह मारने की लत लग गई थी। असल में कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वो घर का शुद्ध खाना खाते खाते इतने ऊब जाते हैं कि बाहर को जो भी रूखा सूखा तीखा बासी मिले वो चटखारे लेकर खाते हैं। लाल सिंह भी उन्हीं लोगों में से एक था जो घर की मुर्गी को दाल बराबर समझते हैं। वो ऐसे क्लीनर अपने साथ रखता था जो हवनक हो, जिनके मुंह में जबान ही न हो, जो एकदम अल्लाह मियाँ की गाय की तरह हो, जो हमेशा अपने कान और आंखें बंद करके बैठे रहें। अली कमाल तो लाल सिंह को बड़ा तेज तर्रार लगा। उसे लगा कि यह उसके ताबे में नहीं रहेगा और उसकी करतूतों की डांडी बजाता फिरेगा। अपनी साख और सलामती को खतरे में पाकर लाल सिंह ने यार्ड मास्टर के आगे हाथ जोड़े कि वो किसी और क्लीनर को उसके साथ लगा दे, मगर अली कमाल को नहीं। अली कमाल मस्त मौला आदमी था। उसे यह गरज नहीं थी कि कौन कैसा है, वो तो बस यहां वक्त गुजारी के लिए आया था। उसे महकमे की तरफ से वर्दी मिली थी जो उसने तह करके घर में रख दी थी। उसने इस वर्दी को एक दिन भी नहीं पहना था। उसे ये नीले रंग की वर्दी आग बुझाने वाले कारिंदों की सी जैसी लगती थी, जिसे पहनने में वो शर्म महसूस करता था। उसे अच्छा पहनावे का बड़ा शौक था। वो बेल बॉटम के पतलून और रंगदार कमीज पहनने का शौकीन था। वो हमेशा बड़े ठाठ बाट से रहता था। बेकार होने के बावजूद वो स्त्री की हुई रंगीन कमीज और काला चश्मा पहन के जब घर से निकलता था तो किसी हीरो से कम नहीं लगता था। असल में वो फिल्में देखने का बड़ा शौकीन था। मिथुन चक्रवर्ती उसका पसंदीदा हीरो था। वो अपने हीरो की तरह ही रंग बिरंगी शर्ट्स पहनता था, उसकी तरह चलता था, उसकी तरह बोलता था। जब मौका मिलता था तो एक हीरो की तरह वो भी इस तरह के रूमानी गाना गाने लगता था जैसे वो अपने महबूब से मुखातिब हो।

नशा नशा सा है, बोलिए ना बोलिए सब सुना।

0: जब वो क्लीनर भर्ती हुआ तो उसके रंग ढंग में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। वो अपनी जात बिरादरी के लोगों से कदरे मुख्तलिफ था। जब वह दूसरे क्लीनरों को देखता था तो उसे उन पर दया आती थी। पिचके हुए गाल, वीरान और बेनूर आंखें जैसे कोई बंजर खेत, खुरदुरे हाथ, मलगजी वर्दी, बिखरे हुए बाल, वो इन जैसा बनना नहीं चाहता था। इसलिए वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार न था। लाल सिंह की आजीजी के बावजूद नया यार्ड मास्टर टस से मस न हुआ। उसने तहमकाना अंदाज में लाल सिंह से कहा, क्लीनर नहीं बदलेगा, अली कमाल ही तुम्हारे साथ रहेगा। लाल सिंह ने तवहन व करहन अली कमाल को अपने साथ रखा। अली कमाल नाम के लिए क्लीनर था। लाल सिंह को सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। एक दिन जलकर उसने अली कमाल से कहा, ओए ओए, तू तो गलत महकमे में भर्ती हुआ है, तेनू किसी फिल्म कंपनी में भर्ती होना चाहिए था। जा छड़ दे ये काम और बंबई चला जा, हीरो न बने तो कोई गल नहीं, किसी हीरो दा अर्दली बन जा, ड्राइवर बन जा, एक काम तोड़े बसदा नहीं है। लोग तेनू मेरे नाल देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे नाल कोई बाबू बैठा है। अली कमाल चुपचाप लाल सिंह की डांट सुनता रहा। एक दिन लाल सिंह ने जिच होके उसे नया नाम दिया, कैप्टन किशोर। बरादरी का कोई दूसरा सरदार ड्राइवर पूछता, ये तेरे नाल कौन है प्राजी? तो जवाब में वो कहता, कैप्टन किशोर। इस महकमे की यह खासियत थी कि यहां मुलाजिम होने के बाद हर क्लीनर ड्राइवर को कोई ना कोई नया नाम मिल जाता था। असल नाम से चंद दबंग ही जाने जाते थे, बाकी जितने भी थे उनके नाम के साथ कोई ना कोई लाहिका लगा रहता था। जैसे अली मोहम्मद बहुत चाय पीता था तो उसका नाम अली चाय पड़ गया। एक क्लीनर को निमोनिया हो गया तो उसका नाम ही निमोनिया पड़ गया। अब अली कमाल कैप्टन किशोर के नाम से जाना जाता था। उसका यह नया नाम महकमे में चंद हफ्तों में ही वबा की तरह फैल गया। अपनी बिरादरी के क्लीनर जब उसे चिढ़ाने की गरज से कैप्टन किशोर कहकर बुलाने लगते थे तो गुस्सा करने के बजाय वो मुस्कुराने लगता था। अपने उस्ताद से यह लकब पाकर वो दिल ही दिल में खुश था। बड़े दिनों के बाद किसी ने उसकी शख्सियत को पहचान लिया था। वो दिल ही दिल में यह सोचकर एक मसरत आमेज एहसास से शराबोर होता था कि मिथुन चक्रवर्ती न सही, कम से कम उसकी फिल्म के टाइटल कैप्टन किशोर कहकर लोगों ने उसे बुलाना शुरू तो किया, उसे वो हतक नहीं बल्कि एहसास समझता था। थोड़े ही दिनों में वो इस नाम से इतना मानूस हो गया कि अगर उसे कोई असली नाम से बुलाता था तो वो इधर उधर देखने लगता था। थोड़ा सा हाथ साफ होते ही उसने इस नौकरी को खैरबाद कह दिया। वो इस नौकरी में अपने आप को महबूस और असीर समझता था। अपने यार दोस्तों ने उसे बेहतरा समझाया कि ऐसी हमाकत न कर, ये नौकरी तकदीर से ही मिलती है, मगर वो तो जैसे तय करके बैठा था इसलिए उसने किसी की एक न सुनी और एक दिन वो नौकरी छोड़कर चला गया। लाल सिंह जो उसे कतई पसंद नहीं करता था उसने उसे समझाया मगर उसने उस्ताद की भी नहीं सुनी। एक दिन वो इस बंधन से आजाद हुआ। आजादी पाते ही वो पागलों की तरह कूदने फांदने लगा और ऊंचे सुर में गाने लगा।
1: मैं

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: बल बल जाऊं मैं तो रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशित सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियां
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: अब दीपक कमल की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं कैप्टन किशोर। उसका बाप था न भाई बहन थी न बीवी, बस एक माँ थी जो उसके लिए कुल कायनात थी। वो अपनी माँ की एक तरह से पूजा करता था, उसकी एक खुशी के लिए वो हजार जाने कुर्बान कर सकता था। उसकी माँ भी उसे अपना कुल असासा समझ रही थी, उसकी दुनिया घूम फिर के उसी पे आके रुक जाती थी। वो अपने बच्चे को बस हरदम हंसते मुस्कुराते देखना चाहती थी, उसकी एक मुस्कुराहट उसकी जिंदगी को उजालों से भर देती थी। जब उसने नौकरी को खैरबाद कह दिया तो माँ ने उसे पूछा, बेटा अच्छी खासी नौकरी को तुमने लात क्यों मार दी? तेरे लिए तो मैं जन्नत भी ठुकरा दूं माँ, मैं हफ्ते हफ्ते घर से बाहर रहता था ना, तो तुम्हें अकेला रहना पड़ता था, बस यही सोचकर मैंने नौकरी छोड़ दी। अब क्या करने का इरादा है? मैं टैक्सी चला लूंगा माँ, पंछी की तरह मैं दिन भर कहीं भी उड़ता फिरूं, रात को अपने आशियाने में लौट आऊंगा। बेटे का प्यार देखकर माँ की आंखें डबडबाने लगी, बोली, तुम जिस काम में खुश रहोगे वही कर लेना, मेरी खातिर अपना आने वाला कल बर्बाद मत करना। अम्मा

आज भी तुम हो, कल भी तुम हो, मैं तभी खुश रहूंगा जब तुम खुश रहोगी। थोड़े तवक्कुफ के बाद उसने झिझकते हुए मां से पूछा, अम्मा अगर मैं ये मकान बेच दूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? कैसी बात करते हो मेरे बच्चे, अगर इस मकान के बेचने से तुम्हारा भला होगा तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? पर एक बात तो बताओ, तुम इस मकान को क्यों बेचना चाहते हो? अम्मा टैक्सी खरीदने के लिए। टैक्सी खरीदने के लिए एक बड़ी रकम दरकार होगी। एक बार टैक्सी हाथ में आ गई फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ा मकान खरीद कर दूंगा। मुझे मकान से पहले एक बहू चाहिए। बेटा मरने से पहले मैं तुम्हारे पोते पोतियों का मुंह देखना चाहती हूं। वो शर्मा गया, आंखें चुराते हुए बोला, ऐसी बहू लाके दूंगा अम्मा जो किसी हूर से कम न होगी। एक बार मुझे टैक्सी तो लेने दो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। एक दिन उसने अपना आबाई मकान बेच डाला और अपनी मां के साथ विशंबर नगर में जाकर एक किराए के मकान में रहने लगा। उसके बाद उसने मकान के पैसे से एक एम्बेसडर टैक्सी खरीद ली और जब वो टैक्सी शोरूम से निकालकर अपने घर ले आया तो वो इतना शादान और फरहान था कि उसने अपनी मां को गोद में उठाकर उसे बच्चे की तरह चंदम ही घुमाया। अम्मा की चीखें निकल गई, वो पागलों की तरह बस हंसता रहा। उसके बाद वो अपनी मां को टैक्सी में बिठाकर दस्तगीर साहब के आस्थाने पर ले गया। मां ने वहां जाकर अपने बच्चे की खुशहाली की दुआ की और फिर उसकी शादी के लिए मन्नत का धागा बांध दिया। वहां से फारिग होकर वो उसे तीनों मुगल गार्डन्स घुमा के लाया, फिर अलीजू के ढाबे में बिठाकर उसे गर्म गर्म पराठे और हलवा खिलाया और साथ में चाय पिला दी। मां उस पर हजार जान से वारी सदके हुए जा रही थी। कैप्टन किशोर ने अपनी टैक्सी को दुल्हन की तरह सजा लिया। वो खुद जैसा खुश लिबास था वैसे ही उसने अपनी टैक्सी को भी रंगीन सीट कवर से आरास्ता किया था। वो अपनी टैक्सी एयरपोर्ट पर खड़ी करता था, थोड़ी बहुत अंग्रेजी उसे आती थी इसलिए वो ज्यादातर विदेशी सयाहों को अपनी टैक्सी में बिठा लेता था। उसकी खुशखुलकी और नफासत को देखकर ज्यादातर विदेशी टूरिस्ट उसकी टैक्सी में बैठना पसंद करते थे। इन सभी औसाफ के बावजूद उसकी किस्मत भी उसका साथ दे रही थी। एक दिन जब उसकी टैक्सी का नंबर आया तो उसके हिस्से में एक ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट मैरीना आ गई। मैरीना भला की खूबसूरत थी, ऐसा लगता था जैसे कुदरत ने उसे मक्खन से बनाया हो। उसका गोल मटोल चेहरा, उसकी गहरी नीली झील जैसी आंखें, उसके घुंघराले बाल, उसका चौड़ा माथा, मोती जैसे दांत, गुलाब की पंखुड़ी जैसे उसके होंठ, वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। कैप्टन किशोर को पहली ही नजर में उस मेम से प्यार हो गया। उसका दिल गुनगुना उठा। अपने आप को इस तिलिस्म के जाल से निकालकर उसने बमुश्किल तमाम उससे अंग्रेजी में पूछा, कहाँ चलो मेम साहब? ब्रॉडवे होटल। इतना कहकर उसने अपने पर्स से सिगरेट का पैकेट निकाला और फिर एक सिगरेट सुलगाकर दाएं बाएं के नजारों में खो गई। कैप्टन किशोर ने उसे ब्रॉडवे होटल में छोड़ा। जब उसका सामान होटल के बॉय ने उतारा तो अचानक वो चलते चलते रुक गई और उसने कैप्टन से कहा, देखो कल सुबह 8 बजे टैक्सी लेके आ जाना, हमको गुलमर्ग चलना है। कैप्टन किशोर ने एक रोबोट की तरह सर हिलाया। वो तब तक बुत बना वहीं खड़ा रहा जब तक वो नजरों से ओझल न हो गई। अचानक वो हॉर्न की आवाज से हड़बड़ाया। उसके पीछे एक और टैक्सी आके खड़ी हुई थी जिसका रास्ता उसकी टैक्सी ने रोका था। वो जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गया और टैक्सी लेके घर की ओर निकल गया। उस रात मरीना उसके दिलो दिमाग पर छाई रही। वो रात उसने उसके तस्वीर के साथ गुजारी। वो बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था कि कब सुबह हो जाए और वो उसे दोबारा नजर भर के देखे और उसकी तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में बसा के रखे। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसे पाना दीवाने के ख्वाब जैसा है।
वो कभी पूरा नहीं हो सकता।

आप दीपक कमल की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं कैप्टन किशोर। सुबह हुई तो झटपट तैयार हो गया। उसने एक नई कमीज और पतलून पहनी और बदन पर कीमती परफ्यूम छिड़का और फिर आंखों पर काला चश्मा डाले वो माँ से रुख्सत लेकर ब्रॉडवे की तरफ गाड़ी दौड़ाने लगा। जब गाड़ी गेट पर पहुंची तो वह नीले रंग की जैकेट डाले और सर पर फिरकी टोपी पहने लॉबी में पहले से तैयार बैठी थी। जो ही उसे इतला कर दी गई कि टैक्सी लॉन्ज में खड़ी है तो वह अपना पर्स झुल्लाते हुए बाहर आ गई। जो ही कैप्टन किशोर ने उसे देखा तो उसका दिल बलियों उछल पड़ा। वो झट से गाड़ी का दरवाजा खोल के खड़ा हो गया। वो जो ही करीब आ गई तो कैप्टन किशोर ने उसे गुड मॉर्निंग कहा। जवाब में उसने भी गुड मॉर्निंग कहा और फिर वो थैंक यू बोल के गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी सुबह की रफ्तारी के साथ गुलमर्ग की ओर बढ़ने लगी। चंद लम्हे गाड़ी में खामोशी छाई रही। कैप्टन किशोर मरीना से बात करने के लिए बेताब था मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कहां से शुरू करे। यह सुकूत मरीना ने तोड़ा। उसने कैप्टन से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कैप्टन किशोर, उसने बड़े फखरी अंदाज में कहा। मरीना नाम सुन के जरा सी चौंकी, फिर चंद

सानिए के बाद उसे पूछने लगी, क्या तुम फौज में थे? नहीं, असल में यह नाम दोस्तों का दिया हुआ है। मुझे भी नाम अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस नाम को सर माथे से लगा लिया। मेम साहब, आपको यह नाम पसंद आ गया क्या? हाँ, प्यारा नाम है, मरीना ने मुस्कुराते हुए कहा। बर्फ पिघल चुकी थी। एक बार बर्फ जो पिघलती है तो फिर पानी फुइया फुइया रिश्ता रहता है। गुलमर्ग तक वो बस बातें करते रहे। मरीना को पता ही नहीं चला कि इतना लंबा सफर कैसे कट गया। कैप्टन किशोर अब पूरी तरह खुल चुका था। उसे पूरे गुलमर्ग में घुमाने लगा। उसने उसे टट्टू पर भी बिठा दिया। घोड़ेबान की जगह वो खुद घोड़े के पीछे पीछे दौड़ता रहा। जहां घोड़ा थोड़ी रफ्तार पकड़ने लगता था और मरीना अपना तवाजुन खोने लगती थी, तो वो लपक कर उसे सहारा देता था। उसका कोमल सा बदन जब उसकी बाहों में झूलने लगता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे वो हवा के दोष पर उड़ रहा हो। वो जब मरीना की तरफ देखता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे वो उसे पूछ रही हो,

दिन के 2 बजे जब उसे भूख लगी तो उसने अपना टिफिन गाड़ी से निकाला और एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गया। अभी उसने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला था कि मरीना पीछे से निकल आई और उसके खाने पर लपक कर उसे बोली, ये तुम्हारे घर का खाना है ना, तुम्हारी बीवी ने पकाया होगा। नहीं मीम साहब, मैं अभी तक आवारा हूं, ये खाना मेरी माँ ने पकाया है। मरीना ने जब प्लेट पकड़कर खाना चखा तो उसे खाना इतना लजीज लगा कि वो सारा खाना अकेले ही चट कर गई। वो खाने में मसरूफ थी जबकि कैप्टन किशोर उसे वारफ्तगी से यकटुक देखे जा रहा था। खाना खाने के बाद उसने उसकी माँ से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। कैप्टन किशोर बलियों उछल पड़ा। उसने मरीना से कहा कि वो शाम को उसे माँ से मिलवाने अपने घर पर ले जाएगा। वो उसी रात उसे अपनी माँ से मिलवाने ले गया। माँ ने जब एक अंग्रेजन को अपने बेटे के साथ देखा तो वो खुशी से फूले नहीं सके।

कैप्टन किशोर बलि उछल पड़ा। उसने मरीना से कहा कि वो शाम को उसे माँ से मिलवाने अपने घर पर ले जाएगा। वो उसी रात उसे अपनी माँ से मिलवाने ले गया। माँ ने जब एक अंग्रेजन को अपने बेटे के साथ देखा तो वो खुशी से फूले नहीं समाई। उसने मरीना को सीने से लगाया, उसके सर पर हाथ फेरा और उसे जी भर के दुआएं दी। कैप्टन किशोर मुतरजिम का काम कर रहा था। वो कश्मीरी को अंग्रेजी और अंग्रेजी को कश्मीरी में तर्जमा करके एक दूसरे को सुना देता था। मरीना को अम्मा के हाथों का बना खाना बहुत पसंद आया था। वो बार बार उसके हाथों को चूम रही थी। कैप्टन मारे खुशी के फूल के कुप्पा हुआ जा रहा था। उसे ये बात अब पूरी तरह समझ में आ रही थी कि मरीना उसे प्यार करने लगी है, इसलिए वो उसकी माँ से इतना प्यार जता रही है। अगले रोज कैप्टन किशोर उसके लिए जरी का काम किया हुआ एक फेरन लेके गया। मरीना ने उसका यह तोहफा बखुशी कबूल किया और वो यही फेरन पहन के दूसरी बार उसकी माँ से मिलने चली गई। माँ उसे रिवायती कश्मीरी फेरन में देखकर बलियों उछल पड़ी। उसने माँ से कहा कि वो चूल्हे में उसका हाथ बटाना चाहती है। जब वह अम्मा के साथ किचन में बैठी उसका हाथ बटा रही थी तो कैप्टन किशोर बाहर बैठकर आने वाले कल के सपने संजो रहा था। कल के मसरतामेज सपने जिनमें प्यार की गहराइयां थीं, बच्चों की किलकारियां थी, फरहत बख्श लम्हों की चहकार थी, जिंदगी का संगीत था, प्यार के गीत थे। हाय कैसा सुहाना आलम था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मोहब्बत के तराने गा रहा है और मरीना उसके सुर से सुर मिला रही।

किसी को मुझसे प्यार नहीं है, कोई भी मेरा यार नहीं है। माँ बाप भाई बहन दोस्त दुश्मन सब देखे, रूठे सब।

0: तो दोस्तों ये थी आज की कहानी कैप्टन किशोर, तहरीर दीपक कंवल। कहिए जनाब कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब अपने मेजबान रशीद निजामी इजाजत दीजिए, जब तक के लिए खुदा हाफिज।
1: गीतों भरी कहानी।

समय में आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे गीतू बरी कहानी। तहरीर दीपक कंवल की थी, आवाज रशीद निजामी की। मीडियम 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। समय शब के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नशर होंगे। खबरों का जरा सा इंतजार फरमाइए।

0: दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक।

ती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख

0: रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मत्स्य उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा ताकि कृषि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into Force of Trade and Economic Partnership Agreement, TPA. He underlined that stakeholders on both the sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion US dollars under TEPA and the

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में जो आज पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जूली, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो। रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो। अंजाम जो भी हो मुझे इसकी नहीं है फिक्र, अंजाम जो भी हो मुझे इसकी नहीं है फिक्र, आगाज दास्तान सफर आप ही से हो। ख्वाहिश है पहुंचो इश्क के मैं उस मकाम पर, ख्वाहिश है पहुंचो इश्क के मैं उस मकाम पर, जब उनका सामना मेरी दीवानगी से हो, जब उनका सामना मेरी दीवानगी से हो। रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है आग ले लग जा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत

बीते रिश्ते तलाश करती है, बीते रिश्ते तलाश करती है, खुशबू गुंचे तलाश करती है। जब गुजरती है उस गली से सबा, खत के पुर्जे तलाश करती है। अपनी माजी की जस्तजू में बहार, पीले पत्ते तलाश करती है। एक उम्मीद बार बार आकर

एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। बूढ़ी पगडंडी शहर तक आकर अपने बेटे तलाश करती है। बीते रिश्ते तलाश करती है। खुशबू गुंचे तलाश करती है। जब गुजरती है उस गली से सबा, खत के पुर्जे तलाश करती है। खत के पुर्जे तलाश करती है। अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मुकेश की और फिल्म का नाम है कटी पतंग।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की

0: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेल्ले से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा, ताकि कृषि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals and startups. PM Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy. He appreciated Norway's

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो

आप पहला गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है आ गले लग जा, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

जब भी आना, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को आतुर होगा, जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को आतुर होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ न सको, ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ न सको, और न ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह न दे सके, और न ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके। तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है अवतार, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है अमर।

जरूरी है जीवित रहना यादों का, जरूरी है जीवित रहना यादों का, जैसे जीवित है याद गौरैया की उसके जाने के बाद भी, जैसे बनी रहती है मन में खुशबू फूल की उसके मुरझाने के बाद भी, जैसे बनी रहती है खुशबू फूल की उसके मुरझाने के बाद भी, ठीक वैसे ही याद रह जाना है मुझे, ठीक वैसे ही याद रह जाना है मुझे, और ठीक वैसे ही याद करना तुम मुझे, क्योंकि याद रहना जीवित रहना है, क्योंकि याद रहना जीवित रहना है, जरूरी है जीवित रहना यादों का, जरूरी है जीवित रहना यादों का। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है काला सोना, आवाज है आशा भोसले की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी सी मिट्टी लो। चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी सी मिट्टी लो, फिर उससे दो बुत बनाओ, एक तुम जैसा एक मुझ जैसा। चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी सी मिट्टी लो, फिर उससे दो बुत बनाओ, एक तुम जैसा एक मुझ जैसा। फिर कुछ ऐसा करो, उन बुतों को तोड़ दो। फिर कुछ ऐसा करो, उन बुतों को तोड़ दो, और फिर से वो मिट्टी गूंथ लो। फिर से दो बुत बनाओ, तुम में कुछ मैं और मुझ में कुछ तुम रह जाओ, और मुझ में कुछ तुम रह जाओ।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र

0: पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। PIB ने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। PIB ने लोगों से फर्जी दावों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। दिखाई पड़े पूर्व में जो सितारे, वही आ गए ठीक ऊपर हमारे। दिखाई पड़े पूर्व में जो सितारे, वही आ गए ठीक ऊपर हमारे। क्षितिज पश्चिमी है बुलाता उन्हें हम, न रोके रुकेंगे हमारे तुम्हारे, न रोके रुकेंगे हमारे तुम्हारे। न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। इधर तुम उधर, तुम इधर मैं खड़ी बीच दुनिया, उधर तुम इधर मैं खड़ी बीच दुनिया, हे राम कितनी कड़ी बीच दुनिया। किए पार मैंने सहज ही मरुस्थल, सहज ही दिए चीर मैदान जंगल, सहज ही दिए चीर मैदान जंगल। तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है कलाकार।

बारिश में जब भी तुम्हारे शहर गया, बारिश में जब भी तुम्हारे शहर गया, ना तो तुम दिखी ना मुलाकात हुई, ना तो तुम दिखी ना मुलाकात हुई, पर बहुत सी बूंदे तुम्हारे शहर की, पर बहुत सी बूंदे तुम छाते में सिमट कर आ गई। बारिश में जब भी तुम्हारे शहर गया, ना तो तुम दिखी ना मुलाकात हुई, पर बहुत सी बूंदे तुम्हारे शहर की छाते में सिमट कर आ गई। कई दिनों से वो यादों की सीलन महका रही थी कमरे को, कई दिनों से वो यादों की सीलन महका रही थी कमरे को। उन्हें मिटाने के लिए आखिर मैंने आज कड़ी धूप में छाता खोलकर सुखा दिया। उन्हें मिटाने के लिए आखिर मैंने आज कड़ी धूप में

छाता खोलकर सुखा दिया। और रात सुरमई में जो आप अगला गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, आवाज है सोनू निगम की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है बॉबी।

कुछ कदम हम चले कुछ कदम तुम चले। कुछ कदम हम चले कुछ कदम तुम चले। फर्क बस इतना रहा हम चले तो फासला घटता गया। हम

चले तो फासला घटता गया, तुम चले तो फासला बढ़ता गया, तुम चले तो फासला बढ़ता गया, कुछ कदम हम चले कुछ कदम तुम चले। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं, आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाहेगी अनुमति। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पर चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर अर्चना होंगी आपके साथ। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है बरसात की रात। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। श्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पांच देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने जिनेवा में आयोजित 79वीं

0: विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद वह कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के हालिया प्रकोप पर कड़ी निगरानी रख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति की समीक्षा की है और एहतियाती सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शुरू कर दिए हैं। इनमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को लेकर संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि बैठक में एक व्यापक कार्ययोजना पर चर्चा हुई। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, मानव संसाधन प्रशिक्षण, राज्यों के अनुसार विशेष पर्यटन सर्किट, बहुराज्य पर्यटन पैकेज और पूर्वोत्तर के लिए एकीकृत पर्यटन ब्रांड तैयार करने जैसे विषय शामिल रहे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले के धनवारी में कई ट्रक और एक कंटेनर के बीच हुई टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक में 100 से अधिक लोग सवार थे। घायलों का इलाज कासा उपचला अस्पताल में चल रहा है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, PM Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals, and startups. PM Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments, and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen, and clean energy. He appreciated Norway's global leadership in clean energy investments, maritime decarbonization, ocean sustainability, and climate finance. PM Modi urged the business communities of both countries to forge new partnerships, identify emerging areas of collaboration, and strengthen economic cooperation. The summit was attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. A number of business agreements between Indian and Norwegian companies and entities were signed during the summit. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement yesterday after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, PM Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping. PM Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity. In a gesture towards closer relations, PM Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald

रात के 3:11 और 16 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सफर पर निकले थे हम, सफर से मुलाकात हो गई। सफर पर निकले थे हम, सफर से मुलाकात हो गई। जमाना कहता है इश्क जिसे, तुमसे वही बात हो गई। जी हाँ दोस्तों, सफर पर चलते चलते ही कब कोई हमसफर मिल जाता है और फिर दुनिया, जिंदगी, सब कुछ बदल जाता है।

मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में फिल्म 12 o'clock से ये गीत आपने सुना। इरादा न था मोहब्बत करने का, इरादा न था मोहब्बत करने का, मगर आपको देखा तो इरादा बदल गया। सोचा था अब कभी किसी को आंख भर के नहीं देखेंगे, आपको देखा तो नजरों ने भी धोखा दे दिया।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म आंधी और तूफान से ये गीत आपने सुना। राह में खड़े होकर तेरा इंतजार किया है, राह में खड़े होकर तेरा इंतजार किया है, ओ मेरे सनम तुमसे उतना ही प्यार किया है। ना कोई शिकायत है ना कोई गिला तुमसे, बस हर लम्हा तेरे होने का एहसास किया है।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म संगम से ये गीत आपने अभी सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आंधी से।

तेरे बाद कुछ यूं मोहब्बत निभाई है मैंने, तेरे बाद कुछ यूं मोहब्बत निभाई है मैंने, तुम नहीं कोई नहीं कसम खाई है मैंने। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आपकी कसम से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म शिकारी से अभी आपने गीत सुना। तुझे इस कदर हम अपनी जान बना बैठे हैं, तुझे इस कदर हम अपनी जान बना बैठे हैं कि हर धड़कन में तेरा ही नाम बसा बैठे हैं। अब कोई आरज़ू इस दिल में बाकी नहीं, जब से तुझे प्यार करने की वजह पा बैठे हैं। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में आइए सुनते हैं अप्रैल फूल से ये गीत।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म पत्थर के सनम से ये गीत आपने अभी सुना। हजार रास्ते थे दुनिया में कहीं भी जाने के लिए, हजार रास्ते थे दुनिया में कहीं भी जाने के लिए, मगर उनकी एक नजर मिली और वही मेरा ठिकाना हो गया। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म रंगोली से ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मस्ताना से ये गीत आप अभी सुन रहे हैं। इसी के साथ ही दोस्तों हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हैराल्ड पंचम

0: श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के

0: प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज लू की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी लू चलने की आशंका है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी गर्म और उमस भरे मौसम की भविष्यवाणी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, PM Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals, and startups. PM Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy. He appreciated Norway's global leadership in clean energy investments, maritime decarbonization, ocean sustainability and climate finance. PM Modi urged the business communities of both countries to forge new partnerships, identify emerging areas of collaboration, and strengthen economic cooperation. The summit was attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. A number of business agreements between India and Norwegian companies and entities were signed during the summit. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement yesterday, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping. PM Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity. In a gesture towards closer relations, PM Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Defense Minister Rajnath Singh

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में अगर मिलजुल के सब कुछ किया जाए तो कितना आनंदमय जीवन हो जाता है, परंतु आज के समय में कोई साथ चलना ही नहीं चाहता और ना ही कुछ बांटना चाहता है। कोशिश कीजिए दोस्तों किसी के साथ चलने की और प्यार बांटने की, बिल्कुल इस गीत की तरह जो गाया है लता मंगेशकर ने फिल्म तकदीर से।

दोस्तों, हाथों की लकीरें और किस्मत यानी तकदीर का तो हमारी जिंदगी में बड़ा हाथ होता है, पर अगर हम अपने कर्म एक प्लानिंग के साथ करना शुरू करें तो देखना जिंदगी ही बदल जाएगी।

अनवर और सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म विधाता से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, तदबीर से हम बिगड़े हुए काम भी संवार सकते हैं और साथ में अगर अपने पर भरोसा हो तो फिर सोने पे सुहागा।

गीता दत्त की आवाज में फिल्मबाजी से ये गीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बाबू से।

0: दोस्तों, गम और खुशी, धूप और छांव, सच और झूठ के बीच में चलने का नाम ही जिंदगी है। आइए सुनते हैं चलती का नाम जिंदगी से ये गीत किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाज में।
1: बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म आराधना से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, यारी जो है हमें जान से प्यारी, जो हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना देती है और जिसके साथ हम अपना सुख दुख सब कुछ शेयर कर सकते हैं। आइए सुनते हैं जंजीर फिल्म से मन्ना डे की आवाज में ये गीत।

साजन बिन सुहागन फिल्म से येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी हर कदम पर हमारी परीक्षा लेती है और एक जंग की तरह हम जिंदगी भर समस्याओं को सुलझाने में ही लगे रहते हैं। पर समस्याओं को दोस्तों सुलझाना तो है ही, तो क्यों ना हंस के ही सुलझा लिया जाए।

शब्बीर कुमार की आवाज में फिल्म मेरी जंग से अभी आपने गीत सुना। आइए अगला गीत सुनते हैं मुनीम जी की फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

बिल्कुल दोस्तों, जीवन के सफर में मिलते हैं बिछड़ जाने को, और अब हमारा भी बिछड़ने का वक्त आ गया है। अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपने दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड्स, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य

सुबह की 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस शांत वातावरण में हमेशा मन यही करता है कि सबसे पहले प्रभु का सिमरन किया जाए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज में ये भजन।

दोस्तों, सुबह के समय जब हम वॉक के लिए जाते हैं पार्क में, तो कोयल की मधुर ध्वनि कानों में जरूर सुनी होगी आपने। उसको सुनकर मन आनंदित हो उठता है। और इसी से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मीठे शब्दों का दूसरे पर कितना असर पड़ जाता है।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सरगम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में थोड़ी खुशी है और थोड़ा गम है, और उसी के बीच में हमें अपनी मस्ती में जीना है। आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक फिल्म से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म राम और श्याम से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।